मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की सातवीं तिथि तदनुसार 29 अगस्त सन 2026 प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त तुलिका शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर के 6 बजते हैं समाचार है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रखे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगू विल्लालर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेल्वन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वन। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं ये देशगान।

अभी आपने ये देशगान सुना, वंदना में आइए सुनते हैं सुलक्षणा पंडित का गाया ये भक्ति गीत।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज सुनते हैं स्वामी आत्मानंद के विचार।
1: एक अत्यंत व्यस्त व्यक्ति भी अपनी चर्या में नियमित अवकाश का स्थान रखता है। मौन जीवन का एक अत्यंत आवश्यक उपादान प्रतीत होता है। जब हम किसी निर्जन स्थली अथवा झील के किनारे या उपवन में घूमते होते हैं, पर्वत के शिखर पर पहुंचकर प्रकृति के रूप माधुरी का पान करते होते हैं, तो हम वास्तव में अनजाने मौन की खोज में होते हैं और उसका उपभोग करते हैं। पर हमें हर समय मौन की इस महत्ता का भान नहीं होता। जीवन में मन बहसाव अवसर भले ही बहुत कम प्राप्त होते हैं, पर जब कभी भी मिलते हैं तो हम उस प्रभाव को नहीं भूल सकते जो प्रकृति के साथ तादात्म्य हमारे चरित्र पर डालता है। फिर कभी जब हम मध्य रात्रि में उठ जाते हैं, जिस समय चारों ओर एक गहरी निस्तब्धता होती है, उस समय हमें एक अभिनव अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि रात्रि का गहरा मौन भाव मानो हमारे अंतर में घुसा जा रहा है। हाँ, संभव है मौन कभी भयावह भी हो जाए, तो इन अपवादों को यदि हम छोड़ दें तो हम में से अधिकांश लोग बीच बीच में प्रकृति के स्पर्श से अथवा घर में ही प्राप्त होने वाले मौन का स्वागत करते हैं, तो हमें एक प्रकार की स्फूर्ति प्राप्त होती है और हमारे स्नायुओं को ताजगी मिलती है, हमारी खोई हुई शक्ति लौट आती है। कुल मिलाकर प्रभाव यह होता है कि हमारा तन और मन दोनों प्रफुल्ल हो जाते हैं। फिर सुषुप्ति भी जीवन में मौन की आवश्यकता को सिद्ध करती है। हम दिन भर कितने ही व्यस्त क्यों न हों, रात्रि में उस घड़ी की चाह रखते हैं जब हमारे विचार और भावनाएं, इच्छाएं और आशाएं, चिंताएं और जिम्मेदारियां सब कुछ पीछे छूट जाता है। वह गहरी नींद है क्या? क्या वह मौन का ही अवसर नहीं है? यद्यपि हम उस अवस्था में सब पीछे छोड़ जाते हैं, यहां तक कि शरीर का बोध भी, तथापि उससे हम आनंद प्राप्त करते हैं। वास्तव में निद्रा कोई शून्यता नहीं है। निद्रा के रहस्य को जानने के लिए न तो हमारे पास समय होता है और न रुचि ही। हम उस अवस्था में आराम और शांति पाते हैं, बस यही हमारे लिए पर्याप्त होता है। किंतु उपनिषद इस अवस्था के संबंध में बड़ा प्रकाश डालते हैं। उपनिषदों के अनुसार सुषुप्ति मानव चेतना को विश्व चेतना की भूमि के सन्निकट ले आती है। यह विश्व चेतना असीम शांति की अवस्था है। यही कारण है कि हम नींद से जागने पर इतना तरोताजा अनुभव करते हैं। मौन का मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन में भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा गांधी मौन के महत्व को स्वीकार करते थे। संत विनोबा भावे ने तो मौन को अपने जीवन का एक अंग ही बना लिया था। मौन की महत्ता के आधार पर ही इसकी परिभाषा मुनि के आचरण से दी गई है। यदि हम मौन के आध्यात्मिक महत्व की बात को छोड़ भी दें तो भी हमारे भौतिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए मौन परमावश्यक है। मौन का प्रारंभिक अभ्यास यह है कि हम कुछ समय के लिए चुपचाप बैठ जाएं और मन में किसी गंभीर विचार या क्रियाशीलता को न बैठने दें। इस प्रकार भले ही वह 10 मिनट के लिए क्यों न हो, यदि हम अपने आप में स्थित रहें तो वह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी टॉनिक का काम करता है। इस अभ्यास से हमारी चिंताएं और मन की चंचलता भी कम होती है। मौन की आश्चर्यजनक शक्ति ब्रह्म मुहूर्त में अनुभव की जा सकती है। उस समय सब कुछ निस्तब्ध रहता है। रात्रि के गांभीर्य को यदि हम अपने हृदय में अनुभव करने का प्रयत्न करें तो इससे आश्चर्यजनक रूप से मन का तनाव दूर हो जाता है।

कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे स्वामी आत्मानंद के विचार। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

राजा जनक के यज्ञ में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, ये भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे चढ़ जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। ये देख श्रीराम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। बायोगैस की उपयोगिता विषय पर आज जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 2/3 से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जिनका जीवन यापन कृषि, पशुपालन, फलोत्पादन, मछली पालन और कुटीर उद्योगों पर आधारित है। देश में ऊर्जा आपूर्ति और मांग में बहुत बड़ा अंतर रहता है। सिंचाई और उद्योगों में बिजली की हमेशा कमी बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत से मिलने वाले गोबर, कृषि अवशेषों का उपयोग यदि बायोगैस उत्पन्न करने में किया जाए तो संपूर्ण ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर खाना बनाने का कार्य पशु द्वारा परित्याग किए गए गोबर या जंगलों से लकड़ी चुनकर ही पूरा किया जाता है। लकड़ी काटने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और गोबर से उपले बनाकर प्रयोग करने से खेतों में खाद की मात्रा में कमी आ रही है। साथ ही खाना बनाते समय निकले धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड और हानिकारक कण मकानों में कालिक फैलाने के साथ साथ आँखों और फेफड़ों को भी प्रभावित करते हैं। बायोगैस संयंत्र ऐसी जगह बनाएं जहां पर पानी एकत्रित न होता हो, जल निकास का उचित प्रबंध हो, खुली जगह हो जहां पर हर समय धूप आती जाती रहती हो। संयंत्र आकार का चयन उपलब्ध पशुओं के आधार पर करना चाहिए। यदि 50 किलोग्राम गोबर प्राप्त हो रहा है तो 2 घन मीटर का संयंत्र तैयार करना चाहिए और अधिक गोबर प्राप्त हो रहा है तो उसी के आधार पर संयंत्र का आकार बढ़ाना चाहिए। बायोगैस से खाना बनाने के साथ साथ प्रकाश व्यवस्था भी की जा सकती है। बायोगैस संयंत्र उत्तम गुणवत्ता वाला जैविक खाद तैयार करता है, जिसे

0: तुरंत निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है। बायोगैस से तैयार खाद खेतों में प्रयोग करने से खरपतवारों की मात्रा में कमी आती है। जैविक खादों के प्रयोग करने से फसलों में कीट और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। साथ ही बायोगैस संयंत्र में पाचन के बाद जो खाद बाहर निकलती है उसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं, जिससे अनाज, फल, सब्जियां पौष्टिक दृष्टि से अधिक समृद्ध होती हैं। बायो खाद के उपयोग से मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं की संतुलित रूप से बढ़ोतरी होती है, जिससे मिट्टी में भुरभुरापन रहता है। भूमि की जलधारण क्षमता विकसित होती है, जिससे भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है। अल्प वर्षा और अतिवर्षा की स्थिति में फसलों को लाभ पहुंचता है। बायो खाद के उपयोग से फसलों उत्पादन में 15-20% की वृद्धि होती है। कंपोस्ट खाद बनाने में 3-6 माह लग जाते हैं, जबकि बायो खाद तुरंत तैयार होती है। बायो खाद से फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। खाद तैयार होने का इंतजार नहीं करना पड़ता है। गोबर की खाद सीधे खेत में खाद के रूप में प्रयोग करने पर दीमक लगने की संभावना रहती है, जबकि बायो खाद के प्रयोग से दीमक जैसी समस्याएं नहीं आती हैं। फसलें स्वस्थ रहती हैं, अधिकतर कीटनाशक प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बायोगैस संयंत्र में मल मूत्र खाद पदार्थ डालते रहने से घर के आसपास साफ सफाई वातावरण भी स्वच्छ रहता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां भी नहीं फैल पाती हैं। बायोगैस संयंत्र स्थापित करें, जिससे वनों पर बढ़ता हुआ अनावश्यक दबाव घटेगा। भूमि क्षरण जैसी समस्याओं को रोक सकते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति संतुलित रहेगी। उर्वरकों द्वारा होने वाले भूमि और जल प्रदूषण कम करने और स्वच्छ वातावरण के लिए बायोगैस की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बायोगैस बनवाएं और उपयोग करें। पर्यावरण संरक्षण में बायोगैस की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ फसलों से उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है।
1: कार्यक्रम कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे जानकारी बायोगैस की उपयोगिता, जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
2: मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।

0: ए भाई,
1: सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति नियंत्रित रखें। किसी भी प्रकार का स्टंट करने की कतई कोशिश न करें। हो सकता है आप कुशल चालक हों, लेकिन दुर्घटना सिर्फ हमारी गलती से नहीं होती, दूसरों की लापरवाही भी हादसों का कारण होती है। दाहिने या बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
0: ए भाई, दर देख के चलो।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे स

0: विंशतितीर्थयात्रिभिः सह मिलितवान्। पश्चात् प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् सः नेपालसर्वकारस्य तस्य सेनायाः च उद्धारप्रयासानां कृते धन्यवादं प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्यारभ्य द्विदिवसीय उज्बेकिस्तान देशस्य यात्रायां भविष्यति। प्रधानमन्त्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतेः शवकत मिर्जियोयेव इत्यस्यामन्त्रणे ताशकन्दनगरं गमिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिना मिर्जियोयेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां करिष्यति। अस्याः वार्तायाः उद्देश्यं द्वयोः देशयोः रणनीतिकसहमतिम् इतोपि सुदृढीकरणम् अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्यारभ्य तमिलनाडु कर्नाटक केरल लक्षद्वीपराज्यानां त्रिदिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। भ्रमणावधौ उपराष्ट्रपतिः शिक्षा जनसेवा सांस्कृतिकपरम्परा उद्योग शैक्षणिक सहयोग मत्स्यपालनादि प्रमुख सार्वजनिक उत्सवेषु भागं ग्रहीष्यति। राधाकृष्णनवर्यः अद्य तमिलनाडुराज्यस्य इरोडनगरे कोङ्गु विल्लालर् इन्स्टिट्यूट् आफ् टेक्नोलोजी ट्रस्ट् इत्यस्य संस्थापकदिवसस्य समारोहे भागं ग्रहीष्यति। पश्चात् दिने उपराष्ट्रपतिः बेङ्गलूरुनगरं गमिष्यति, यत्र सः विधानसौधे कर्णाटकस्य पूर्वमुख्यमन्त्रिणः रामकृष्ण हेगडेवर्यस्य शतवार्षिकसमारोहे भागं ग्रहीष्यति। भारतस्य वेलावन् सेन्थिल् कुमारः गतरात्रौ निर्णायकस्पर्धायां वलाज्स् फार्कस इत्यमुं 3-0 इत्यंकैः पराजित्य बुडापेस्ट ओपन कॉपर टूर इति उपाधिम् अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रही हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है। 1924 लोग लापता हैं। अब तक 579 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग अब भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्यों के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी वे भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें अभी भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। विशेषज्ञ समिति के प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी त्रुटियां पाई जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसे हमारे भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। 7:20 पर डॉक्टर अनुभा पांडे से उनकी वार्ता सुनी जा सकती है, भारतेंदु के निबंधों में भारतीय चिंतन। 7:30 फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में सुनिए पॉडकास्ट पर्यावरण संकट और सुझाव। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अनुसंधान सेवा के निदेशक डॉक्टर आर ए कौशिक से बात करेंगी डॉक्टर विभूति सिंह। 9 बजे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित डॉक्टर चित्तरंजन ज्योतिषी का गाया राग भैरव सुनवाया जाएगा।

10 बजे जिले की चिट्ठी भोपाल से होगी। 10:05 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद की सावधानियां विषय पर डॉक्टर प्रदीप सिंह राठौर से आभा गुप्ता की बातचीत सुनवाई जाएगी। 10:50 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन सकते हैं आप। और 11 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: सायंकालीन सभा में 5 बजे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी होगा। यह आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगा और आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 7:20 पर हमारे केंद्र से आप कुछ लोकगीत सुनेंगे और 7:30 से होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। सायंकालीन सभा के सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार अब भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: पलों में होंगे
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रपति मिर्जियोयेव से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात में देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे विचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बालाघाट के लांजी दौरे पर बीमार परिवारों से करेंगे मुलाकात। और अगले चार दिन प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना, आज 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर पीएम मोदी ताशकंद पहुंचेंगे। ये उनकी उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत और उज्बेकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम रक्षाबंधन पर उज्जैन में शिप्रा तट स्थित श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पंचामृत और गुलाल से अभिषेक पूजन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं वीवीआईपी गेस्ट हाउस और पुलिस सामुदायिक भवन में डॉ. यादव ने महिला पुलिसकर्मियों, महाकाल मंदिर समिति की महिला कर्मचारियों और सफाई मित्रों के साथ रक्षाबंधन मनाया। महिलाओं ने तिलक लगाकर मुख्यमंत्री को राखी बांधी और मुख्यमंत्री ने सभी को उपहार भेंट किए। मुख्यमंत्री ने संत निजानंद जी के आश्रम में दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना भी की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा,
1: संत निजानंद जी आश्रम पर आया हूँ। पूरा मालवा, पूरा प्रदेश, देश सनातन संस्कृति के ऐसी विभूतियों से इसके आलोकित आभा दुनिया परिचित होती है। हम सब भी अपने आसपास ऐसे संतों के आशीर्वाद से सत्कार्य की प्रेरणा पाते हैं। हम सब अपने कामों के साथ अपने संतों की मूल भावना

0: सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सबको लेके चलने का जो कल्याण का भाव है, ये वेद वाक्य को अमरता के साथ धारण करते हुए हम सबके कल्याण की कामना करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों के साथ एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर होगा। इसके अलावा एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बालाघाट जिले के लांची दौरे पर रहेंगे। वे मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कन्या छात्रावास और उत्कृष्ट विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री लांची के पास कोरका और बुंदारी गांव जाकर बीमार परिवारों से मुलाकात करेंगे। इन बैगा बहुल गांव में पिछले 2 महीने से मलेरिया, खसरा और कुपोषण से बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हुए हैं, जबकि कई बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद दोपहर में लांची से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। धार के ऐतिहासिक भोशाला के पीछे खसरा नंबर 612 की जमीन पर कल मुस्लिम समाज ने जुमे की नमाज अदा की, जबकि भोशाला परिसर में हिंदू श्रद्धालुओं ने दोपहर 1 से 3 बजे तक सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। नमाज के लिए तय जमीन पर जगह कम पड़ने पर कुछ लोग रास्ते में दरी और बरसाती बिछाने लगे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक दिया। नेपाल में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के बीच प्रदेश के अनूपपुर और भोपाल से गए लोगों के फंसने की खबर सामने आई है। अनूपपुर के कुतमा की पलक मांझी और पलवी मांझी सरकारी मदद से सुरक्षित पोखरा पहुंच गए हैं, जबकि उनके 9 सदस्यीय ग्रुप में 3 लोगों की अभी भी जानकारी नहीं मिली है। वहीं भोपाल से गोसाईकुंडा तीर्थ गए एक ही परिवार से जुड़े 29 लोग अब तक लापता हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से अपनी फार्मर आईडी बनवाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में फार्मर आईडी बनाने का अभियान शुरू हो गया है और सरकारी दल गांव-गांव जाकर किसानों की आईडी बना रहे हैं। फार्मर आईडी से किसानों को डिजिटल पहचान मिलेगी और उन्हें खेती से जुड़ी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। ये आईडी जमीन, पशुधन, बोई गई फसल और सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ जैसी जानकारी से जुड़ी होगी। रीवा में गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। परिजनों ने डॉक्टरों पर दुर्व्यवहार और इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए थे, जिसके बाद वरिष्ठ डॉक्टरों की जांच समिति बनाई गई है। मामले में प्रथम दृष्टया लापरवाही और अनुशासनहीनता के आधार पर 2 डॉक्टरों और दुर्व्यवहार की शिकायत पर 2 नर्सिंग ऑफिसर्स को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। महिला को 26 अगस्त को गांधी स्मारक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहाँ उसी रात उसकी और गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई थी। भोपाल एम्स में 9 महीने के शिशु के दोनों कानों में एक साथ सफल कॉक्लियर इम्प्लांट किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक ये मध्य भारत में इतनी कम उम्र में हुआ पहला कॉक्लियर प्रत्यारोपण है। बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था और जन्म के बाद उसे लंबे समय तक NICU में रखा गया था। बाद में मस्तिष्क ज्वर के चलते उसकी सुनने की क्षमता प्रभावित हुई। एम्स की ENT और एनेस्थीसिया टीम ने आधुनिक तकनीक और स्मार्ट नर्व सिस्टम की मदद से सर्जरी पूरी की। अब उपकरण को एक्टिवेट कर बच्चे को नियमित श्रवण और भाषा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुनू नेशनल पार्क से करीब 21 दिन पहले लापता हुई दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता निर्वा आखिरकार सुरक्षित मिल गई है। उसका सैटेलाइट कॉलर काम नहीं कर रहा था, जिससे उसकी लोकेशन का सिग्नल मिलना बंद हो गया था। लंबी तलाश के बाद टीम ने निर्वा को खोज निकाला और कल उसे सुरक्षित वापस बाड़े में पहुंचा दिया गया। और अब बात मौसम की। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले चार दिन बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज रीवा, सीधी, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी, बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल में रिमझिम बारिश हो सकती है। जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडौरी, सतना समेत कई जिलों में हल्की से तेज बारिश होने के आसार है। वहीं इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभाग में तेज बारिश की संभावना कम है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 26.9 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 2.6 इंच कम है। भोपाल में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं

महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में ऐतिहासिक पांचवां स्थान हासिल करने वाली भारतीय महिला टीम के लिए 50 लाख रुपए के नकद पुरस्कार का ऐलान किया है। 1974 के बाद वर्ल्ड कप में भारत का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में दिगंबर जैन समाज द्वारा आज रक्षाबंधन पर्व को मुनि रक्षा दिवस के रूप में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मंदसौर में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत आज शनिवार को जनपद पंचायत मंदसौर के ग्राम भूखी में जन संवाद और उद्यम संवाद शिविर आयोजित होगा। सतना में हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी है। नदी नालों में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। धार में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को देखते हुए सड़क सुरक्षा उपसमिति द्वारा इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। इंदौर में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत शिविरों का आयोजन आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के मूसाखेड़े स्थित जोन क्रमांक 18 के जोनल कार्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ के निर्देश पर मुरैना जिले में विभिन्न बीज विक्रेता फार्मों के यहाँ कृषि विभाग द्वारा बीजों की सैम्पलिंग की कार्रवाई की गई। मंडला में भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता 11 से 30 सितंबर तक होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं वार्ता। भारतेंदु के निबंधों में भारतीय चिंतन। वार्ताकार हैं डॉक्टर अनुभा पांडे।
1: भारतेंदु का रचना फलक अत्यंत विस्तृत है। उनकी रचना प्रवृत्तियां एक ओर भक्ति काल और रीति काल से अनुबद्ध हैं, तो दूसरी ओर समकालीन परिवेश के प्रति जागरूकता का भी उनमें अभाव नहीं है। हिंदी गद्य को पहली बार एक निश्चित दिशा और सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु बाबू ने अनेकानेक लेखकों को इस दिशा में प्रेरित भी किया। उन्होंने स्वयं निबंध, नाटक आदि लिखकर उसके आदर्श स्वरूप को सबके सामने प्रस्तुत किया, साथ ही एक लेखक मंडल तैयार किया। पत्र पत्रिकाएं निकालकर हिंदी गद्य के स्वरूप को सवारने निखारने में वे प्राण से जुट गए। उन्होंने कवित्व प्रतिभा और सर्वोत्मुखी रचना क्षमता का ऐसा परिचय दिया कि उस समय के साहित्यकारों ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका उनके संपादन में प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी। अपनी काव्य रचनाओं में जहां वे प्राचीन काव्य प्रवृत्तियों के अनुवर्ती रहे, वहीं नवीन काव्यधारा के प्रवर्तन का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त है। उन्होंने आजीवन साहित्य सेवा का व्रत लिया था। अपनी सारी पैतृक संपदा उन्होंने साहित्य सेवा पर लुटा दी। उन्होंने साहित्य को सामंती शिकंजों से मुक्त कराकर सामान्य आदमी के साथ संबद्ध किया। उन्होंने समय की मांग को देखते हुए हिंदी गद्य के लिए खड़ी बोली को सर्वथा उपयुक्त समझा। खड़ी बोली के माध्यम से उन्होंने पत्रकारिता, कहानी, निबंध, नाटक, समालोचना, जीवनी आदि गद्य की विभिन्न विधाओं का प्रवर्तन किया। भारतेंदु बाबू ने हिंदी गद्य की भाषा में सामान्य जन के समझने योग्य भाषा का मानक रूप तैयार किया। भाषा के साथ उन्होंने शैली के वैविध्य पर भी बल दिया। भारतेंदु बाबू ने तत्कालीन जनता के मानसिक क्षितिज को विस्तृत करने का उद्योग किया। अपने कई लेखों में उन्होंने अपनी गवेषणात्मक बुद्धि का परिचय दिया। वे समाज सुधार के पक्षपाती थे। धार्मिक होते हुए भी वे तर्क और गवेषणा से काम लेने में नहीं हिचकते थे। वास्तव में भारतेंदु के साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण से हिंदी गद्य और पद्य

0: दोनों में नवयुग की चेतना के दर्शन होने लगे थे। अंग्रेजी साहित्य के संपर्क, भारतीय जीवन में एक नवीन चेतना के उदय, पत्र पत्रिकाओं के प्रचार तथा जनता के संपर्क में आने की साहित्यिकों की महती इच्छा के फलस्वरूप गद्य के एक नवीन विधान का स्वरूप सामने आया। इस नवीन विधान को निबंध संज्ञा प्राप्त हुई। विषय की दृष्टि से विचार करने पर भारतेंदु के प्रधानतः दो प्रकार के निबंध दृष्टिगत होते हैं। पहला, ऐसे निबंध जिनका सीधा संबंध सामाजिक समस्याओं से है और जिनमें धर्म, राजनीति, आचार व्यवहार, प्राचीन गौरव, वर्तमान सामाजिक पतन आदि अनेक विषयों पर चर्चा की गई है। दूसरे, ऐसे निबंध जिनमें विज्ञान, इतिहास, मनोभाव आदि पर विचार व्यक्त किए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समाज सुधारक का व्यक्तित्व भी साहित्यिक व्यक्तित्व से कम महिमामय नहीं था। इसी कारण इनके निबंधों में समाज सुधार की समस्या ही अधिकतर सामने आई है। विशेषकर स्त्री समाज के उत्थान के संबंध में इनके विचार श्लाघनीय हैं। इस दृष्टि से भारतेंदु का भ्रूण हत्या शीर्षक निबंध महत्वपूर्ण है। इनके निबंधों में राजनीतिक चेतना की झलक भी स्पष्टतया देखी जा सकती है। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता शीर्षक निबंध में अंग्रेजों की मनोदशा का चित्रण बड़ा ही सूक्ष्म दृष्टि से किया गया है। भारतेंदु ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला और भाषा एवं साहित्य सभी विषयों पर कुछ न कुछ लिखा है। उनका रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका आदि पुरातत्व संबंधी, काश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय आदि इतिहास संबंधी, तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष आदि धर्म संबंधी, संगीत सार, जाति संगीत आदि कला संबंधी तथा हिंदी भाषा और नाटक आदि भाषा और साहित्य संबंधी निबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु ने यात्रा वर्णन तथा ऋतु वर्णन संबंधी ललित निबंध भी लिखे हैं। उनके यात्रा वर्णन बड़े ही रोचक हैं। उनमें उनकी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति एवं गुण व्यंग्य की प्रवृत्ति एक साथ लक्षित होती है। शैली की दृष्टि से उन्होंने विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णात्मक, कथात्मक सभी शैलियों में निबंध रचना की है। नाटकों का इतिहास विचारात्मक निबंधों में महत्वपूर्ण है। सूर्योदय भावात्मक निबंधों में प्रसिद्ध है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है आत्मव्यंजक निबंधों में आता है। बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षाकाल, वैद्यनाथ की यात्रा आदि निबंध वर्णात्मक हैं। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न कथात्मक निबंध है। इस प्रकार अपने युग की सभी प्रचलित शैलियों में निबंध रचना करके भारतेंदु ने विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। भारतीय चिंतन का मूल आधार अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, समानता की भावना, समाज सुधार आदि उनके निबंधों में सर्वत्र देखे जा सकते हैं। समाज उत्थान का भाव उनके संपूर्ण साहित्य में परिलक्षित होता है। राष्ट्रीयता का भाव उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। उनके संपूर्ण साहित्य में राष्ट्रीयता का स्वर देखा जा सकता है। वे एक पक्के राष्ट्रभक्त थे। राष्ट्रहित के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। भारतीय चिंतन के अनुरूप उनके निबंधों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। उनका संपूर्ण निबंध साहित्य भारतीय चिंतन से परिपूर्ण है। उनके निबंधों में राजनीतिक एवं समाज सुधार की प्रवृत्ति स्पष्टतः देखी जा सकती है। भारतेंदु के निबंधों में भारतीय चिंतन सर्वत्र परिलक्षित होता है। आत्मीयता की प्रधानता के कारण उनके निबंधों में रोचकता अधिक आ गई है। साहित्य को जनजीवन के समीप लाने में उनके निबंधों का बहुत बड़ा हाथ माना जा सकता है। विषयों की अनेक रूपता और इसके फलस्वरूप निबंध लेखन की विभिन्न शैलियों का उदय उनके निबंधों को भारतीय चिंतन से जोड़ते हैं। उनके निबंधों में व्याप्त उदारता एवं व्यापकता की भावना भारतीय चिंतन का मूल आधार है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनुभा पांडे से उनकी वार्ता भारतेंदु के निबंधों में भारतीय चिंतन। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए कुछ गीत।

अभी आपने जो गीत सुना, उसे हमने लिया था फिल्म चा चा चा से। गीत नीरज का, संगीत इकबाल कुरैशी का था। मोहम्मद रफ़ी को आइए सुनते हैं फिल्म पालकी में। गीत शकील बदायूनी का, संगीत नौशाद का है।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम
1: तो क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब जब एक से

0: ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: मोहम्मद रफी की आवाज में आइए अब सुनते हैं फिल्म लाल पत्थर का ये गीत। हसरत जयपुरी के गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन।

फिल्म गाइड का गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शैलेंद्र के गीत को संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
3: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
2: सीकेवाईसी मतलब?
3: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी।

0: बाकी सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, आरबीआई कहता है
0: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: मोहम्मद रफी की आवाज में आइए आपको सुनवाते हैं मजरू सुल्तानपुरी की एक गीत रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम मेरे हमदम मेरे दोस्त।

0: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। mmsky, सीखो भी कमाओ भी।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: और आइए फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। फिल्म संघर्ष के इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीतबद्ध किया है नौशाद ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। फिल्म संगीत आप हमारे केंद्र से 10:50 पर भी सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालास फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
5: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
4: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
6: 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
4: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि ये समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ 30वां विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
7: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
4: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308-8718, 0112308-8719। आप व्हाट्सएप नंबर 9968291988 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 9779851316807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
8: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
9: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है।

0: जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीएनजी के मूल्य में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित सीएनजी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
2: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एन योव एनजी को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हों, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है। आईटी शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में दो दिन की गिरावट थमी।

0: आइए सुनते हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में ये पॉडकास्ट राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अनुसंधान सेवा के निदेशक डॉक्टर आर ए कौशिक से बात कर रही हैं डॉक्टर विभूति सिंह।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे पॉडकास्ट के एपिसोड में। आज के अंक में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आर ए कौशिक, जो निदेशक अनुसंधान सेवा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में, और इनसे हम चर्चा करेंगे पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के समक्ष क्या चुनौतियां हैं इस बारे में, और भी ढेर सारी बातें करेंगे। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: सभी को नमस्ते, धन्यवाद।
1: सर सबसे शुरुआत में मैं तो ये जानना चाहूँगी आपसे कि हमारी आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस बार स्थापना को, तो आकाशवाणी से जुड़ी हुई कुछ याद या कोई मेमोरी आपके पास है जो शेयर करना चाहें हमारे श्रोताओं से?
2: सबसे तो ये है कि हम जब बचपन में थे, मेरा बचपन गांव में हुआ है, तो रेडियो उस टाइम बड़ा पॉपुलर था और इस पर बहुत सारे प्रोग्राम आते थे, और इवन पशुओं के ऊपर भी एक किसान का बच्चा उस पर भैंस पर बैठा हुआ है और वो भी अपना रेडियो साथ लेके उस पर प्रोग्राम सुन रहे हैं, इतना प्रचलित था। और किसी की शादी होती थी तो रेडियो उसको दहेज में मिलता था, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। देखिए
1: जी, उम्मीद करते हैं आपको मिला होगा।
2: यस,
1: थोड़ा सा अपना पृष्ठभूमि बताएं सर अपने।
2: मेरा जो है स्पेशलाइजेशन कृषि में, एक वैज्ञानिक हूँ, और मेरा जो खोज रही है वो फलों में रही है। मेरा तकरीबन 20 साल का अनुभव है, खासकर रिसर्च में, टीचिंग में और एक्सटेंशन में, और बहुत सारी चीज़ें हमने किसानों को जो पहुंचाने वाली बात है, हमने बहुत सारे किसानों के लिए प्रोग्राम किए हैं खेती बाड़ी से रिलेटेड। और मैंने वहाँ पे किसानों के लिए, हमारे यूनिवर्सिटी में भी ऐसी, उदयपुर में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी थी, उसमें एक हमने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की भी स्थापना की थी, जिसके द्वारा हम किसानों से संबंधित, ग्रामीण महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं आज भी उनसे।
1: तो अब हमारे विषय पे लौटते हैं, पर्यावरण संरक्षण से जानने से पहले हम जाएंगे कि आप श्रोताओं को बताएं कि पर्यावरण दरअसल क्या है।
2: आज हर जगह हम पर्यावरण की बात करते हैं, उसके प्रदूषण की बात करते हैं, लेकिन एक यदि साधारण आदमी को, यदि किसी स्कूल के बच्चे को समझाएं कि पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है
1: जी,
2: तो पर्यावरण की यदि हम बात करें तो जो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उसमें आपके सभी प्राकृतिक चीज़ें भी आ गई, मानव निर्मित मैन मेड चीज़ें हैं वो भी आ गई, जैसे, और उसमें जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, हवा है, पानी है, ये सारी चीज़ें मिलके आपका पर्यावरण की संरचना करते हैं, उसको पर्यावरण को बनाते हैं।
1: तो अब बात करें पर्यावरण संरक्षण की, तो आप बताइए कि ये संरक्षण या पर्यावरण के समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये जल की है, हवा की है, सॉइल की है, या बायोडायवर्सिटी जिसे जैव विविधता कहते हैं, किससे जुड़ी हुई समस्या मूल है और सबसे विकराल है?
2: पर्यावरण का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ही जीवन का मूल आधार है। और आज के दिन हम देखें तो बहुत सारी बातें हो रही हैं पर्यावरण से संबंधित, हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, कैसे बहुत ज़्यादा कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं जंगल में आग लगी हुई है, एक समय में ही इतनी बारिश हो जाती है जो साल भर में होनी चाहिए थी, फिर कई दिनों तक सूखा रह जाता है, जो हमारे कृषि आधारित देश होने के नाते उसको प्रभावित करता है। लेकिन क्या है कि दुर्भाग्य इस बात का है कि मानव बड़ा लालची हो गया है, और वो अब उस लालच में वो हमारे

0: जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो जल है, जलवायु है, वन है, उनका अंधाधुंध उनका दुरुपयोग कर रहा है, उनका उपयोग कर रहा है, और उससे हमारे खनिज भी उसमें शामिल हैं। हमारी अब ये कर्तव्य है कि उसको अति दोहन रोका जाए, उसको सस्टेनेबल यूज़ जिसकी बात करते हैं वो रखा जाए, और हम अपनी आने वाली जनरेशन जो हमारी भावी पीढ़ी है उसके लिए भी इन संसाधनों को बचा के रखें ताकि इस पृथ्वी पर जीवन बना रहे। तो इस लिहाज से पर्यावरण जो संरक्षण की बात है वो बहुत ही उचित है, और हमें इसको जन जनमानस तक इसको पहुंचाना है ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को यह संपदा अच्छी रूप से दे सकें और हम जीवन इस पृथ्वी पर अच्छा जीवन जी सकें।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें हमारा जो प्रदेश है यानी या ग्वालियर है जो हमारा अपना शहर है, इस पर्टिकुलर स्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपको लगता है?
0: यदि आप शहर में कहीं भी निकलें, आप शहर की तरफ जाके देखें तो आपको अपने आप में ही दिखाई देगा कि कितने कूड़े के ढेर लगे हैं
1: जी,
0: कितना प्लास्टिक हर जगह है, पड़ा हुआ है। और प्लास्टिक एक ऐसा है कि उसको सालों तक पड़ा रहने के बाद भी वो डिकम्पोज नहीं होता, वो गलता नहीं, तो एक भारी समस्या। यदि हम म्यूनसिपल कमेटी का भी वर्णन करें तो उनके लिए भी एक शहरों में बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। और उसके साथ साथ उसमें क्या हो रहा है कि उसका शहर के इधर उधर भी फेंक देता है एक जनमानस, तो उससे जो है जैसे आपने देखा गायें हैं, गायें उसको खा लेती हैं, तो यहाँ तक भी है कि गायों के पेट में कई बार कई कई किलो कचरा निकलता है और कई गायों की मौत भी हो जाती है, तो वो प्लास्टिक का सबसे बड़ा। और यहाँ तक भी पाया गया है कि अभी कुछ अनुसंधान हुए हैं माइक्रोप्लास्टिक के नाम से है, वो जो हम प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ करते हैं आज के दिन हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हमारी बॉडी में वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा हो रहा है, उसके बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। तो वो प्लास्टिक जो है एक बहुत बड़ी शहर में जो औद्योगिकरण कहो शहरीकरण कहो उसकी वजह से पर्यावरण को एक उसके साथ शहरीकरण में और जो दूसरा बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं उनसे भी हमारे पर्यावरण को बहुत सारा पोल्यूशन मिल रहा। हमारे व्हीकल बहुत बढ़ गए हैं और व्हीकल बढ़ने के बाद बाद उसके साथ साथ हमारा जो मेंटेनेंस है उसको भी एक आम जन उसको ठीक से नहीं रखता, वो भी एक पोल्यूशन का कारण बन रहा है। उससे जो व्हीकल ही में जो वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो वो भी एक खतरनाक स्तर पर पहुँच चुके हैं। और अभी मैं कहीं पढ़ रहा था तो अभी हिमालय पे जो बद्रीनाथ पे यात्री गए थे तो वो 288 टन प्लास्टिक का कचरा छोड़ के आए। तो उस कचरे को जो हमारा हिमालय जो हम कहते हैं वहाँ पे बहुत शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, यदि हम ऐसे उस उन क्षेत्रों में भी ऐसे प्लास्टिक छोड़ के आएंगे पर्यटन के हिसाब से हम, तो वो कितनी बड़ी भारी समस्या और कितना पॉल्यूशन वहाँ पर पैदा करेगा, ये एक सोचने का विषय है।
1: देखिए आपने खुद बताया कि सरकार की नीतियाँ भी काम कर रही हैं, तो उनके समक्ष सबसे बड़ी क्या दिक्कत लगती है, जो नीतियाँ हैं इनमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्यों नहीं असर कर रही हैं
0: नीतियाँ? निसंदेह नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं पर्यावरण से संबंधित, बहुत सारी संस्थाएँ काम कर रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें जब तक जन सहभागिता नहीं होगी तब तक हमारे वांछित जो परिणाम हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे। तो जन सहभागिता का चाहे वो, अब प्लास्टिक का हम बार बार कह रहे हैं कि भी प्लास्टिक आप यूज ना करें, ऐसा प्लास्टिक जो एक बार प्रयोग में लाने के बाद जिसको फेंकना पड़े उसको यूज ना करने की बात कह रहे हैं, लेकिन हम बाज़ार जाते हैं तो वही हमारी सब्जियां हम उसी प्लास्टिक की थैली में लेके आ रहे हैं। यदि हम घर से ही अपने कपड़े की थैली ले जाएं और उसमें हों तो काफ़ी हद तक एक इंडिविजुअल लेवल पे भी हम उसको बचा के रख सकते हैं। तो ये है एक, हम बार बार कह रहे हैं कि भाई आपने जो भी है ऊर्जा को बचा के रखना है, तो हम यदि हमें 10 कदम भी जाना है तो भी हम गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो उस तरह के छोटे छोटे जो प्रयास हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और हर नागरिक को इसमें अपनी समझदारी दिखानी होगी, अपनी भागीदारी दिखानी होगी, तभी जाके वो स्केल अप हो पाएगा। अदरवाइज़ इसका जो हमारा उद्देश्य है, चाहे गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं, अभी उसमें जैसे अभी है कि भाई माँ के नाम एक पेड़ लगाओ, तो वो कितना अच्छा है, कितना हमारे जंगल हालांकि बहुत उसमें पेड़ लगे हैं, लेकिन यदि हम ये बना लें कि भाई हमें हमारे हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना है, तो हम यदि 70 साल भी जिए तो ज़िंदगी में हम 70 पेड़ एक आदमी लगाएगा, तो किससे उस अपना अपना पर्यावरण उससे सुधर जाएगा। तो उस तरह के कदम उठा के हम जो हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको हम सफल बना सकते हैं।
1: तो ये ज़मीनी स्तर पर क्या लगता है आपको कि क्या समस्या है जिस कारण जो जनमानस है गंभीरता नहीं समझ रहा या शामिल नहीं होना चाहता उन प्रयासों में?
0: अवेयरनेस, बहुत सारी अवेयरनेस के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जैसे अभी मैं हमारे कृषि से संबंधित बताऊं तो हमारा एक है खेत बचाओ अभियान चल रहा है, 1 जून से 30 जून तक होगा। हम हर एक ज़िले में, हर एक गांव में, हर एक खेत पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि ताकि आप जो हमारी मृदा है, हमारी भूमि है, उसकी उर्वरा शक्ति बनाए रखें। उसमें बहुत सारे हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वो कम से कम डालें, वो भी एक प्रदूषण का कारण बन रहा है। तो उसमें हर स्तर पर गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन क्या है कि हम कुछ हद तक किसान हमारा जैसे लालची है या जो यूज़ कर रहा है उसका मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा पैदावार लेंगे, वो कल के बारे में या अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहा। अभी जैसे मैं पंजाब की बात बता रहा हूँ तो वहाँ पे कृषि में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, हम उनको एक सेफ लिमिट बताते हैं, उसके बाद भी वो सोचते हैं कि भाई हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे कीड़े अच्छी तरह से मरेंगे और पैदावार बढ़ेगी। तो वो एक हमारे अंदर नेशनलिटी की जो भावना है वो जब तक नहीं आएगी हर कोई इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सोचेगा। और शुरू से ही यदि हम अपने स्कूल में बच्चों को सिखाना शुरू कर दें कि भाई पर्यावरण के ये होंगे, कल ने हम इस स्तर पर नहीं चाहें कि हम उस स्तर पर पहुंच जाएं कि वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो उससे बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान और हमारी हर किसी की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है।
1: आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बच्चों, बचपन से ही लोगों को शामिल कर लेना चाहिए इन प्रयासों में और उनके अंदर ये एक समझ विकसित करनी चाहिए कि ये कितना ज़रूरी कदम है। डॉक्टर कौशिक, अब हमको बताइए कि पानी बचाने की बात करते हैं, सेव वाटर, और ज़मीन में पानी लौटाना जिसको रिचार्ज कहते हैं, इसके लिए ये लोग अपने स्तर पर क्या क्या कर सकते हैं?
0: अभी ये कहने को छोटी सी बात लगती है लेकिन हम अपने घर से ही शुरू करके बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हम सुबह उठते ही ब्रश करते हैं और उसमें हमारा नल, जब तक हम ब्रश करते हैं 10 मिनट 5 मिनट तो नल चलता रहता है, उसमें तकरीबन हम 1.5 लीटर, यदि घर में 5 आदमी तो 5-7 लीटर तो हम इसी तरह बर्बाद कर सकते हैं। तो हम हमारे बच्चों को या हम खुद अपनाएं कि भाई जब हमें ज़रूरत है तभी हम नल चलाएंगे। इसी तरह ही हम दाढ़ी बनाते हैं, सेव करते हैं तो उस तरह हम मिसयूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह से हमारे घर में जैसे अभी बारिश का पानी आ रहा है, खूब बारिश होगी तो कितना पानी हमारे व्यर्थ बह जाता है और यहाँ तक कि हमारा जो सीवर सिस्टम है वो भी जवाब दे जाता है। सारे शहर में पानी पानी हो जाता है, हमें कितनी परेशानी का सामना करता है,
1: सड़कों में भी।
0: और इसमें अब ये है कि अपने घर का पानी आप घर में ही रख सकते हैं, उसको रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम है कि आपका पानी आएगा, उसको नीचे आप ले जाके छत से अपने नल के और उसमें भूमि में आपने लगा दिया, तो उससे जो हमारे एक समस्या आ रही है कि हमारा जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, तो यदि हमारे रेन वाटर को रिचार्ज कर लें हम तो हमारा बहुत भारी पानी की बचाव होगी और आने वाले जनरेशन के लिए भी पानी मिल सकेगा। और इसी बात को आप यदि राजस्थान में जाके देखें तो कितना वो जहाँ पानी नहीं होता, सारे बारिश से वो पूरे साल भर का पानी इकट्ठा करके रख लेते हैं, एक उसमें टैंक बावड़ी बोलते हैं वहाँ पे, तो उसमें आप जैसलमेर बाड़मेर जाएँ तो आज के दिन भी आप पाएंगे कि वहाँ पर सारा पानी का संरक्षण ऐसे करते हैं, वहाँ पर कोई नदी नाला ट्यूबवेल हैंडपम्प नहीं है। तो ये वहाँ से हम सीख सकते हैं कि कैसे पानी की क्या महत्ता है और कैसे उनको बावड़ी बोलते हैं, उसमें ज़मीन में अंडरग्राउंड वो सार बारिश के पानी से, बहुत कम बारिश होती है उसके बावजूद भी वो पानी को उसमें सज के रखते हैं और उसको सारे साल उसी से काम चलाते हैं।
1: तो जो रिचार्ज करने का जो ही एक तरीका होता है ये क्या बहुत महंगा है क्या घरों में बनवाना, छोटे शहरों में क्या ये समस्या है ऐसा करने में?
0: नहीं नहीं, बहुत ही कोई इस पर कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, बिल्कुल आराम से तो कुछ पैसे में ही इसको कर सकते हैं। और मेरा तो कहना यही है कि हम घर अपना घर बनाएं तो उसमें ये इनबिल्ट, जैसे एक तो आप सोलर वाला जो टॉप ऊर्जा बचाने वाला और ये रिचार्ज वाला उसी टाइम यदि हम करवा लें तो ये हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए, जल और ऊर्जा के बचत के लिए बहुत बड़ा कदम हो सकता है।
1: और जो पहले से बने हुए घर हैं उनमें अगर ये रिचार्ज वाली फैसिलिटी कोई करवाना चाहे
0: हो सकती है, बिल्कुल आराम से, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 5-7 हज़ार रुपये में घर में आराम से इसका हो जाएगा।
1: और भी कुछ आप कहना चाहेंगे पानी बचाने के लिए?
0: पानी के बारे में तो आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है, जल बिन सब शून्य है, थर्ड वर्ल्ड वार होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो जल के ऊपर ही लड़ा जाएगा। तो ये और एक स्वच्छ पानी बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस है, और आपने अभी खबरों

0: में भी देख रहे होंगे कुछ, जैसे कल झाबुआ का अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे कैसे औरतें वहाँ पे किलो में कई किलोमीटर चल के और नीचे से पानी इकट्ठा कर रही हैं। तो ये अभी भी हम कहने को बहुत प्रोग्रेस कर गए हैं, लेकिन बहुत कुछ करना है। और एक जो स्वच्छ जल एक आम आदमी को उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसका करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें हम अकेली सरकार नहीं कर सकती, उसमें हम सबको मिलके अपने एकजुटता दिखा के एक एक बूंद बचा के, हम बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है। तो इस तरह की यदि हमारी मानसिकता होगी तो निश्चित रूप से हमारा जल बचत होगा।
1: वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कदम।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जैसे अभी कैंपस की बात करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, तो हमारा एक भी बूंद पानी हम व्यर्थ नहीं जाने देते। सारा छत का पानी हमारा एक तालाब है उसमें इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें ही मछली पालन कर रहे हैं। तो इस तरह का करके सारा आप कर सकते हैं। जहाँ एकदम ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे हम जो नीचे का एरिया है उसमें पानी इकट्ठा कर लेते हैं। किसानों को भी ये सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा पानी होता है तो आप अपने खेत में एक कुंड बना लें, एक तालाब बना लें, और उसमें जब ज़्यादा पानी हो जाता है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, और जब बारिश नहीं हो तब उसको अपनी खेती में या दूसरे कार्यों के लिए प्रयोग में कर सकते हैं।
1: तो अगर ये व्यवस्था आपके विश्वविद्यालय में जाके कोई देखना चाहे तो जा सकते हैं वो?
0: हाँ।
1: तो जो श्रोता हमें सुन रहे हैं वो इस बात को नोट कर सकते हैं, अगर इस तरह की व्यवस्था उन्हें देखना है प्रैक्टिकल, तो वो राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में जाके वो देख सकते हैं। अच्छा सर, अब जंगल और जंगली जानवरों के विषय में थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे कि इनकी जो रक्षा है या इनका संरक्षण है, इसमें स्थानीय लोगों का क्या रोल हो सकता है और क्या भूमिका एक्चुअली होनी चाहिए?
0: अभी आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे जो मैन वर्सेस एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में, मानव और जानवरों के बीच में एक युद्ध हो रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हमारे जंगल कट रहे हैं, और जंगलों को काट रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, और जो पशुओं के लिए जंगली जानवरों के लिए जो आश्रय था वो कम होता जा रहा है। तो इस वजह से वो जंगली जान एक एक फूड चेन है। ये हमारे जंगल नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे तो उसमें जो जंगल छोटे जानवर नहीं होंगे, छोटे जानवरों को खा के बड़े जानवर खाएंगे। तो एक फूड चेन का जो सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी है जीवन चक्र को चलाने के लिए। और वो हमारे लालच की वजह से, अंधाधुंध वनों की कटाई की वजह से वनों का क्षेत्र घट रहा है। और उसी वजह से यदि हम वर्षा की बात करें तो वर्षा भी कम हो रही है। यदि पेड़ पौधे कम होते हैं तो ये जानी मानी बात है कि उससे वर्षा भी कम होगी। तो वो सारी चीज़ें होने से हमारे जो जंगली जानवर हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, उनका जो ठिकाना है वो कम हो रहा है। और वो कम होने से उनके लिए वो शहरों की तरफ आ रहे हैं, और इसी वजह से आदमी और जानवरों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम हमारा जो वन क्षेत्रफल है उसको बढ़ाएं। तो उसके बढ़ने से हमारा जो वायुमंडल में जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ेगा।
1: जंगलों को बचाने के अलावा भी ऐसा कोई उदाहरण है आपके अनुभव में जहाँ पर जंगली जानवरों को बचाने के कोई प्रयास किए गए नागरिकों द्वारा और वहाँ पे
0: नागरिकों
1: सफलता मिली?
0: बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण यदि मैं कहूँ तो हम हिरण का ले सकते हैं। और जो एक कम्युनिटी है राजस्थान में,
1: जी
0: वो मतलब उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए खेजड़ी का पेड़ होता है आंदोलन चलाया। उन्होंने पेड़ों नहीं कटने दिए, औरतें उन पेड़ों के चिपक गई,
1: चिपको आंदोलन।
0: हाँ, चिपको आंदोलन वैसे ही राजस्थान में भी हुआ। और इसी तरह हिरन वो जो है बिश्नोई एक समाज है
1: जी
0: जो वो इसके लिए जानवरों को बचाने के लिए, पेड़ों के बचाने के लिए बहुत बड़ा उन्होंने आंदोलन किया है। और आज भी वो पूजते हैं इन दोनों चीज़ों को। खेजड़ी जैसे अपने यहाँ पे आम की लकड़ी हवन वगैरह में यूज करते होंगे तो वहाँ पे वो खेजड़ी का प्रयोग करते हैं सारे जो जितने भी हवन वगैरह या
1: पवित्र कामों में जी
0: उसके लिए है। और बहुत सारे समाज ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं उदयपुर का एक उदाहरण दूँ तो वहाँ एक तालाब है और वो तालाब में मछलियाँ हैं। तो वहाँ मछलियाँ उस तालाब में कोई भी आप मछली उससे निकाल नहीं सकते। तो पूरा गांव उसके संरक्षण उन मछलियों का कर रहा है। तो उसमें से उस तालाब से कोई भी मछली आप निकाल के उनको भोजन डाल सकते हो आप, लेकिन उसमें से मछलियाँ निकाल नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कई जगह ऐसे जंगल में वो हैं

0: बाबा के डेरे बोलते हैं, वो उस टाइप के हैं, तो वहाँ पे भी बिल्कुल इनका पशुओं का, जंगली जानवरों का जो शिकार है वो वर्जित है। आप सोच भी नहीं सकते वहाँ पे आप किसी पशु को मार सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे वो धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हमारे समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारा सामाजिक जीवन का हिस्सा है कि हमारे रीति रिवाज हैं जिनसे हम पशुओं को और पेड़ों को बचा के रखते हैं। अब जैसे पेड़ों को बचाने वाली बात है, बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हम पीपल का हिंदू बिल्कुल भी उसका नहीं करते, इसी तरह आंवला नौमी है एक, उस दिन आंवले की पेड़ की पूजा करते हैं। तो इस तरह बहुत सारे हमारे रीति रिवाज हैं जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, लेकिन अब शहरीकरण से, अर्बनाइजेशन से हम उन चीज़ों को भूल रहे हैं और उसी के नतीजे हमें भुगतने पड़ रहे हैं कि ये हमें पर्यावरण की जो इतनी भारी समस्या आ रही है, प्रदूषण की बात आ रही है, तो आज के समय की सबसे बड़ी समस्याएं बनती जा रही है।
1: जी, तो ऐसी परंपराएं या रीति रिवाज जो अल्टीमेटली हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं वो अच्छी हैं और उनको अपनाए रहना चाहिए। लोगों के व्यवहार की हम चर्चा कर रहे हैं, तो लोगों का व्यवहार इस तरह का हो जाए कि पर्यावरण संरक्षण में सहायता करे, तो जो अभी नहीं है आमतौर पर, तो ये व्यवहार को बदलने के लिए आपको क्या लगता है सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है?
0: इसमें सबसे जो जरूरी है वो है आपका बचपन से ही हम बच्चे को सहें। अभी मैंने देखा कि मैं एक दिन रेलवे स्टेशन पे था और वहाँ पे एक छोटा बच्चा है अपने उसके साथ, तो उसने वो जो है कुछ कचरा उसने कुछ खाया, तो वो मतलब उसको उसको बेचैनी थी कि कहाँ पे इसको मैं डालूं, तो उसने वो ढूंढा कचरे का पेटी और वहाँ पे जाके उसने डाला। तो यदि ऐसे हमारे सारे बच्चे ऐसे हो जाएं तो वो एक ये है, हमारे क्या है कि हमने देखा कि एक कोने में कूड़ा पड़ा है तो हम भी वहीं डालते जाते हैं, ढेर का ढेर वहाँ लग जाता है, ये एक हमारा सोच है। यदि हम स्कूलों में कॉलेजों में भी अभी ये अवेयर कर रहे हैं कि भाई ग्रीन कैंपस, प्लास्टिक फ्री कैंपस, तो इस तरह के जो स्कूल लेवल से ही और जो उस तरह के हमारा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आप यहाँ अभी। दूसरा ये है कि अभी जैसे कई देशों में तो आप कचरे का फेंक देते हैं इधर उधर तो आप पे बहुत भारी जुर्माना भी लगता है, तो हमारे यहाँ वैसी व्यवस्था भी नहीं है, वो डर भी नहीं है। तो एक तो अपने आप की खुद की जिम्मेवारी हो या आपको पनिशमेंट का डर हो, तभी जाके कुछ चीज़ें सुधर सकती हैं।
1: हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी एक मिशन लाइफ का मूल मंत्र हम लोगों को दिया था, मिशन लाइफ, जिसका अर्थ है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसके विषय में सर एक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताइए।
0: हमारे प्रधानमंत्री का 2021 में ग्लेक्सो में एक COP27 सम्मेलन हुआ था और उसमें उन्होंने दुनिया के सामने एक ये एजेंडा रखा था कि कैसे हम अपने पर्यावरण को अच्छा रख सकते हैं, और उन्होंने उसमें 7 बिंदुओं का जिक्र किया है जिसमें ऊर्जा की बचत की बात कही है। तो ऊर्जा की बचत हम घर से ही शुरू कर सकते हैं, हमारे जैसे हम जब कमरे से बाहर हैं तो लाइट ना जलाएं, पंखा बंद करके जाएं, तो उस तरह के छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे दैनिक जीवन से ही संबंधित हैं लेकिन हम उसमें बचा सकते हैं। अभी भी उन्होंने जैसे कहा है कि भाई सौर ऊर्जा वाली बात है उससे भी हम कर सकते हैं, और अभी कहा है कि अभी जैसे ईंधन की अब कमी हो रही है तो एक दिन आप गाड़ी का प्रयोग ना करें, और ऐसा ही प्रयोग हमने हमारी यूनिवर्सिटी में शुरू किया है। फ्राइडे के शुक्रवार के दिन हमारे कोई भी व्हीकल नहीं चल रहा है सारे पूरी यूनिवर्सिटी में, तो ये इस तरह का है।
1: तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब ले रहे हैं?
0: हाँ, उससे आ रहे हैं। और दूसरा उसमें है पानी की बचत, दूसरा जो बिंदु कहा था पानी, जैसे अभी हमने जिक्र करके बहुत ज़रूरी, हमारा जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसमें भी हम अपनी दिनचर्या से पानी की काफ़ी बचत कर सकते हैं। और जैसे आपने अभी हमने जिक्र किया कैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, या प्लास्टिक एक बहुत भारी समस्या जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, तो सिंगल यूज प्लास्टिक। और इसमें मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि इस पहल में आज से ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये इसका कहा है कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार, लेकिन उसमें क्या है कि अभी बैन है बहुत सारी जगह, फिर भी आप कहीं भी किसी सब्जी की दुकान पे जाके देखें और दूसरी दुकान पे वो उसी में दे रहे हैं, उसी में ले रहे हैं, चोरी छिपे कर रहे हैं, बहुत सारी जगह उनको पकड़ भी रहे हैं, फाइन भी लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं कर पा रहे, ये हमारा सीरियसनेस नहीं है या हमारा जो प्रयोग का तरीका है वो ठीक नहीं है। फिर उन्होंने एक बात कही, सशस्त्र

0: खाद्य प्रणाली, सस्टेनेबल फूड। तो जैसे हमारे जो हैं, जितना जो हमारे आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं वही हम प्रयोग में करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कम होगा उससे सस्टेनेबल। और इसके साथ साथ एक हमने भी यूनिवर्सिटी में भी कहा है, बच्चों को भी एजुकेट कर रहे हैं, थाली में लें उतना ही व्यर्थ ना जाए नाली में,
1: उतना ही हो थाली में
0: व्यर्थ ना जाए नाली में। तो उस तरह की जो है एजुकेट स्कूल में कॉलेजेस में हम करें, तो अदरवाइज आप देखें ब्याह शादियों में हमारा कितना खाना व्यर्थ चला जाता है। तो दूसरा है, उन्होंने कहा कि वेस्टेज जो है उसको कम करें, और उसमें सारा जो हमारा कचरा है उसमें तीन चीज़ें, हम 3R का कॉन्सेप्ट है, कम यूज़ करें, रिड्यूस द यूज, रीयूज करें, दोबारा उसको प्रयोग में ले आए चीज़ को, जैसे कपड़े की थैली आप बार बार यूज़ कर सकते हो उस तरह का करें, और रिसाइकिल, फिर वो बिल्कुल फट जाए तो उसको दोबारा ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह 3R का जो कॉन्सेप्ट है उसको यदि हम कर लें तो भी हम बहुत सारा हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण में। एक दूसरा और जो हमारा आजकल देखा जो बड़ी भारी समस्या होने जा रही है, ई वेस्टेज, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है वो भी नहीं डिकम्पोज होता, और वो बहुत ज़्यादा कुछ नए नए मॉडल आ रहे हैं, लोगों के पास पैसा हो गया, चाहे वो मोबाइल है, टेलीफोन, आपका कंप्यूटर है, आपका प्रिंटर है, तो उसको भी हम थोड़ा सा कम यूज़ करें, और उसको ख़राब है तो रिपेयर यदि करवा लें तो भी हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और एक अपना जो स्वस्थ जीवन शैली, ये जैसे अभी हमने ये थोड़ी सी दूर जाना है तब भी हम व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं, तो यदि हम थोड़ा सा पैदल चलेंगे तो इवन जो हमारा डॉक्टर है, यदि आपको अपने अपना हृदय स्वस्थ रखना है तो पैदल चलिए, मॉर्निंग वॉक करिए, तो उस तरह का यदि हम चीज़ें करें तो ये तो इसके साथ हैं। इसके साथ साथ फिर उन्होंने अभी 2024 में एक और बात कही, एक पेड़ माँ के नाम, तो वो भी एक बहुत बड़ा चीज़ है पर्यावरण के संरक्षण में, तो उस तरह के भी प्लांटेशन हम करके भी पर्यावरण को। 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसमें विभिन्न कार्य होते हैं, और एक जन साधारण को उससे पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जाता है, तो इस तरह के प्रोग्राम भी इस पर्यावरण संरक्षण के बचाव में हमारे लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। उसी तरह से हमारा जो है कृषि में भी हम सारे जितने भी केमिकल्स यूज कर रहे हैं उनको भी कम से कम यूज करें, और निर्धारित मात्रा में यूज करें, समय पर यूज करें, तो भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं कृषि से होने वाले नुकसान को। और साथ साथ जो एक हमारा और नया जो आ रहा है पर्यावरण के लिहाज से बहुत अच्छा हो सकता है, वो है नेचुरल फार्मिंग, जो प्राकृतिक खेती की जो बात कर रहे हैं, यदि वो करेंगे तो हमारा वो भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा कृषि के उसमें, और पर्यावरण में भी उसमें हमारे स्वस्थ उत्पाद मिलेंगे, और हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहेगी, और हमारे पर्यावरण को भी उससे कोई नुकसान नहीं होगा।
1: मैं हमारे स्टूडियो में आके इतनी अच्छी जानकारी पर्यावरण संरक्षण और इसके विभिन्न पक्षों पर दिए के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन अंत में जाने के पहले, जैसे कि हमने आपको बताया कि 90 वर्ष आकाशवाणी के पूर्ण हो रहे हैं, आप अगर चाहें कोई अपनी पसंद का गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाना तो हमें बता सकते हैं, तो वो गीत हम श्रोताओं को सुनवाएंगे और जाहिर तौर पर आपको भी सुनवाएंगे।
0: में कोई भी कृषि से संबंधित कई
1: मेरे देश की धरती
0: वही
1: आप बोल नहीं रहे हैं तो मैंने बोल दी तो चलिए हम श्रोताओं को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। ये उनकी उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल उज्जैन के VVIP गेस्ट हाउस और पुलिस सामुदायिक भवन में महिला पुलिसकर्मियों, महाकाल मंदिर समिति की महिला कर्मचारियों और सफाई मित्रों के साथ रक्षाबंधन मनाया। मुख्यमंत्री ने राखी बंधवाई और सभी को उपहार भेंट किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज बालाघाट के लांची में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री यहां कन्या छात्रावास, उत्कृष्ट विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। नेपाल में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के बीच प्रदेश के अनूपपुर और नेपाल से भोपाल से गए लोगों के फंसने की खबर सामने आई है। अनूपपुर के 9 सदस्यीय ग्रुप से 3 लोग और भोपाल से गोसाई कुंडा तीर्थ का एक ही परिवार से जुड़े 29 लोग अब तक लापता हैं। राहत बचाव दल तत्परता से जुटा हुआ है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिन बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

विभाग ने आज रीवा, सीटी, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहां कई जिलों में हल्की से तेज बारिश होने के आसार हैं। और हॉकी इंडिया ने एफआईएच महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में ऐतिहासिक पांचवा स्थान हासिल करने वाली भारतीय महिला टीम के लिए 50 लाख रुपए के नगद पुरस्कार का ऐलान किया है। 1974 के बाद वर्ल्ड कप में भारत का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोता सुने, समाचारों और सूचनाओं पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। साथियों, आज है 29 अगस्त। आज का दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और खेल दिवस मनाया क्यों जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि होती है और उनके जन्मदिवस को मनाने के लिए हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। आज ही के दिन 1905 में उनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। 16 साल की उनकी उम्र थी जब वो भारतीय सेना में शामिल हुए। हालांकि उन्हें ध्यान सिंह उनका नाम था, लेकिन रात की रोशनी में वो अभ्यास करते थे। दिन की रोशनी में भी करते होंगे निश्चित तौर पर, लेकिन हॉकी की प्रैक्टिस वो इतनी ज़्यादा करते थे कि रात में भी किया करते थे। इसलिए चांद की रोशनी में अभ्यास करने की वजह से उनका नाम ध्यानचंद पड़ा। 1928, 1932 और 1936 लगातार 3 बार के ओलंपिक्स में लगातार भारत को उनके प्रयासों की वजह से 3 स्वर्ण पदक हॉकी में मिले। और जो मेजर ध्यानचंद का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी करियर था, उसमें उन्होंने 400 से ज़्यादा गोल किए। वो ज़माना था जब ये कहा जाता था कि ध्यानचंद की हॉकी स्टिक पर चुंबक लगी है, कि गेंद की पकड़ हॉकी से अलग ही नहीं होती। कई बार उनकी इस अद्वितीय प्रतिभा की वजह से उनकी हॉकी स्टिक को जांचा जाता था, परखा जाता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बनावट में सचमुच कोई खोट है जो सामान्य हॉकी से अलग है। इस महान खिलाड़ी के जन्मदिन को सम्मान देने के कारण राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर जाना जाता है। और इस दिन पूरे देश में जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको पुरस्कार दिए जाते हैं, न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि कोचेज को भी। हमारे शहर में भी इस तरह के बहुत से आयोजन किए जाएंगे। खेल प्रतिभाओं, खेल प्रशिक्षकों और खेल से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। देश में भी जितने बड़े खेल रत्न पुरस्कार हैं उनके लिए लोगों को आज के दिन नामित किया जाता है, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। श्रोता साथियों, खेल जो है वो हमारे जीवन में बेहद ज़रूरी है। खेल एक संपूर्ण व्यायाम है, लेकिन उसके साथ एक अलग तरह का रोमांच जुड़ा है। सामान्यतया ये माना जाता है कि जितने भी व्यायाम हैं वो सिर्फ शारीरिक क्रियाएं एक ही क्रम में लगातार किए जाने को व्यायाम कहा जाता है, लेकिन खेल एक ऐसा व्यायाम है जिसमें मनोरंजन भी जुड़ा है और हमारा जो है अभिरुचियाँ रुचियाँ भी जुड़ी हैं। खेल खेलना व्यायाम जैसा बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन अपने आप मज़े मज़े में हमारा शरीर व्यायाम कर लेता है। ग्वालियर में तमाम तरह के जो पारंपरिक खेल हैं वो भी खेले जाते हैं। और ग्वालियर में रहने वाले लोगों को ये मालूम है कि हर रक्षाबंधन पर साल में एक बार यहाँ का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जेसी मिल का मैदान, जिसे मनोरंजनालय भी बोला जाता है, वहाँ श्रावणी पूर्णिमा के दिन चकरी का मेला लगता है। वहाँ तमाम तरह के पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाता है। इस मेले को चकरी का मेला भी कहा जाता है। चकरियाँ घुमाई जाती हैं भिन्न भिन्न प्रकार से और देखना अद्भुत होता है इन्हें। लोग भारी भारी नाल उठाते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये खेल आयोजन नगर निगम करता है और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया जाता है। लेकिन इस बार बारिश इतनी हुई कि उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पानी भरा हुआ है,
जिससे खेल के आयोजन वहाँ नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ दिनों के लिए इस आयोजन को स्थगित कर दिया गया है। जब पानी सूख जाएगा तो ये आयोजन किया जाएगा। जो खिलाड़ी हैं चक्री चलाने वाले, भिन्न भिन्न प्रकार से चक्री चलाने वाले, कोई चक्री के घेरे में दिए बांध लेता है, कोई घुंघरू बांध लेता है, इतनी भारी भारी नाल उठाई जाती हैं, तो हंसली उठाई जाती हैं, अद्वितीय शारीरिक कौशल, शारीरिक शक्ति के कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। ये मेला देखने लायक होता है, ये ऐतिहासिक मेला है। और जो लोक में बसे हुए खेल हैं, शारीरिक क्षमताओं से जुड़े हुए, वो यहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इसे बनाए रखना, संजोए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। श्रोता साथियों, चूँकि आज खेल दिवस है, इसलिए खेल की बातें करना भी बेहद ज़रूरी है। खेलों ने करियर का एक नया आयाम हमारे सामने खोल दिया है। बहुत से बच्चे अब खेलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, खेल को ही करियर बनाना चाहते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। शासन प्रशासन द्वारा भी खेलों में तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, नए नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, खेल प्रशिक्षक बहुत अच्छे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, स्कूलों में भी ये व्यवस्था लागू है। और यदि किसी भी बच्चे में खेल की थोड़ी सी भी प्रतिभा है तो उसको निखारने के अवसर दिए जा रहे हैं। न सिर्फ अवसर दिए जा रहे हैं बल्कि माता पिता भी बच्चों को खेलों की तरफ आगे बढ़ाने में अपना योगदान ज़रूर दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी भी हमारी मानसिकता में वही है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक तो माँ बाप भी उनको पूरी तरह से खेलों की तरफ अग्रसारित करते हैं, चाहते हैं। माता पिता खुद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक बच्चों को छोड़ने जाते हैं, लाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बच्चे का एक संपूर्ण विकास जो है वो खेलों के बिना नहीं हो सकता। तो ये बहुत अच्छी बात है, बच्चे खेलों में बहुत जीवन के अच्छे अच्छे गुण सीखते हैं, सहयोग सीखते हैं, जीतने में कैसे व्यवहार करना है, हारने में कैसे व्यवहार करना है, सहयोग के साथ मिलकर कैसे खेलना है, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, समूह में किस तरह व्यवहार करना है, ये सब खेल हमें सिखाता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाता है। लेकिन एक उम्र के बाद माता पिता को भी ये लगने लगता है कि खेल उनके जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तित करने वाले नहीं हैं, इसलिए ज़्यादातर खिलाड़ी बच्चे एक उम्र के बाद पढ़ाई लिखाई में तल्लीन हो जाते हैं और एक करियर तलाश करने के लिए, रोज़ी रोटी तलाश करने के लिए पढ़ाई लिखाई करके उस तरफ को मूव कर जाते हैं। ये एक हर्डल है जिसे ख़त्म

करना बेहद ज़रूरी है। हालांकि पिछले कई वर्षों से भारत तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोहों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए लंबी कठिन मेहनत होती है। इन खिलाड़ियों को देखकर इनके पीछे की गई मेहनत हमें समझनी चाहिए और खिलाड़ियों का ऐसा ही सम्मान करना चाहिए। यूं तो खिलाड़ी खेल खेलते हैं, लेकिन जीवन में भी बहुत सारे लोग हमसे खेल जाते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को पहचानना भी ज़रूरी है।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: आपकी चाय।
3: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
2: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
3: कैसे?
2: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
3: इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
2: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
3: ना भाई ना।
4: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। श्रोता साथियों, कभी आप बोर होते हैं? आप कहेंगे हाँ हम होते हैं, लेकिन कितना बोर होते हैं? और आज से 10-12 साल, 15 साल, 20 साल पहले यदि आप थे और आपको होश है, याद है उस दौरान की बातें, तो बताएं क्या आप उस समय भी बोर होते थे? आप कहेंगे उस समय हम ज़्यादा बोर होते थे, आजकल कम बोर होते हैं या नहीं होते हैं? आपके बोर ना होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके हाथ का मोबाइल। जब भी हम खाली बैठते हैं, हमारे हाथ में ये फ़ोन होता है और हम लगातार इसमें कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। इसलिए हम कब बोर हो रहे हैं ये हमें पता नहीं चलता। आइए जानते हैं बोर होना होता क्या है। दरअसल जब हमें करने को कुछ नहीं होता, दिमाग बार बार रेपिटेटिवली वही बात सोचता रहता है, खाली होता है, तो वो बोर हो रहा होता है। हमारा दिमाग, हमारा शरीर लगातार चलायमान रहने के लिए है, और जब न दिमाग को कुछ काम होता है और न शरीर को, तो हम बोर होना शुरू हो जाते हैं। क्या बोर होना अच्छा है? आप कहेंगे नहीं, बोर होना अच्छा नहीं है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि बोर होना दरअसल हमें डिप्रेशन में धकेलता है, हम चिंताओं से घिर जाते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन बोर होना किस तरह से अच्छा है, आइए आज ये जानते हैं, फिर आप अपने लिए भी बोरियत ढूंढेंगे। दरअसल बोर होना क्रिएटिव होना हो सकता है। कई बार क्रिएटिविटी की शुरुआत करता है ये बोर्डम। जब हम लगातार मोबाइल, रील्स, नोटिफिकेशन ये सब देख रहे होते हैं ना, और मनोरंजन से अपने दिमाग को व्यस्त रख रहे होते हैं, तो हम दिमाग को लगातार बिजी रख रहे होते हैं, खाली होने का उसे मौका नहीं मिलता। क्योंकि जब भी हमारा दिमाग खाली होगा तो खुद के लिए कोई ना कोई स्टिमुलेशन तलाशेगा, और जब स्टिमुलेशन तलाशेगा तो यहीं से जन्म लेंगे, पैदा होंगे नए तरीके के विचार। और ये नयापन जो है, यही है क्रिएटिविटी। दिमाग उस खालीपन के दौरान, उस बोरियत के दौरान जगह जगह भटकता है, नए नए कनेक्शंस बनाता है,

हमारी कल्पनाएं सक्रिय हो जाती हैं, हम कहानियां सोचने लगते हैं, कल्पनाएं करने लगते हैं, उस बोरियत से निकलने के समाधान ढूंढने लगते हैं और करते हैं सेल्फ डिस्कवरी।

यदि आप बोरियत हो रहे हैं, आपको बोरियत महसूस हो रही है, बोर हो रहे हैं, और अपने बोरियत को दूर करने के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन तलाशते हैं, तो आप सिर्फ समय काटते हैं। जैसे बोरियत को दूर करने के लिए डिस्ट्रैक्शन होता है आपका मोबाइल फ़ोन, तो आप सिर्फ समय काटते हैं, उतना समय बीत जाता है और फिर आप आगे की ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन यदि बोरियत के साथ आप अपने दिमाग में कुछ विचार नए पैदा कर रहे हैं, कोई नई क्यूरियोसिटीज़ पैदा कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये आइडिया क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। इसलिए कभी-कभी बिना मोबाइल के, बिना संगीत के, बिना किसी काम के 15-20 मिनट बैठिए, ये हो सकता है आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हो। शुरुआत में थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है आपको इस प्रैक्टिस को करते समय, लेकिन कुछ ही देर के बाद, एक दो दिन की ही प्रैक्टिस के बाद, दिमाग अपने आप उस दिशा में चलने लगेगा, कुछ न कुछ ढूंढने लगेगा, और आपके लिए बोर होना समस्या नहीं रहेगी। दिमाग अपने आप ये बात ढूंढ लेगा कि उसे कुछ नया करना है।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: तुलिका एक बार फिर हाजिर है गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम के आज के अंक में। आगे बढ़ते हैं, चलिए आपको आज एक नए टर्म से परिचित कराते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक सिचुएशन में डालते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, एक बच्चा लगातार छोटी छोटी हरकत कर रहा

रहा है दूसरे बच्चे के साथ, इरिटेट कर रहा है या परेशान कर रहा है या हल्के फुल्के ढंग से उसे शारीरिक प्रताड़ना दे रहा है, मार रहा है, धक्का दे रहा है, कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है, दूसरा बच्चा लगातार अवॉइड कर रहा है और अपने में मगन है, लेकिन लगातार किए जाने वाले इस तरह के व्यवहार को उसका दिमाग तो नोटिस कर ही रहा है, फिर अचानक एक बार जो बच्चा लगातार सहन कर रहा होता है वो उठकर उस बच्चे को ज़ोरदार तरीके से या तो मार देता है या धक्का दे देता है और फिर अपने काम में लग जाता है। लेकिन जो बच्चा पहले अब्यूज़िव था और गिरने के बाद वो इतनी ज़ोर से चीखता और चिल्लाता है और सामने वाले पर आरोप लगाता है कि हर व्यक्ति पर, दूसरे वाले बच्चे पर जो चिल्ला नहीं रहा है, जिसने धक्का दिया और गिराया आखिर में, उस पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि तुम गलत हो, तुमने इसे मारा, लेकिन उससे पहले जो 10 बार वो मार चुका था उसे कोई नोटिस नहीं करता। ये पूरी घटना देख करके किसी को भी ये लगेगा कि जो बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, वो पीड़ित बच्चा है, लेकिन असल में वो पीड़क बच्चा है। अब इसे अपनी ज़िंदगी में लेकर देखिए, कभी कभी हमें कोई लगातार ट्रिगर करता रहता है, हम कुछ नहीं बोलते और जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम ही दोषी साबित हो जाते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे कहते हैं रिएक्टिव अब्यूज़। रिएक्टिव अब्यूज़ एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल उस स्थिति के लिए किया जाता है जब कोई भी व्यक्ति लगातार उकसाया जाए, उसके ऊपर भावनात्मक दबाव बनाया जाए, उसका अपमान किया जाए या फिर किसी तरह से उसे मैनिपुलेट किया जाए, जिसकी वजह से वो एक ही बार प्रतिक्रिया करे लेकिन वो प्रतिक्रिया तीखी प्रतिक्रिया हो और फिर सामने वाला उसकी उसी प्रतिक्रिया को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करे। ये है रिएक्टिव अब्यूज़। और आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाए कि देखा तुम ही तो हो असली अब्यूज़िव। ये जो रिएक्टिव अब्यूज़ है ये गुस्से में की गई प्रतिक्रिया होती है, लेकिन किसी भी प्रतिक्रिया का गलत हो जाना ये साबित नहीं करता कि आप अब्यूज़िव हैं। रिएक्टिव अब्यूज़िव होना नहीं होता। प्रतिक्रिया में किसी को नुकसान पहुंचाना, हिंसा करना या प्रतिक्रियावादी हो जाना नहीं होता, क्योंकि यदि कोई आपको प्रोवोक कर रहा है तो निश्चित तौर पर आपका तनाव बढ़ा रहा है वो, और लगातार बढ़ने वाला तनाव एक बार ऐसे होता है कि वो फट जाता है और किसी तरह का इमोशनल रिएक्शन आप दे देते हैं और इसी रिएक्शन को प्रमाण बनाकर आपको दोषी करार यदि दिया जाता है तो आप अपने आप पर दोष मत लीजिए। ये गैसलाइटिंग या मैनिपुलेशन पैटर्न का हिस्सा ज़रूर हो सकता है, इस मैनिपुलेशन में बिल्कुल मत पड़िए।

इस गीत के साथ ही आज का गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए अपनी दोस्त तुलिका को। नमस्कार। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अभी आपने हमारे केंद्र से सुना सूचना और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। आइए अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित डॉक्टर चित्तरंजन ज्योतिषी का शास्त्रीय गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग भैरव।

पंडित डॉक्टर चित्तरंजन ज्योतिषी से अभी आप सुन रहे थे राग भैरव में ये ख्याल। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10 बजते हैं, थोड़ी ही देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ग्वालियर जिले में पिछले 3 दिनों से अच्छी बारिश होने से लोगों को राहत मिली है। 27 अगस्त तक जिले में औसतन 573.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हालांकि पिछले साल इसी अवधि में करीब 1080 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जिले की सामान्य औसत बारिश 751.2 मिलीमीटर है, इसलिए इस बार अभी भी बारिश कम है। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ग्वालियर पहुंचे थे, जहां लाडली बहनों ने उन्हें राखी बांधी। बहनों ने लाडली बहना योजना के तहत अतिरिक्त राशि देने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद पत्र भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने बहनों के सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन और खुशहाली के लिए काम करने का भरोसा दिलाया। ग्वालियर में 80वां स्वतंत्रता दिवस भी उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। एसएएफ मैदान पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बीएसएफ के श्वान दस्ते और कलारी पट्टू का प्रदर्शन भी आकर्षण रहा। इसी क्रम में डबरा में बलराम कृषि महोत्सव के तहत किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। किसानों को ड्रोन तकनीक, स्मार्ट सिंचाई, उन्नत कृषि यंत्र, मौसम आधारित खेती और डिजिटल कृषि सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया। स्कूल, कॉलेजों और विभिन्न संस्थाओं में तिरंगा यात्राएं निकाली गई और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान का संदेश दिया। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में इशारा कैफे की शुरुआत एक मूक बधिर दंपति ने की है। खास बात यह कि इस दंपति का करीब 8 साल पुराना वैवाहिक विवाद भी मीडिएशन के जरिए सुलझाया गया। मीडिएशन की प्रक्रिया प्रशिक्षित मूक बधिर और सांकेतिक भाषा जानने वाले मध्यस्थों ने कराई। अब दंपति कैफे चलाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहा है। राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय का 19वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। कार्यक्रम में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने कहा कि विश्वविद्यालय देश की सांस्कृतिक धरोहर बनेगा। कुलगुरु प्रोफेसर स्मिता सहस्रबुद्धे ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और प्रगति की जानकारी दी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्वालियर में शक्ति दीदी नवाचार चलाया जा रहा है। इसके तहत जरूरतमंद महिलाओं को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर की नौकरी दिलाई जा रही है। फिलहाल जिले में 127 महिलाएं शक्ति दीदी के रूप में काम कर रही हैं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत अमरौल गांव में जिला स्तरीय शिविर लगाया गया। अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर सरकारी संस्थाओं का निरीक्षण किया और लोगों से सीधे उनकी समस्याएं जानी। शिविर के जरिए सीएम हेल्पलाइन पर 1819 शिकायतों का निराकरण किया गया। वहीं तीसरा जिला स्तरीय मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान आज बिलौआ नगर परिषद में आयोजित होगा। ग्वालियर के महाराजवाड़ा स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में चल रही पुस्तक प्रदर्शनी कल यानी 30 अगस्त तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। प्रदर्शनी में अलग अलग विषयों और लेखकों की कई किताबें उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से लगाई गई इस प्रदर्शनी का शुभारंभ कलेक्टर ऋषिका चौहान ने किया था। हरियाली महोत्सव पर ग्वालियर में पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ा पौधरोपण अभियान चलाया गया। रमौवा बांध के पास हुए कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। एक पेड़ मां के नाम और हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक ही दिन में करीब 5000 पौधे लगाए गए। ग्वालियर के LNIPE में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत कार्यक्रम हुआ। करीब 200 युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना और नशा मुक्त भारत का संकल्प दिलाया। युवाओं को खेल, शिक्षा और कला के जरिए सही दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। ग्वालियर में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ऋचिका चौहान ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। अगले 2 महीनों तक बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, चल समारोह नहीं किए जा सकेंगे और सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री फैलाने पर भी कार्रवाई होगी। जिले के ITM हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में नई स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। इनमें मॉड्यूलर OT कॉम्प्लेक्स, कार्डियो थेरेसिक सर्जरी, ICU और कार्डियक केयर यूनिट शामिल है। इन सुविधाओं से गंभीर हृदय रोगों और जटिल सर्जरी के इलाज में मदद मिलने की उम्मीद है। अंत में बात हॉकी की। ग्वालियर में हुई हॉकी इंडिया जूनियर और सब जूनियर महिला अकादमी नेशनल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने दोनों खिताब अपने नाम किए। प्रतियोगिता में देश भर की 25 टीमों ने हिस्सा लिया। शानदार प्रदर्शन के बाद समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख था नवीन श्रीवास्तव का, वाचन स्वर था दीपा सिंह का था। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था हमारा।

0: अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा।
1: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। मोतियाबिंद ऑपरेशन और बाद की सावधानियां, इस विषय पर डॉक्टर प्रदीप सिंह राठौर से बात कर रही हैं आभा गुप्ता।
2: श्रोताओं नमस्कार, सेहत की बात तरानों के साथ कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ। और हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम सेहत से संबंधित महत्वपूर्ण बात करते हैं किसी विशेषज्ञ से, और साथ ही होते हैं मधुर से गीत खास विशेषज्ञ की पसंद के। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप सिंह राठौर, और हम आपसे बातचीत करेंगे मोतियाबिंद के बारे में, उसका ऑपरेशन के बारे में और उसके बाद की सावधानियों के बारे में। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार,
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
3: मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ जानकारी अपने श्रोताओं को दे पाऊंगा आपके माध्यम से।
2: मोतियाबिंद के नाम से तो सभी परिचित हैं डॉक्टर साहब
3: जी,
2: ये मानना है कि एक उम्र के बाद ये होना ही होना है, लेकिन इसके बारे में उतनी ही ज्यादा भ्रांतियां भी हैं।
3: जी बिल्कुल।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये मोतियाबिंद होता क्या है?
3: कैमरे में लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस। इसी तरह हमारी आंख में भी लेंस होता है, वो होता है प्रोटीन का बना हुआ। तो जिस तरह से उम्र होती जाती है उस तरह से हमारे शरीर के सारे अंग शिथिल होते जाते हैं या उनके कार्य क्षमता कम होती जाती है, उसी तरह प्रोटीन के बने हुए लेंस पे परत चढ़ती जाती है। तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, मतलब उसमें से जो रोशनी जाने की क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। लेंस में आई हुई इसी परत को मोतियाबिंद कहते हैं।
2: तो हमारे श्रोताओं ने जाना कि मोतियाबिंद क्या होता है। आजकल देखने में आ रहा है कि कम उम्र में भी मोतियाबिंद केस आते हैं देखने में, तो ऐसा क्यों?
3: हर बीमारी के साथ होता है, कुछ अपवाद होते हैं। वैसे तो हम लोग इसको सेनाइल डिजीज बोल, सेनाइल डिजीज मतलब उम्र के हिसाब से आना, लेकिन ये जन्म के साथ बच्चों में हो सकती है।
2: अच्छा,
3: चोट लगने से मोतियाबिंद हो सकता है।
2: अच्छा।
3: और यहाँ एक बात मैं जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी जानकारी दे सकूं। अधिकतर कम उम्र में एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, आंख में खुजली और पानी जब आने लगता है, बहुत से लोग वो सीधे मेडिकल स्टोर से जाकर कुछ ड्रॉप्स ले लेते हैं और डालना शुरू करते हैं। उससे उनको खुजली और लालामी में तो आराम मिल जाता है, लेकिन कुछ दवाइयां पर्टिकुलरली स्टेरॉइड्स होती हैं, वो स्टेरॉइड के ड्रॉप आराम खुजली में तो दे देते हैं, लेकिन अगर उनको 3-4 महीने लगातार बिना चिकित्सकीय सलाह से डाल लिया जाए तो उसी उम्र पर मोतियाबिंद और काला पानी ग्लूकोमा बन जाता है।
2: अच्छा।
3: दूसरा, चोट लगने से मोतियाबिंद बन जाता है। अगर बच्चा माँ के पेट में है तो 5-6 तरह की वायरल डिजीज हैं, जो अगर मदर को हो जाए, माँ को हो जाए, तो उसकी वजह से बच्चे के जन्मजात ही मोतियाबिंद आ सकता है।
2: अच्छा।
3: तो ये कुछ अपवाद हैं।
2: तो इन्हें कैसे रोका जा सकता है यदि माँ को कोई बीमारी होती है?
3: कई सारी योजनाएं चल रही हैं, जननी सुरक्षा योजना, सरकार बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन हमें जागरूक रहना पड़ेगा। तो रेगुलर मेडिकल चेकअप से ही हम लोग बच सकते हैं।
2: अच्छा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर साहब ने बताई, श्रोताओं इसे आप नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, कि जब भी आंख में कोई समस्या हो, लालामी हो या खुजली हो या कोई एलर्जी हो, तो बिना डॉक्टर की सलाह के, यानी कि बिना नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह के, कोई भी दवा केमिस्ट से लेकर आंख में ना डालें।
3: जी जी।
2: ये तत्काल तो आपको आराम देगा, लेकिन हो सकता है भविष्य में आप कोई गंभीर बीमारी के शिकार हो जाएं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम अभी जारी है, और जैसा कि हमने अपने श्रोताओं से वायदा किया था कि गीत संगीत भी इस कार्यक्रम में होगा, ताकि हमारे श्रोता महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करें और उनका मनोरंजन भी हो। तो आज आपकी पसंद का पहला गीत कौन सा हम श्रोताओं को सुनवाएं?
3: मुझे हमेशा एक गाने ने बहुत प्रेरित किया है, वो है गाना इम्तिहान मूवी से, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।
2: बहुत अच्छा गीत है, प्रेरक गीत है, और निश्चित रूप से ये गीत आपको इसलिए पसंद है कि प्रेरणा देता है।
3: जी जी जी।
2: किशोर कुमार का गाया ये गीत है।
3: जब मैं MBBS कर रहा था उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन या स्पेशलाइजेशन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहिए, उससे पहले ज्ञान नहीं था। जब एक्सपोजर हुआ तब लगा, तो एक अंदर से मन में रहता था कि आप घर से पैसे कैसे लें या कैसे अपना खर्चा चलाएं, साथ ही PG करना भी जरूरी। तो वो जो कठिन समय था उस वक्त, ये इस गाने ने मुझे बहुत प्रेरणा दी, और तब से मुझे ये गाना बहुत पसंद है।
2: और निश्चित रूप से इस गाने की बदौलत आज आप एक सफल नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे श्रोताओं को जानकारी दे रहे हैं। बहरहाल श्रोताओं, आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म इम्तिहान से।

0: गीत वाकई में बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं ने इसे सुना तो उन्हें भी प्रेरणा मिली होगी। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। तराना का आनंद भी आपने लिया। आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि मोतियाबिंद के बारे में हम डॉक्टर प्रदीप सिंह राठौर से बातचीत कर रहे हैं। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। अच्छा, आपने बताया कि मोतियाबिंद क्या होता है, क्यों होता है, तो इसके क्या लक्षण होते हैं, इससे पता चले व्यक्ति को कि उसे मोतियाबिंद हो गया है।
1: मरीज आके बताता है कि भाई शाम को मैं घूम रहा था या छत पे टहल रहा था तो मुझे कई सारे चांद दिखने लगे।
0: अच्छा।
1: दूसरा, आजकल शहरों में मतलब हम लोग गाड़ियां चलाते हैं, रात में भी निकलते हैं तो

0: सामने से आने वाली गाड़ी की हेडलाइट जब मेरी आंखों पर पड़ी सर, तो मुझे बिल्कुल साइड में गाड़ी रोक के खड़ा होना पड़ा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। तो दूसरा, ये एक बहुत कॉमन और सामान्य लक्षण है। तीसरी बात, जनरलाइज धुंधलाहट, मतलब मैं टीवी देख रहा था और जो स्कोर नीचे लिखा आ रहा था या जो न्यूज चल रही थी नीचे, रनिंग न्यूज थी, जो फुट नोट्स चल रहे थे, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे। साथ में मेरा बच्चा बैठा हुआ था, उसको सब दिख रहा था,
1: मतलब चश्मे से भी उनको नहीं दिखाई दे रहा।
0: जी
1: जी, तो ये कुछ लक्षण हैं जो प्रकट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आंखों में दर्द या कुछ और
0: खुजली? जी नहीं, आपने अच्छा प्रश्न किया। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं, आते हैं कि भाई मुझे दर्द हो रहा है, पानी निकल रहा है 3-4 दिन से या 1 महीने से, आप देखिए जरा मोतियाबिंद तो नहीं है। तो मोतियाबिंद से सिर्फ और सिर्फ नज़र कम होती है।
1: अच्छा,
0: ये आँख से पानी आना, दर्द होना, ये सब चीज़ें मोतियाबिंद के साथ नहीं होता।
1: अच्छा।
0: हाँ, यदि मोतियाबिंद पक जाए तब तक आप ध्यान नहीं दें और वो अपने आप फूट के काला पानी बना दे, आँख का प्रेशर बढ़ा दे, तब जरूर भयानक दर्द होता है आँख में, लेकिन उससे पहले मोतियाबिंद की वजह से दर्द नहीं होता।
1: तो डॉक्टर साहब, एक भ्रांति हमारे समाज में चलती है कि जब मोतियाबिंद पक जाए तब ऑपरेशन कराया जाए, या ये भी कहा जाता है कि देसी घी खाना चाहिए, उससे आँखों की रोशनी बढ़ती है, मोतियाबिंद नहीं आता, तो इनमें कहाँ तक सच्चाई है?
0: देखिए, पहली चीज तो ये कि मोतियाबिंद तो सभी को आना है।
1: जी, औसत उम्र कौन सी है जिसके बाद मोतियाबिंद आ सकता है?
0: 50+, 55 के आस के बाद कभी भी मोतियाबिंद आ सकता है।
1: महिला पुरुषों में बराबरी से आता है
0: ये? एक्चुअली देखने को ये मिला है कि महिलाओं में थोड़ा सा जल्दी आ जाता है।
1: अच्छा, महिलाओं में जल्दी आता है।
0: जी, मोतियाबिंद पकने का इंतजार करना आज से 60 साल पुरानी बात हो गई। उस जमाने में क्या हुआ करता था कि IOL इंट्राओकुलर लेंस, जो आजकल हम इम्प्लांट करते हैं, आर्टिफिशियल लेंस ऑपरेशन के बाद, वो नहीं हुआ करते थे। लगभग आधी आंख 180 डिग्री का कट लगाया जाता था,
1: सर्जरी होती थी।
0: जी, चिमटी से पकड़कर मोतियाबिंद को झटके से तोड़ दिया जाता था और उसको बाहर फेंक दिया जाता था। बाद में महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद एक मोटे से +10 +8 नंबर का चश्मा दे दिया जाता था मरीज को। ये होती थी मोतियाबिंद की सर्जरी, जिस वक्त मोतियाबिंद को पकना जरूरी माना जाता था। किंतु आज के समय में मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन जैसी चीज रह ही नहीं गई। बोलना जरूर ऑपरेशन पड़ता है, लेकिन उसको हम प्रोसीजर बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: सर्जरी उसमें होती ही नहीं,
0: होती नहीं। लेजर्स का यूज आ गया है, तो हमें ब्लेडलेस सर्जरी मिलती है, हमें ब्लेड का इस्तेमाल करना ही नहीं है।
1: जी।
0: चीरा लगाना ही नहीं है।
1: अच्छा।
0: टांके लगाने ही नहीं है, पट्टी बांधनी ही नहीं है। आप आएं, सर्जरी कराएं, 2 घंटे बाद आप अपनी गाड़ी खुद चला कर ले जाएं। तो जब आपके आँख में चीरा नहीं है, जब आपकी आँख में टांका नहीं है, तो किसी प्रॉब्लम की वो ही नहीं है। अब क्या है कि वो लेजर द्वारा या फेको इमल्सिफिकेशन द्वारा उसको पिघला दिया जाता है और मशीन उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। तो जो मोतियाबिंद पकने के साथ साथ बहुत कठोर हो जाता है, कठोर चीज को तोड़ना मुश्किल है। तो मेरी ये सभी से रिक्वेस्ट है कि मोतियाबिंद को पकने बिल्कुल ना दें, क्योंकि पकने पर बहुत सारी परेशानियां हैं, ऑपरेशन मुश्किल भरा हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए मोतियाबिंद को पकना नहीं चाहिए।
1: इंतजार ना करें, जटिलता और बढ़ जाएगी।
0: जी।
1: और घी वाली बात जो मैंने,
0: हाँ, घी वाली बात देखिए, वैसे तो अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें, हरी सब्जियां, दूध, फल, दालें, ये सब अगर हम बैलेंस डाइट लें तो पूरे शरीर के लिए अच्छा है। किंतु ये कहना मैंने भी सुना है, क्या था कि ऑपरेशन के बाद हम बादाम का हलवा नहीं खा पाए इसलिए हमारी आंख की रोशनी अच्छी नहीं है।
1: या देसी घी में काली मिर्च डालकर नहीं खा पाए।
0: ये ऐसा कुछ नहीं है।
1: जी।
0: एक्चुअली क्या है कि मेरे कुछ मित्र या मेरी वाइफ भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं।
1: जी।
0: तो मेरी कई बार चर्चा भी हुई है कुछ बात पे, ये काली मिर्च वाली बात पे।
1: जी।
0: तो बेसिकली क्या है कि काली मिर्च एंटी इन्फ्लेमेटरी है।
1: अच्छा।
0: अगर आप पहले से लें तो कैटरेक्ट को थोड़ा डिले किया जा सकता है, ऐसा उनका कहना है। देखिए, ये मेरी पैथी नहीं है, मुझे नहीं मालूम।
1: बिल्कुल।
0: या मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आप काली मिर्च को घी में कड़कड़ाकर खाएं तो उससे रोशनी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने
1: या
0: वाला।
1: जिनको चश्मा लगता है उनका चश्मा उतर जाएगा, ऐसा
0: जी
1: कुछ
0: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
1: तो श्रोताओं, आपको कुछ रोचक जानकारियां भी डॉक्टर साहब की तरफ से मिली होगी, बहुत सारी भ्रांतियां आपकी दूर हो रही होंगी और भी आगे होंगी कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। बहरहाल डॉक्टर साहब, अब हम अपनी उस मुकाम पर आ पहुंचे हैं जब हम आपकी पसंद का दूसरा गीत आपसे पूछें, तो कौन सा गीत हम श्रोताओं को सुनवाएं?
0: जी, मुझे वो मुकद्दर का सिकंदर का वो गाना बहुत अच्छा लगता है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। ईश्वर ने हमें जन्म दिया यहाँ पर,
1: बिल्कुल,
0: ये हमारा कार्य क्षेत्र है, जिस कार्य में भी हम लोग हैं,
1: बिल्कुल
0: कुछ ऐसा करें सभी के चेहरों पे मुस्कान
1: है। बहरहाल ये बहुत प्रेरक गीत है और जोश भर देता है, निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगा। तो किशोर कुमार की आवाज में ही ये गीत भी है, आइए श्रोताओं सुनते हैं। hey, hey!

0: जी हाँ श्रोता, रोते हुए आते हैं सब, जो हंसता हुआ जाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। और मुकद्दर का सिकंदर बनने के लिए एक बात और जरूरी है कि हमें स्वस्थ रहना होगा।
1: बिल्कुल।
0: और स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी आंखों का एक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं श्रोताओं मोतियाबिंद के बारे में, और उसके ऑपरेशन के बारे में, उसके बाद की सावधानियों के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप सिंह राठौर। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से मोतियाबिंद होता है और कौन कौन सी भ्रांतियां हैं जो समाज में व्याप्त हैं और जिन्हें आपने दूर किया। अच्छा, एक आंख में मोतियाबिंद होता है तो दूसरी आंख में भी उसी समय होता है, या दोनों में होना जरूरी है?
1: वृद्धावस्था या उम्र की वजह से मोतियाबिंद होता है, वो दोनों आंखों में होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, अक्सर ये देखने को मिला है कि एक में ज्यादा एक में कम रहता है। शायद प्रकृति का ये हम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, या ये कह लें कि एक में ज्यादा है उसको पहले इलाज करवा लें और फिर दूसरी आंख तब तक देखने लायक बनी रहे और उस तत्पश्चात दूसरी आंख का करा कर, इसलिए। लेकिन हाँ, होता दोनों में है और थोड़ा सा उसकी स्टेज में अंतर रहता है।
0: तो श्रोताओं, आपने जाना कि जो उम्र के साथ मोतियाबिंद होता है वो दोनों आंखों में ही होता है। अच्छा, ऑपरेशन के बारे में आपने बताया कि बहुत छोटा मोटा इसका ऑपरेशन होता है।

0: भ्रांति और है डॉक्टर साहब, मुझे लगता है उस बारे में भी हमें बात कर लेना चाहिए ताकि श्रोताओं का नज़रिया एकदम बदल जाए, कि कहते हैं कि बालों में कलर इस्तेमाल करें या डाई इस्तेमाल करें तो उसका आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है, उससे मोतियाबिंद हो सकता है, तो ऐसा है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, मोतियाबिंद का बालों में डाई करने से या कलर करने से कोई वो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि डाई या कलर वगैरह थोड़े से केमिकल्स रहते ही हैं इनमें, तो वो सीधे आँख में चले जाएँ तो दूसरी तरह की परेशानियाँ, एलर्जी या किसी अन्य तरह की प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं।
0: चलिए, ये भ्रांति भी हमारे श्रोताओं की दूर हुई। एक और भ्रांति के बारे में भी हमारे श्रोता बोलते हैं कि दाढ़ अगर निकलवाते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो आंखों की रोशनी कम होती है।
1: यहाँ एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इस तरह का कोई संबंध नहीं है कि दाढ़ निकलवाने से आँख की रोशनी कम हो जाए या आँख के ऑपरेशन आपने करवा लिया या करवाने जा रहे हैं तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, ये जनरली हम लोग थोड़ा सा अंतर रख के इसलिए चलते हैं कि जैसे आँख का ऑपरेशन किया या दाढ़ निकलवाई तो उसकी वजह से वहाँ कोई इन्फेक्शन ना रह जाए, क्योंकि वो इन्फेक्शन रहेगा तो खून में सब जो पूरे शरीर में जाएगा, और बस इस बात का ध्यान ज़रूर रखते हैं। लेकिन सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है कि दाढ़ निकलवाने के बाद ऑपरेशन नहीं करवाया जा सकता या दाढ़ निकलवाने से आंख की रोशनी कम होगी, उसका कारण बिल्कुल अलग होगा, उससे कोई संबंध नहीं है उसका।
0: ये केवल एक भ्रांति है
1: जी, बिल्कुल
0: इसका इससे कोई संबंध नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि मोतियाबिंद कई बार बच्चों में भी होता है और वो जन्म से ही होता है
1: जी,
0: तो उसका निराकरण किस तरह से किया जाता है?
1: ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एक एम्ब्लायोपिया नाम की बीमारी होती है। एम्ब्लायोपिया का मतलब है लेजी आई, सुस्त आंख।
0: जी।
1: जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी दोनों आंखों के अंदर पूर्ण 100% रोशनी जानी चाहिए, मतलब उसकी जो बाहर से लेकर उसके आंख के पर्दे तक का जो मीडिया है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
0: जी, बिल्कुल।
1: अब मोतियाबिंद एक तरह की ओपेसिटी होती है।
0: हाँ जी।
1: तो अगर ये एक आंख में है और एक नॉर्मल है और हमने ध्यान नहीं दिया तो होता क्या है कि जिस आंख में रोशनी पूरी जा रही है वो आंख तो का डेवलपमेंट पूरा होता रहता है, और जिस आंख में रोशनी नहीं जा रही है मोतियाबिंद की वजह से उस आंख का डेवलपमेंट रुक जाता है।
0: अच्छा।
1: तो इसमें अगर हमने बहुत देर कर ली या 8 साल की उम्र निकल गई तो आप ये मान के चलें कि वो आंख लेजी हो जाएगी, उसके बाद आप ऑपरेशन भी करा लें, कुछ भी करा लें, उसकी रोशनी नहीं बढ़ने वाली।
0: तो माता पिता किस तरह से सतर्क हों और जान सके कि उनके बच्चे को ये समस्या है?
1: हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है तो ये सब चेकअप हो जाते हैं पहले, लेकिन फिर भी जो हमारी आंख में काला गोला है बड़ा जिसको कॉर्निया बोलते हैं, उसके बीच में भी एक छोटा वो प्यूपल रहती है।
0: हाँ जी।
1: वो छोटा काला बिंदु, उसमें अगर किसी भी तरह का वाइट रिफ्लेक्स, सफेद तरह का प्रतिबिंब आ रहा है तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाएं, अपने आंखों के डॉक्टर को दिखा लें। बहुत से ऐसे डॉक्टर जो क्वालिफाइड नहीं हैं या सो कॉल्ड डॉक्टर हैं, पर्टिकुलरली ये ग्रामीण लोगों के साथ ज्यादा होता है, वो बेचारे भरोसा करके उनके पास जाते हैं तो वो उनको एक बात कह देते हैं क्योंकि उनको नॉलेज है नहीं, वो ये बोल देते हैं कि अरे अभी बच्चा छोटा है, आप छोड़ो इसको, क्या करवा रहे हो, बेकार में आप ले जाओगे, ऑपरेशन कोई बता देगा। तो ऑपरेशन के नाम से वैसे भी कोई भी माँ बाप घबराएगा, तो वो उसको मेडिकल जो अटेंशन मिलना चाहिए उसमें डिले हो जाता है। जबकि मोतियाबिंद अगर है तो अगर पका हुआ है, बिल्कुल वाइट है, चाहे बच्चे की उम्र 2 महीने है तो भी ऑपरेशन करना चाहिए, या 2 साल है तो लेंस भी लग जाता है। 2 साल की उम्र के आसपास तो आप बच्चे का मोतियाबिंद हटा के लेंस भी लगा सकते हैं। इसलिए अगर जन्म से मोतियाबिंद मिला है तो उसका ऑपरेशन जल्दी ही होना चाहिए।
0: बिल्कुल, डॉक्टर साहब की बात श्रोताओं आपने ध्यान से सुनी ना, अगर बच्चे में ऐसा कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है आंख में तो आप नेत्र रोग विशेषज्ञ यानी किसी विशेषज्ञ क्वालिफाइड डॉक्टर को ही दिखाएं और उसकी सलाह लें। नीम हकीम पर विश्वास कतई ना करें वरना बच्चे की आंख की रोशनी जा सकती है। बहरहाल हम इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे क्योंकि ये कार्यक्रम अभी जारी है और कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप सिंह राठौर। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आपकी पसंद का एक और गीत हो जाए।
1: एक गाना बहुत पसंद है, ए मालिक तेरे बंदे हम। कभी ना कभी ये हर व्यक्ति के जीवन में ये क्षण आते हैं, कुछ कमजोर क्षण, तो उस वक्त सभी कोई है आसपास, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है
0: जी।
1: उस वक्त ईश्वर जो है, कोई जो भी शक्ति है, वो जो भी आप नाम ले लें उसका,
0: सही बात,
1: किसी भी नाम से पुकारें तो वो एक शक्ति है ऐसा मैं मानता हूँ, और वो मदद करती है।
0: बिल्कुल।
1: तो उसी को ध्यान करते हुए मुझे ये गाना बहुत मतलब अच्छा लगता है। कभी
0: जी हाँ श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने जो भी गीत पसंद किए वो बिल्कुल चुनिंदा है और उनमें से ही एक गीत ये भी है, 2 आंखें 12 हाथ का। तो आइए हम सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना और निश्चित रूप से आपको पसंद भी आया होगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप सिंह राठौर, और हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं मोतियाबिंद के बारे में, उसके ऑपरेशन के बारे में और उसके बाद की सावधानियों के बारे में। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बारे में आप बताया कि बहुत छोटा सा एक ऑपरेशन होता है, कोई सर्जरी नहीं होती है और नई तकनीक से होता है और लेंस भी उसी समय लगा दिया जाता है, लेकिन ये भी एक लोगों में भ्रांति है कि उसके बाद की जो सावधानियां होती हैं वो बहुत जटिल होती हैं और बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। कहीं हम काम पर नहीं जा सकते, कुछ फिल्म या टीवी नहीं देख सकते, ऐसा है क्या?
1: देखिए, कुछ तो हैं लेकिन जटिल नहीं है। किसी भी मेडिकल सर्जरी में या मेडिकल प्रोसीजर में दो जगह प्रॉब्लम आ सकती है
0: जी।
1: एक, जब वो प्रोसीजर हो रहा हो, यानी डॉक्टर जब ऑपरेशन कर
0: अच्छा,
1: रहा हो जी। दूसरी चीज, ऑपरेशन सफल हो गया हो डॉक्टर के लिए। देखिए, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक तो ऑपरेशन टेक्निकली सफल हो गया, उसमें डॉक्टर खुश है
0: जी।
1: लेकिन उसके डिजायर्ड रिजल्ट, यानी जो वो रिजल्ट चाहता है मरीज, उसको ना मिले तो वो मरीज की नजर में वो ऑपरेशन असफल है। खैर, ये अलग बात है। तो दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ऑपरेशन के बाद, जब तक कि हमारा शरीर उस घाव को या उस जगह को हील नहीं कर लेता, नॉर्मल नहीं कर लेता, तब तक रहता है इन्फेक्शन का खतरा।
0: अच्छा।
1: तो जो भी मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद की सावधानियां हैं, इसी बात के लिए हैं कि हमारी आंख में इन्फेक्शन ना हो जाए
0: किसी भी तरह का
1: जी। कौन सी ऐसी दो तीन चीजें हैं जिनसे कि इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है?
0: आंखों में धूल ना जाए,
1: धूल बिल्कुल,
0: पानी ना जाए,
1: हवा, धूल, चीजें जो प्रदूषित हैं, दूषित हैं
0: बिल्कुल,
1: और पानी, पानी में हजारों लाखों कीटाणु होते हैं।
0: सही बात।
1: ऐसा नहीं है कि जैसे पहले हुआ करता था, 1 से 3 महीने तक इंसान लेटा है, बेड रेस्ट कर रहा है और वो नहा नहीं सकता, इस तरह की चीजें आज बिल्कुल नहीं है।
0: धूप में बिल्कुल नहीं निकल सकता।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल धूप में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीवी और अखबार पढ़ने को या कुछ भी पढ़ने को हम लोग मना इसलिए करते हैं कुछ दिन तक कि आप अगर वो कोशिश करेंगे तो उस आंख पे जोर पड़ने की वजह से दर्द का एहसास होने लगता है। अदरवाइज आंख को नुकसान कुछ नहीं होता।
0: अच्छा, अच्छा। दर्द होगा तो शायद वो मरीज घबरा जाएगा।
1: घबरा जाएगा। मेरे हिसाब से जो है सावधानी वो ये है कि आंख में धूल ना जाए और आंख में पानी ना जाए, जिससे कि इन्फेक्शन नहीं हो।
0: अच्छा।
1: और वैसे तो हीलिंग पीरियड 7 से 8 दिन का होता है, लेकिन फिर भी हम 7-8 दिन की बजाय 10 दिन बोल देते हैं कि आप 10 दिन आंख में पानी बचा लीजिएगा। उसके बाद दिक्कत ऑपरेशन से रिलेटेड 99% नहीं होती।
0: अच्छा।
1: है बाद में जो समस्याएं आती हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि नज़र बहुत अच्छी है लेकिन मरीज मतलब कंफर्टेबल नहीं है।
0: अच्छा।
1: उसको आंख हल्की नहीं लग रही, नॉर्मल नहीं लग रही,
0: भारीपन महसूस हो रहा है या ड्राइनेस आ रही है आँख में।
1: ये बिल्कुल बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद कुछ एक दवाइयाँ ऐसी होती हैं, कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो डालना ज़रूरी होती हैं लगभग 30-35 दिन तक। तो उनके डलने की वजह से आँख का जो नॉर्मल एटमोसफियर है, जो नॉर्मल सिक्रीशन है जिनकी वजह से हमारी आँख नॉर्मल फील होती है, वो ड्राइनेस आ जाती है। तो उसकी वजह से किरकिराहट, आँख से आंसू आना,
0: पलकें झपकना
1: ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो इनके लिए भी समाधान है, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हैं, कुछ एक चीजें जो कि विद इन 10-15 डेज ये सब चीजें नॉर्मल हो
0: जाती हैं। यानी ये जो भी वजह है वो ऑपरेशन उसकी वजह नहीं है।
1: हाँ।
0: जी। जिन लोगों को डायबिटीज होती है, मधुमेह होता है, क्या उनको आंखों के ऑपरेशन के बाद ज्यादा दिक्कत आती है या ऑपरेशन में ही दिक्कत आती है?
1: नहीं नहीं, देखिए, मधुमेह या डायबिटीज से ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आजकल ये ब्लडलेस सर्जरी हो गई, क्लियर कॉर्नियल सर्जरी आ गई, ब्लड निकलते ही नहीं कैटरेक्ट सर्जरी में। लेकिन हाँ, जैसे डायबिटीज पूरे शरीर पर असर छोड़ती है, उसी तरह आंख पे भी बहुत दुष्प्रभाव हैं डायबिटीज के। डायबिटीज जिनको है उनको मोतियाबिंद बहुत जल्दी आ जाता है,
0: कम उम्र में आ जाता है,
1: आने के बाद बढ़ता बहुत तेजी से। अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल नहीं की हुई, और सबसे बुरा चीज डायबिटीज की वजह से आंख का पर्दा, रेटिना, डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, वो चीज हो जाती है। तो होता क्या है कि ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो उम्मीद रहती है कि नज़र हमारी ऐसी आ जाएगी ऑपरेशन के बाद, वो अगर कम रहती है तो सारा का सारा दोष ऑपरेशन पर रहता है। जैसा मैंने आपको बताया, ऑपरेशन तो मात्र एक पर्दे को हटाकर एक आर्टिफिशियल पर्दा हमने लगा दिया जिससे लाइट पूरी निकलने
0: लगी।
1: अब वो लाइट फोकस हो रही है पर्दे पे, रेटिना पे। अब रेटिना अगर आपका अच्छा काम करेगा तो आपको अच्छा दिखेगा, और डायबिटीज में रेटिना खराब होता है।
0: तो अपना जो विशेषज्ञ जिससे सलाह ले रहे हैं डायबिटीज के लिए, उससे सलाह लेके दवाइयां इस्तेमाल करें,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: डायबिटीज कंट्रोल में रखें, खास बात ये है। चलिए डॉक्टर साहब, थोड़ी सी कुछ और बातचीत हम आपसे आगे करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गीत श्रोताओं के लिए सुनवा रहे हैं ताकि उनका मनोरंजन हो।
1: एक और गाना मुझे पसंद है, दिए जलते हैं
0: लोग मिलते हैं,
1: लोग मिलते हैं।
0: नमक हराम फिल्म का ये गीत है और हमारे श्रोताओं ने खूब सुना होगा क्योंकि सदाबहार गीत है। ये गीत आपको खास पसंद क्यों है?
1: दोस्त हम अपनी मर्जी से बनाते हैं,
0: बिल्कुल सही,
1: और उनसे हमारा मन या विचार या जो कुछ भी है मिलता है, कई सारे जगहों पर वो हमारा साथ देते हैं।
0: सबसे बड़ी बात, कोई औपचारिकता
1: नहीं होती जी।
0: तो ये गीत आपको खास तौर पर इसलिए पसंद है क्योंकि दोस्ती को आप बहुत महत्व देते हैं। खैर, हमारी और श्रोताओं की दोस्ती भी लगातार चलती रहे, उसी के नाम ये गीत।

0: आकाशवाणी ग्वालियर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप सिंह राठौर और हम आपसे बातचीत कर रहे हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बारे में। इस गीत से पहले हमने आपसे बात की कि ऑपरेशन के बाद की सावधानियां, मतलब जो भी पद्धति ये ऑपरेशन होता है कहलाता वो ऑपरेशन है भले ही सर्जरी ना हो, तो उसके बाद की सावधानियों में आपने बताया कि खास बात यह है कि संक्रमण से बचना चाहिए। अच्छा, खान पान में भी कुछ ध्यान रखना चाहिए क्या?
1: नहीं, खाने पीने से मोतियाबिंद ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज भी हम खाते हैं हमारे पेट के थ्रू ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर पूरे शरीर में घूमता है। तो जब कट या चीरा लगा ही नहीं है, टांके लगे ही नहीं है, प्लीज प्लीज आप सब कुछ खाइए, इससे खाने से मोतियाबिंद ऑपरेशन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता।
0: जो आपका पेट आपको इजाजत दे वो सब आप खा सकते हैं।
1: अगर डायबिटीज वगैरह है, आपको किसी दूसरे डॉक्टर ने वो चीजें परहेज बोला है तो अलग बात है,
0: या उच्च रक्तचाप है तो तला भुना का आपको परहेज है तो वो ना खाएं। बाकी आंखों से इसका कोई संबंध नहीं है, आप मनचाहा खा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, आपने बहुत सारी बातें जानी और इसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी आपकी दूर हुई होंगी। बहरहाल डॉक्टर साहब, चलते चलते एक गीत हम श्रोताओं का आपकी पसंद का और सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत आपने चुना है आज के इस कार्यक्रम के लिए?
1: एक गाना है जब ऐसा लगता है कि अब जो हो रहा है सो हो रहा है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: हालांकि ये गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद है, लेकिन धुएं में उड़ाने की कतई सलाह साहब नहीं दे रहे,
1: वो चीज नहीं
0: है। जी, तो हम दोनों फिल्म का ये हिट गीत है, सदाबहार गीत है। आइए श्रोताओं, चलते चलते इस गीत का आनंद।

0: तो श्रोताओं, ये गीत आपने सुना और अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में आ पहुंचे हैं। चलते चलते डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहूंगी, वो है नेत्रदान के बारे में।
1: जी, नेत्रदान बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसलिए कि आपके जाने के बाद आपकी आंखें किसी के काम आएं, ये हमें प्रैक्टिकल सोच रखनी चाहिए। और नेत्रदान कोई भी कर सकता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी कर सकता है। नेत्रदान के बारे में एक चीज बता दूं कि पूरी की पूरी आंख नहीं ट्रांसप्लांट होती, निकाल के दूसरे को नहीं लग सकती। कॉर्निया नाम की चीज, जो आप बाहर से काला गोला देखते हैं आंख में, उसको कॉर्निया बोलते हैं। ये लगाया जाता है एक आंख से निकाल के दूसरी आंख में, और ऐसा कि इसको निकालने के बाद कुछ गड्ढा रह जाए या कुछ ऐसा बुरा लगे फेस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये मेरी दरख्वास्त है सभी लोगों से कि नेत्रदान को बढ़ावा दें, अधिक से अधिक इसको अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, समाज में, सबको ये करें। ये एक बहुत ही नेक काम है और जरूर करें।
0: तो श्रोताओं, आपने जाना मोतियाबिंद के बारे में, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बारे में और उसके बाद की सावधानियों के बारे में, और खास बात यह कि बहुत सारी भ्रांतियां जो हमारे समाज में व्याप्त है वो डॉक्टर साहब ने दूर की। और इसी बात के साथ अब हम आज का कार्यक्रम समाप्त करना चाहेंगे। चलते चलते हम आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम का विषय था मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद की सावधानियां, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप सिंह राठौर। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

सेहत की बात तरानों के साथ इस कार्यक्रम में आज अभी आप सुन रहे थे मोतियाबिंद ऑपरेशन और बाद की सावधानियां विषय पर डॉक्टर प्रदीप सिंह राठौर से आभा गुप्ता की बातचीत। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र का गाया, विठ्ठल भाई पटेल का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया फिल्म बॉबी का ये गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
3: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं 4 दिन तो जियो जी भर के।
4: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV/AIDS और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है, और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV/AIDS के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
3: हाँ भाई समझा।
4: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाए। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
6: मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

अब आपको सुनवा रहे हैं फितूर फिल्म का वो नगमा जिसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने, आवाज और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

अब आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा नगमा। संगीत है सचिन जिगर का, फिल्म का नाम है भेड़िया।

अब आपको सुनवा रहे हैं हम टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने, कुमार के बोल हैं और संगीत है शरीब और तोशी का।

ये गीत आपने सुना फिल्म एनिमल से, अरिजीत सिंह की आवाज थी। सिद्धार्थ गरिमा ने इस गीत को लिखा था, संगीत था श्रेयस पुराणिक का। कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में वो गीत जिसे हमने लिया है फिल्म वीर जारा से। जावेद अख्तर की रचना है।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने आपके लिए चुना है कभी खुशी कभी गम फिल्म से। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज है, अनिल पांडे ने गीत लिखा है, संगीत है संदेश शांडिल्य का।

अभी आप सुन रहे थे देवदास फिल्म का गीत। कविता कृष्णमूर्ति, श्रेया घोषाल, के और साथियों की आवाज थी। गीत लिखा था नुसरत बद्र ने, संगीत था इस्माइल दरबार का। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं एक और गीत जिसे हमने चुना है कल हो न हो फिल्म से। शंकर महादेवन की आवाज है, जावेद अख्तर की रचना, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

ये गीत हमने आपके लिए चुना है फिल्म दोस्ताना से। शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान की आवाज, कुमार के बोल हैं, संगीत है विशाल शेखर का।

0: दोस्ताना फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। श्री मोदी ने एक बयान में विश्वास व्यक्त किया है कि इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। उन्होंने बताया कि वे बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बालाघाट जिले के लांजी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में भाग ले रहे हैं। इस दौरान यहां बैठक, समीक्षा, संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कन्या छात्रावास और उत्कृष्ट विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हॉकी के जादूगर महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक पोस्ट में कहा है कि उनका जीवन खेल के प्रति समर्पण, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की प्रेरक मिसाल है। मौसम विभाग ने आज रीवा, सीधी, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी, बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जिलों में हल्की से तेज बारिश होने के आसार हैं। और दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत अपना पहला मैच कल थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा, जबकि 3 सितम्बर को हांगकांग और 5 सितम्बर को पाकिस्तान से मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। पेश है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म अजनबी के गीत से। सुमधुर आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में इस गीत को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। छत्तीसगढ़ के दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू ने इसी गीत को सुनना चाहा था। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, साइमा खान, पोतरा मुश्तवा खान, पोत्री अफिया खान, राऊ भाई, शहीद भाई और इनके पूरे परिवार वाले। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने भी इसी गीत को पसंद किया था। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म रखवाला से। सुमधुर आवाज लता मंगेशकर की, गीत रचना है राजेंद्र कृष्ण का और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने इसी गीत को सुनना चाहा है। बेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर ने

कार्यक्रम की अगली फरमाइश फिल्म होगी प्यार की जीत से। इस गीत को गाया है जसपिंदर नरूला और रुकमा राठौर ने। ये गीत रचना है समीर की और समीर के लिखे गीत को संगीत में बनाया है आनंद मिलिंद ने। पसंद किया है आप सभी ने। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गबाण, श्रीमती सरिता गबाण, प्रिंस और एकांश ने। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन और टुकटुक ने। आकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि गबाण ने। इसी गीत को सुनना चाहें जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट ने।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक लिख भेजी है पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफी मंसूरी ने। अगली फरमाइश है सेक्टर 67 मोहा

अली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयबीर सिंह ठाकुर और अमनदीप, अनिल वर्मा कालका से, शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म कसम, सनम तेरी कसम का ये गीत, जिसे अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने। ये गीत रचना है गुलशन बाबरा की और संगीत निर्देशन है आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश फिल्म गंगा तेरे देश में से। इस गीत को गाया है अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज ने। ये पसंद है सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा की। इसी गीत को सुनना चाहा है घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने।

अनुराधा पुडवाल और मोहम्मद अजीज के गाए इस गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त सरिता को। नमस्कार। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अभी आप सुन रहे थे फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जमुनिया का 11वां भाग।

0: वही राह तुम भी चुनो मेरे भैया, वही राह तुम भी चुनो मेरे भैया, जमुनियों की कहनी सुनो मेरे भैया, जमुनियों की करनी गुनो मेरे भैया।
1: अभी तक आपने सुना है कि जमुनिया का पति रतन एक ईमानदार मेहनती आदमी था, उसका भाई करण धूर्त और शराबी था। करण ने गांव के दीवान से अपने भाई रतन को 10,000 रुपए का कर्ज दिलाया, पर कागजों में हेरा फेरी करके दीवान ने उसे 25,000 कर दिया। रतन को इससे बड़ा सदमा लगा और उसने आत्महत्या कर ली। बाद में करण ने जमुनिया और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया और जमुनिया के बेटे गोलू को भी हथिया लिया। पट्टे पर मिली रतन की जमीन भी हथिया ली। जमुनिया पास के गांव में एक सहृदय व्यक्ति झुलन बाबा के साथ रहने लगी। बांस के डलिए पंखे बनाकर गुजारा करने लगी। यहीं पर गुरुजी से शिक्षा प्राप्त कर उसने पढ़ना लिखना सीखा। चुनाव आने वाले थे, साथियों के कहने पर उसने सरपंची का पर्चा भर दिया। यहाँ की सीट महिला सीट घोषित होने के कारण दीवान ने भी अपनी पत्नी का पर्चा भरवा दिया। जमुनिया का पर्चा भरना दीवान को बुरा लगा। उसने जमुनिया पर हमला करवा दिया, पर जमुनिया को मामूली चोट आई। इस बीच गांव के ग्राम सेवक की बेटी मेघा अपने कॉलेज के मित्रों शिल्पी और जयंत के साथ गांव आ गई। वे लोग चुनाव में जमुनिया का साथ देने लगे। चुनाव प्रचार जोरों पर था। अब आगे।

0: अरे अपने गांव में पुलिस, देखो तो बाबा पुलिस ही है ना।
1: अरे हाँ बेटा, पुलिस ही लगती है। अरे लगता है दीवान ने कोई चाल चली है, पुलिस में कुछ उल्टा पुल्टा शिकायत किया होगा। वो किसी तरह तुम्हें चुनाव से दूर रखने की ही चाल होगी। हाँ
0: हाँ बाबा, वो तो इधर ही आ रहे हैं।
1: हाँ
0: चलो आने दो, देखते हैं क्या करते हैं। हम भी हिम्मत नहीं हारने वाले हैं, बुला ले थाना पुलिस।
2: जमुनिया जी कौन हैं?
0: हम ही हैं जमुनिया, कहिए कैसे आना हुआ।
3: हमें थाने से भेजा गया है। वहां शिकायत पहुंची है कि
0: क्या शिकायत पहुंची है बताइए तो सही।
2: आप सरपंची का चुनाव लड़ रही हैं?
0: हाँ लड़ रहे हैं, पर इसमें कुछ गलत है का? चुनाव लड़ना गैर कानूनी है क्या?
3: अरे नहीं नहीं, हमें पता चला है कि आप सरपंची के चुनाव के लिए दीवान की पत्नी के खिलाफ खड़ी हुई हैं। इससे दीवान नाराज है और उसने आप पर हमला भी करवाया है, इसीलिए सरकार ने आपकी सुरक्षा के लिए हमें भेजा है।
0: ओह, तो आप हमारी सुरक्षा के लिए हैं?
3: जी।
0: अच्छा, वो दीवान ने हमला तो करवाया था, पर चोट मामूली सी है।
2: ये सिर पर पट्टी बंधी है, यही है ना?
0: हाँ जी हाँ, थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। पर वहां थाने को कैसे पता लगा?
3: इस चुनाव में आपके साथ कोई जैन बाबू हैं।
0: हाँ हाँ,
3: उन्होंने ही खबर की थी थाने पर।
0: ओह, तभी तो जयंत भैया ने खबर की है।
3: जी।
0: अच्छा आप लोग कुछ पानी वानी पियेंगे तो लाए, नहीं तो हमें चुनाव प्रचार के काम में निकलना है।
2: नहीं नहीं, अभी हमें प्यास नहीं है, आप चलें।
3: हाँ हाँ, हम भी आपके साथ ही रहेंगे।
2: हाँ,
0: वो मेघा बहन अपने साथियों के साथ आती होंगी, तभी निकलेंगे। अरे ये लो, ये आ भी गए। नमस्ते।
4: नमस्ते जमुनिया
0: नमस्ते,
4: जी
0: नमस्ते, नमस्ते जमुनिया जी नमस्ते।
4: चले।
0: हाँ
1: ये लो, पुलिस
0: आपका ही किया धरा है। थोड़ी सिर पर चोट लगी, वो लोग तो तुरंत भाग भी गए, पर आपने थाने को खबर की और ये लोग आ भी गए।
5: तो देखा आपने, सरकार सुनती है और काम भी करती है। पर बीच के लोग सारी सुविधाएं खुद हड़प जाते हैं और उन्हें कुछ मिलता ही नहीं जिनको उसकी जरूरत होती है।
0: सही बात।
6: जीतेगी भाई जीतेगी,
7: हाँ जमुनिया जीतेगी,
6: जीतेगी भाई जीतेगी,
7: हाँ जमुनिया जीतेगी,
6: जीतेगी भाई जीतेगी,
7: हाँ जमुनिया जीतेगी,
6: जीतेगी भाई जीतेगी,
7: हाँ जमुनिया जीतेगी,
6: जीतेगी भाई जीतेगी,
7: हाँ जमुनिया जीतेगी।
8: अरे ई का, अरे ई ससुरी तो इधर ही आ रही है।
9: अरे हाँ, ये तो जमुनिया ही है। अरे दंदी, तू जब बोलता है बुरी खबर ही देता है यार। मैं क्या करूं, हो ही यही रहा है फंदी भाई। आज तो साथ में पुलिस लेके चल रही है।
10: अरे हाँ,
9: चलिए रास्ता बदल लेते हैं दीवान जी।
8: है,
9: दीवान जी
8: है, हाँ, हाँ। रुको सब।
10: मालिक
8: जरा देखें तो सही माजरा क्या है, हैं? अरे थाना पुलिस गांव में आ गई और हमें कोई खबर ही नहीं है। अरे ये हो क्या रहा है गांव में, और तुम लोग सोए रहे हो क्या है?
10: मालिक हमें तो थाने पुलिस का कुछ पता ही नहीं चला। क्यों,
9: हवा तक नहीं लगी मालिक?
10: हाँ मालिक, हाँ।
8: क्या हवा तक नहीं लगी? ससुर खाए खाए के मुटियाए रहे हो तुम लोग।
10: मालिक
8: क्या?
6: जीतेगी भाई जीतेगी,
7: हाँ जमुनिया जीतेगी,
6: जीतेगी भाई जीतेगी,
7: हाँ जमुनिया जीतेगी।
8: आइए आइए आइए जमुनिया जी आइए। वाह भी वाह, क्या बात है भाई। अब आपकी तैयारी देखकर तो लग रहा है जैसे आप चुनाव जीत ही गई हैं। साथ में थाना पुलिस चल रही है, बड़ा रौब है भाई। वाह वाह वाह।

0: सब आपकी ही कृपा है दीवान जी। ईश्वर करे आपकी बात सच हो।
1: अरे सच तो ई है जमुनिया कि कच्छो दिन की खुशफहमी है। खुश रह लो। हाँ अरे जमुनिया, मतदान के बाद जब मतगणना होगी ना तो तुम्हारा दूरों दूर तक पत्ता नहीं चलेगा। हाँ और ये दो कांस्टेबलों के भरोसे चुनाव जीतने से रही तुम।
0: समय बदल रहा है दीवान जी। आप भी बदलिए। इस युवा शक्ति को समझिए, पहचानिए।
1: अच्छा चलिए समझने की कोशिश करते हैं भाई।
0: कोशिश करेंगे तो जरूर समझेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार। चलिए समझाने दीवान को। अरे जरा सोच समझकर चलना पड़ रहा है हमें, नहीं तो बहुत जल्दी समझाते ऐसे। हाँ
0: कुछ कहा दीवान जी?
1: नहीं नहीं कुछ नहीं, आपसे नमस्ते कर रहे थे और क्या। नमस्ते।
0: नमस्ते दीवान जी।
1: नमस्ते। हाँ
2: जमुनिया, चुनाव के मतदान को केवल एक हफ्ता रह गया है और हम जितना आकलन कर पा रहे हैं जनमत आपके ही पक्ष में है और इससे दीवान का बौखला जाना स्वाभाविक है
3: और होना भी चाहिए। अभी तक लगभग एक तरफा सत्ता उसी के पास तो रही है।
0: तो आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। जयंत भैया आप तो सब समझते हो ना।
4: हे मुझे तो डर लग रहा है ये दीवान है ना कुछ उल्टा पुल्टा न कर दे।
0: कैसा उल्टा पुल्टा मेघा बहन?
3: मेघा को लगता है कि अवैध मतदान करवा सकता है। क्यों मेघा?
4: हाँ शिल्पी, जब भी मिलता है उसके इरादे और गंदे नजर आते हैं।
2: हाँ तो चलो आज कहीं बैठकर इस पर विचार करते हैं।
4: हाँ,
2: कि
4: हाँ,
2: हमें आगे क्या करना चाहिए।
4: हाँ, चलो ठीक है, चलो चलो।
5: अभी भी कई क्षेत्र छूटे हुए हैं जिनसे हम नहीं मिल पाए हैं, उधर चलकर अपनी बात रखना जरूरी है।
0: ठीक है, आज वही चलते हैं। चलो
5: चलो
6: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो।
7: जीतेगी भाई जीतेगी।
8: हां जमुनिया जीतेगी।
7: जीतेगी भाई जीतेगी।
8: हां जमुनिया जीतेगी।
1: जमुनिया जीतेगी, आ जमुनिया जीतेगी। अरे नारे सुन सुन के तो कान पक गए हमारे हैं? और तुम लोग कुछ कर भी रहे हो या फिर चुपचाप रहकर तमाशा देख रहे हो?
9: मालिक।
1: अरे मालिक मालिक किए जा रहे हो कथे। अरे चुनाव है चुनाव, समय नाजुक है, सोच समझकर कदम उठाओ। हाँ और यही सब करते रहोगे तो जैसा मुझे दिखाई दे रहा है ये जमुनिया जीत कर हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। हाँ
9: मालिक आप सही कह रहे हैं। मालिक गांव में भीतर ही भीतर जमुनिया के पक्ष में लहर चल रही है।
10: और मालिक लोग भी क्या बताएं आपको, बहुत ही चालाक हो गए हैं। अरे मुंह पे तो बोलते हैं कि आपको वोट देंगे मगर उनके इरादे तो कुछ और ही नजर आ रहे हैं।
1: सही कह रहे हो तुम लोग, पर सुनो।
9: हाँ मालिक।
1: आज कंबल और कपड़ा बंटवा दो। हाँ
9: ठीक है,
1: पर खाली एक मोहल्ले में, अभी देखो कि क्या असर होता है। और उधर हम शहर में जाकर पता करते हैं कि यहाँ चुनाव की ड्यूटी पर कौन आ रहा
9: है।
1: हाँ उसी को पटाकर कुछ करना पड़ेगा।
9: अरे
1: चुनाव के एक दिन पहले सबको दारू पिलाओ और उन्हें मतदान केंद्र तक आने ही मत दो। अरे उनके वोट हम डलवाएंगे हम।
11: जी मालिक, इस बार कुछ इसी तरह काम करना पड़ेगा, पर वहाँ भी सजग रहने की जरूरत है।
10: ये जो शेरी छोकरा है ना जयंत,
9: जयंत
10: है ना, अरे कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है यार।
1: ठीक है।
10: अरे इसी ने तो आग लगवाई है मालिक, कि जमनिया पे आपने हम

0: हमला करवाया?
1: लो भला,
0: तभी तो ये पुलिस वाले आ गए।
1: हाँ।
0: अरे आप कहो तो ऐसे भी ठीक कर दे।
2: नहीं नहीं नहीं,
1: हुकम करो मालिक।
2: नहीं अभी नहीं, पहले पटाओ से, देखो क्या कहता है वो, ताकत तो बाद में आजमा लेंगे अपन लोग।
0: तो मालिक हम अभी जाते हैं, चल के देखें यार उधर का पक रहा है।
1: हाँ सही सही, चलो।
2: हाँ जाओ और जल्दी लाकर हमें खबर दो।
1: चलो चलो। अरे जमुनिया बहन, आज इधर?
3: हाँ भैया, इधर नहीं आ पाए थे इसलिए सबसे मिलने आ गए। आप लोग है दिया, आगे आप लोग जो ठीक समझे। चलिए साथियों।
4: हाँ चलो, चलो, चलो चलते हैं,
5: आगे बढ़ते हैं।
6: चलते
7: जीतेगी भाई, जीतेगी।
8: हाँ दुनिया जीतेगी।
2: अरे जयंत बाबू, जयंत बाबू।
1: हाँ यार। हाँ
2: सर, एक तरफ इधर। हाँ। आपसे जरा कुछ जरूरी बात करनी थी।
1: हाँ जी कहिए, क्या बात है?
2: बात जरा कुछ को भाई, जरा ऐसी है कि
1: हाँ भैया,
2: क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस।
1: हाँ भाई
2: भाई, दो दो मिनट के लिए।
1: हाँ इधर आ जाओ।
9: हम तीन चार मित्रों के बीच आप ये कह रहे हैं कि मैं अलग से गोपनीय बात करूं? देखिए ये कुछ ठीक नहीं है, इससे हमारे बीच अविश्वास पैदा होगा, हमारा एक दूसरे पर भरोसा कम होगा। इसलिए आप अपनी बात रहने दें, और अगर कहना है तो हम सबके बीच में कहें।
1: अरे चलो यार, चलो यार। हमसे बात करने में घबरा रहे हैं
2: और क्या
1: है?
2: फिर भी देखो साहब, सोचो कुछ आपके फायदे की, कुछ हमारे फायदे की। जयंत बाबू समझो जरा।
9: आप अपने फायदे की चिंता करिए, अपने फायदे का मैं खुद सोच लूंगा, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
2: अरे कहा ना यार, चलो चलो, बेकार टाइम खराब करने से क्या फायदा।
1: हाँ सही कह रहा यार, चलो चलो चलो।
10: जयंत, इनका मतलब क्या रहा होगा?
9: मतलब क्या होगा, हमें पटाकर चुनाव से अलग करना चाह रहे होंगे।
10: अरे
9: ये दीवान के लोग हैं।
10: हाँ
9: मुझे पता है, अब मुझे पक्का लगने लगा है कि दीवान कुछ फर्जी मतदान करवाने की सोच रहा है।
10: हाँ
9: मुझे शहर जाना ही पड़ेगा, तुम लोग यहाँ का प्रचार संभालो।
10: हाँ
9: मैं कल शहर जाकर कुछ करता हूँ।
4: ठीक है जयंत, तुम उधर देखो, हम लोग इधर प्रचार का मोर्चा संभालते हैं।
10: बिल्कुल ठीक।
3: ये तो बहुत ही परेशानी वाला काम है चुनाव लड़ना, मैं तो समझी थी परछा भर गया, वोट डलेंगे, जो जीतेगा गांव की तरक्की का काम करेगा, पर यहाँ भी बड़ी धांधली है।
10: जमुनिया अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है, समझ गई ना आप? चलो आगे बढ़ेंगे।
3: नहीं मेघा जी, पीछे हटने वाली बात नहीं है, मैं तो कहना चाहती हूँ कि सीधा रास्ता नहीं है कुछ भी हासिल करने का, मतलब परस्त लोगों ने हर बात को उलझा रखा है।
10: हाँ वो तो है।
4: चलो आगे चलते
10: हाँ,
4: हैं।
10: चलो आगे चलते हैं।
3: चलिए
2: मालिक। अरे क्या हुआ, क्या बोलता है वो जयंत छोकरा?
0: अरे बड़ी चालू चीज है वो मालिक
2: है?
0: अरे हाथ ही नहीं रखने दिया
2: है?
0: साफ टेढ़ा हो गया। क्या कह रहा था कि जो कहना है सबके सामने कहो।
2: अरे
0: अब सबके सामने तो बात करने की थी नहीं,
1: पर हाँ इशारा तो कर दिया था अपन ने, है फायदे की बात कहकर।
2: गधे हो तुम लोग गधे।
1: मालिक
2: अब वो और सजग हो जाएगा। अरे तुम्हें उनके अलग अलग होने का इंतजार करना चाहिए था, बात को बिगाड़ के रख दिया कमबख्तों। ओहो क्या करें। अच्छा सुनो
1: जी मालिक,
2: आज रात का कार्यक्रम तय करो, क्या करना है वो सोचो, थोड़ी जासूसी भी करो।
1: आज ये ठीक है,
2: वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और लोगों का क्या मूड है वो भी देखो। हाँ
1: जी मालिक जी मालिक जी,
0: देखते चलो
2: आज ही रात को बताओ मुझे आकर।
1: हाँ मालिक,
2: कल मुझे उसी हिसाब से प्लान करना पड़ेगा।
1: हाँ मालिक,
2: कल शहर भी जाऊंगा और चुनाव ड्यूटी का पता करने के लिए कि है किसकी ड्यूटी, बहुत ही जरूरी हो गया है सेटिंग करना। हाँ
0: हाँ वो तो साहब।

0: 着讲讲
1: 好嘛，叫了叫了啊，叫了叫了。
2: इंस्पेक्टर साहब
3: जी,
2: मैं केवल इतने से काम के लिए यहाँ आया हूँ कि उस गांव में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए।
4: जैन जी, ये तो आप भी जानते हैं कि कहाँ कितनी पुलिस रहेगी, चुनाव व्यवस्था क्या होगी, कैसे होगी, सब चुनाव आयुक्त देखते हैं। हमें उनका आदेश मानना होता है और उन्हें लगता है कि तमाम उपायों के बावजूद चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं या कोई गड़बड़ी हुई है, तो दोबारा वोटिंग कराते हैं।
2: सर, मैं आपसे चुनाव व्यवस्था करवाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे पता है कि अपने देश में चुनाव बहुत फेयर होते हैं
4: जी,
2: और इस बात को दुनिया भी मानती है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि किसी भी तरह की बदमाशी पर नजर रखी जाए, जनता अपनी मर्जी से मतदान केंद्र पर जाए और मतदान करे, उन्हें किसी भी प्रकार का फोर्स ना किया जाए और ना ही लालच दिया जाए।
4: देखिए, मैंने आपके ही कहने पर जमुनिया को सुरक्षा उपलब्ध कराई है, पर एक बात जानना चाहता हूं, आपको इस गांव की पॉलिटिक्स में इतनी रुचि क्यों है? जहां तक मैं जानता हूं, आपका इस गांव से कोई संबंध नहीं है।
2: मैं तो वहां केवल घूमने घामने गया था अपने दोस्तों के साथ, पर वहां जाकर गांव में जमुनिया से मिला तो लगा एक नए भारत का उदय होने वाला है और जमुनिया उसका रोल मॉडल हो सकती है। बयार उसके पक्ष में है, उसे केवल धूर्ति हरा सकता है और हम ये नहीं होने देना चाहते। आप अगर हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे तो एक अच्छे काम में आपकी भी भागीदारी हो सकती है।
4: आप निश्चिंत रहें, मैं जितना भी संभव होगा व्यवस्था करूंगा और समय समय पर मैं भी चक्कर लगाता रहूंगा वहां।
2: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच
4: जी। कोई बात नहीं,
2: हमें आपका आना अच्छा लगेगा
4: जी,
2: और मेरा विश्वास है कि जमुनिया से आप भी प्रभावित होंगे।
4: क्यों नहीं।
5: क्या बात है माइक,

0: लगता है थक गई हो, सिर दबा दूं भाई?
1: अरे नहीं रे, सिर वे नहीं दुख रहा, पर दबा दे, थोड़ा अच्छा लगेगा।
0: लाओ सिर दबा देती हूँ। अच्छा माई, सिर दर्द नहीं दे रहा तो फिर कुछ सोच रही हो?
1: ये तो सही बोली, पता नहीं क्या रोग पाल बैठी। जो देखो सौ सवाल पूछ रहा है, दीवान से तो कोई कुछ पूछता ही नहीं था, ना पूछ रहा है। भी चुनाव हुए नहीं और लोग ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे मैं ही सरपंच बन गई हूं।
0: तब तो अच्छा है ना माई, सोचो 100 बार सोचो, पर आगे की सोचो। अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है, है ना माई?
1: तू कब से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी रे?
0: मेघा दीदी, शिल्पी दीदी, जैन भैया, सभी लोग तो ऐसा ही बोलते हैं ना।
2: अरे बिटिया जमुनिया।
1: जी बाबा।
2: अरे तू अभी सोई नहीं?
1: आओ बाबा आ जाओ, ये चिरैया भी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। दादी बन गई है एकदम से।
0: अच्छा माई, चलो ठीक है, नहीं बोलते हम।
2: अरे बिटिया।
1: जी बाबा।
2: मैं पुराने टोले में गया था।
1: हाँ।
2: लोगों से बात करने, सोचा उनके मन का पता करूं।
1: अच्छा।
2: पर कुछ पता नहीं चल पाया बिटिया। वहां तो कंबल बट रहे थे, धोतियां बट रही थीं। अरे ये दीवान अपना घिनौना खेल खेल कर ही मानेगा बेटा।
1: मुझे तो लोगों पर भरोसा है बाबा।
2: हाँ।
1: वे कंबल और धोती भले ही ले ले, पर उधर वोट नहीं देंगे।
2: पर बिटिया कहीं वो जबरन वोट डलवा देगा तो?
1: उसकी चिंता तो है, पर जयंत भैया उसका काट निकालेंगे।
2: हाँ।
1: मुझे पक्का भरोसा है। आज शहर गए हैं, देखिए क्या खबर लाते हैं। देखा नहीं था, कुछ लोगों ने मुझ पर हमला किया तो तुरंत पुलिस आ गई हमारी सुरक्षा के लिए।
2: हाँ बिटिया, अरे वो तो

0: हाँ महिला इधर आ जाइए, चलो बस बस। अरे अरे अरे ये बकरी को उधर करो यार, तुम लोग तमाशा लगा रखा है, ये कुत्ता को भगाओ। भाइयों भाइयों और बहनों, आप सबको संबोधित करने के लिए दीवान जी आने ही वाले हैं। हाँ आज ही बैठे रहना, और जब तक वो आते हैं हम आपको गाना सुनवाते हैं। बोलो सुनोगे गाना?
1: चलो भैया चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाले।
2: दीवान जी के इंतजार में लोग आके चले गए।
0: अरे हाँ यार, अब तो गिने चुने लोग बचे हैं। भैया भाषण किसको सुनवाएंगे? दीवान जी पधार चुके हैं, जरा तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं आदरणीय दीवान जी से निवेदन करता हूँ कि वे आप सबको सीधे संबोधित करें। आदरणीय दीवान जी, ताली बजा भैया।
3: मेरे गांव के मेरे प्रिय साथियों, भाइयों बहनों, मैं आपसे मालकिन के पक्ष में वोट डालने का निवेदन करने आया हूं। आज तक आपने मुझे ही सरपंच चुना है, और बदले में मैंने भी इस गांव का हमेशा भला चाहा है। अरे जितना सरकार ने फंड दिया उससे ज्यादा खर्च किया हमने यहां, क्योंकि ये गांव मेरे परिवार जैसा है, और ईश्वर की कृपा से मुझे भगवान ने दिया भी है, ताकि सरकार द्वारा दिए फंड से अधिक खर्च कर सकूं। भाइयों बहनों, आप तो सब समझदार लोग हैं, और समझदार को इशारा ही काफी होता है। हाँ बस इतना याद रखिए कि मतदान के दिन मालकिन को याद रखिए, उन्हें अपना अमूल्य वोट दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद।
4: मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग जो भी हैं, दो चार जो बैठे हैं, मालकिन को वोट देंगे। देखा नहीं कैसी तिरछी हंसी थी उनके चेहरों पर।
0: भैया इस बार तो सूपड़ा साफ ही होने वाला है, दीवान इस बात को समझता क्यों नहीं है यार?
4: अरे वो खूब समझता है, पर कोशिश करना थोड़े ही छोड़ेगा।
0: भैया एक बात कहूं, हवा का रुख पहचान कर हमें भी पाला बदल लेना चाहिए।
4: तू ठीक कहता है, तो चले जमुनिया से मिलने।
0: हाँ, सोच के भैया पक्की
4: पक्की।
0: चल चल चल जमुनिया के पास आ जा।
5: अरे दंदी फंदी भैया, इधर कहाँ चले आ रहे हैं, कैसे रास्ता भूल गए?
0: नमस्ते
2: नमस्ते जमुनिया
0: जी। जी नमस्ते
5: नमस्ते।
0: अरे हम रास्ता भूल कर थोड़े ही आए हैं,
2: बल्कि हमें रास्ता समझ में आ गया है, इसीलिए इधर आए हैं।
0: नमस्ते भैया।
6: नमस्ते नमस्ते जमुनिया।
5: नमस्ते।
6: ये कौन लोग हैं?
5: ये दंदी फंदी भैया हैं, दीवान जी के सलाहकार हैं।
6: तो फिर इधर कैसे?
5: पता लगाने निकले होंगे कि जमुनिया क्या कर रही है, क्यों?
0: अब भैया हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, अरे जिसके साथ रहते हैं वो ही भरोसा नहीं करता।
2: दीवान के साथ रहते हैं वो भी हमेशा शक की नजर से देखता है, आज तुम्हारे पास आए तो तुम भी ताना मार रही हो।
5: अच्छा चलो बताओ कैसे आना हुआ।
0: जमुनिया जिज्जी, ऐसा है जिज्जी के गांव के लोग तो तुम्हारे साथ ही हैं, क्यों भैया?
2: हाँ भैया
0: है, पर दीवान का कोई ठिकाना नहीं कब क्या कर बैठे। अब देखो ना, वो कल बाहर गया है इलेक्शन कराने वालों से मिलने के लिए।
2: हाँ।
0: क्यों भैया है ना, अब कहीं कोई गोटी फिट ना कराए, हम तो यही बताने आए थे आपको।
2: हाँ अच्छा अब हम चलते हैं।
0: हाँ।
2: दीवान को पता लगेगा तो हम बता देंगे कि आपकी जासूसी करने आए थे।
0: और क्या।
5: धन्यवाद भैया लोगों। नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्ते जी।
6: ऐसे लोग हर समाज में होते हैं, हमेशा सत्ता के साथ, चाहे सत्ता किसी की भी हो, इन पर भरोसा करना भी खतरनाक होता है और ना करना भी।
7: जमुनिया की कहनी सुनो मेरे भैया, जमुनिया की करनी गुनो मेरे।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जमुनिया का 11वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की चार दिवसीय यात्रा से पहले विश्वास व्यक्त किया है कि इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। उन्होंने बताया कि वह बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6 दिन के अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगी। वित्त मंत्री शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बालाघाट जिले के लांजी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल हुए। अभियान के तहत यहां बैठक, समीक्षा और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हॉकी के जादूगर महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जीवन खेल के प्रति समर्पण, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की प्रेरक मिसाल है। डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने आज रीवा, सीधी, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जिलों में हल्की से तेज बारिश होने के आसार हैं। और दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत अपना पहला मैच कल थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा, जबकि 3 सितंबर को हांगकांग और 5 सितंबर को पाकिस्तान से मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
8: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। योगदान है आकाशवाणी रीवा का।

मजबूत हौसले, बुलंद इरादे, आज महिला की है यही पहचान। हिम्मत रखती है हर धूप छांव में, कर्मठता का पहने रहती परिधान। लाज है नारी का सच्चा गहना, महिला शक्ति से ही बेहतरीन कर पाता है घर का बागवान। इसी जोश और उमंग के साथ हम फिर हाजिर हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा लेकर। तो बहनों स्वीकार कीजिए अर्चना का नमस्कार। मैंने बुंदेलखंड की धरती अपनी वीरता के लिए जानी जाती थी, लेकिन यहाँ का सूखा और पानी का संकट बहुत पुराना है। गर्मियों के दिनों में यहाँ कुएं सूख जाते थे और लोग पानी के लिए तरसते थे। इस कठिन हालात में पुरुषों को पलायन करना पड़ता था और धीरे धीरे पूरे के पूरे गांव वीरान हो चले थे। जो बचे थे वे बेहाल परेशान रहने लगे थे। यहाँ तक कि नौबत आ गई थी कि इन गांवों में कोई अपनी बेटी ब्याहने को तैयार न होता था। लोग कहते थे बेटी घर में बैठाए रहेंगे, लेकिन इन जल विहीन गांवों में न ब्याहेंगे। तभी बुंदेलखंड की जल सहेलियां आगे आईं और हाथों में हाथ मिलाकर पानी बचाने के लिए लग गईं। बहनों मध्य भारत का बुंदेलखंड क्षेत्र अपनी पथरीली जमीन और भीषण सूखे के लिए जाना जाता है। बहनों यहाँ पानी की कमी से जूझते गांवों में महिलाओं का एक साहसी समूह जल सहेलियों के रूप में उभरा है। साधारण साड़ियों में लिपटी ये ग्रामीण महिलाएं तालाबों को पुनर्जीवित करके चेक डैम बनाने और वर्षा जल संचयन के जरिए बुंदेलखंड की तकदीर बदल रही हैं। बहनों इन जल सहेलियों का कार्य और संगठन बेहद सराहनीय है। ये जल

0: सहेलियाँ बुंदेलखंड के गांवों की वे महिलाएं हैं जो जल संकट से लड़ने के लिए एकजुट हुई हैं। बहनों, यह पहल पानी की भारी कमी से जूझते जिलों जैसे बांदा, महोबा से शुरू हुई। इन जल सहेलियों का उद्देश्य पारंपरिक जल स्रोतों को बचाना और गांव के हर घर में पानी पहुंचाना था। इनका नेतृत्व गीता और उमराव जान जैसी महिलाओं ने किया। बहनों, सूखी पड़ी नदियों और तालाबों को दोबारा गहरा करना, बारिश के पानी को खेतों और कुओं में रोकना, लोगों को पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए जागरूक करना, इन महिलाओं का कार्य जल स्रोतों की सफाई खुद अपने हाथों से करना था। गांवों में अब पीने के लिए पानी आसानी से मिलने लगा, खेती के लिए भी पानी की स्थिति सुधरी, भूमिगत जल स्तर भी सुधरा, महिलाओं का आत्मविश्वास और सम्मान समाज में बढ़ा, पलायन की समस्या कम हुई क्योंकि लोग गांवों में ही टिकने लगे और गांवों में ही फलने फूलने लगे। ये जल सहेलियां केवल पानी नहीं बचाती हैं, वे बुंदेलखंड का भविष्य बचा रही हैं। उनका यह प्रयास हमें यह सिखाता है कि कठिन समय में मिलकर काम करने से हर समस्या का हल निकलता है, क्योंकि बहनों जल है तो कल है, जल ही हमारा भविष्य है। बहनों, हर व्यक्ति चाहता है कि वह कुछ ऐसा काम कर जाए कि मरने के बाद भी लोग उसको याद रखें। बहुत से लोग तीरथ करते हैं, लोगों को धन दान में देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। वे चाहते हैं कि वे इस जन्म में इतना पुण्य कमा लें कि उन्हें अगले जन्म सुख ही सुख मिले। लेकिन बहनों, यह सब तो जीते जी किए जाने वाले कार्य हैं। लेकिन हम मरने के बाद भी किसी के काम आ जाएं तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। इस समय नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, जिसके बारे में हम आज बातचीत कर रहे हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुजाता लखटकिया से।
1: जो नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है 25 अगस्त से 8 सितंबर तक, उसमें आप नेत्रदान करने वाले व्यक्ति को कैसे जागरूक करती हैं?
2: आम जनता में नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन किया जाता है और इस पखवाड़े के दौरान हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिससे लोगों में नेत्रदान करने की जागरूकता बढ़े। जैसे कि हमने नुक्कड़ नाटक किया था अभी कुछ ही दिन पहले अपने अस्पताल परिसर में, और ये हम नुक्कड़ नाटक दोबारा भी करेंगे संजय गांधी अस्पताल परिसर में। इसके अलावा रैली निकाल सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम, जो कि आजकल बहुत प्रचलित है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम विभिन्न तरह के विज्ञापन दे सकते हैं, टॉक दे सकते हैं। इन सब चीज़ों से हम आम जनता में नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं। नेत्रदान करने के लिए कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें उम्र की कोई बाधा नहीं होती है। छोटे से छोटा बच्चा 1 साल का जो है वो भी कर सकता है और ऊपर की उम्र की तो कोई सीमा नहीं होती है। लिंग भेद भी नहीं होता है इसमें, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों में से कोई भी नेत्रदान कर सकते हैं।
1: जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, क्या वो भी नेत्रदान कर सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, जिनको डायबिटीज है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, वो बिल्कुल नेत्रदान कर सकते हैं। साथ ही वे मरीज जो चश्मा लगाते हैं, जिनका ऑपरेशन मोतियाबिंद का हो चुका है, वो सभी नेत्रदान कर सकते हैं। ऐसे मरीजों को नेत्रदान के लिए मना नहीं किया जाता है। धन्यवाद।
0: आइए बहनों, पद्मावत फिल्म का ये गीत सुन लेते हैं जिसे आवाज दी है नीति मोहन ने।

बहनों, लखपति दीदी योजना भारत सरकार की एक पहल है। इसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय को बढ़ाकर कम से कम 1 लाख या उससे अधिक करना है। यह योजना महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। बहनों, इस योजना में केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि यह योजना महिलाओं के लिए ही है। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही महिला का किसी सक्रिय स्वयं सहायता समूह यानी SHG से जुड़ा होना अनिवार्य है। बहनों, योजना के मुख्य लाभ हैं, जिसमें बिना गारंटी लोन महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। बहनों, व्यक्तिगत ऋण पर 3 साल के लिए ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। बहनों, सिलाई, डेयरी, कृषि, हस्तशिल्प और फूड प्रोसेसिंग पर मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। बहनों, इस योजना से जुड़कर बहुत सी महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। बहनों, पहले जो महिलाएं केवल घर तक ही सीमित थी, आज वे खुद का काम संभाल रही हैं और समाज में अपनी पहचान बना रही हैं। बहनों, इस कार्य ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया। बहनों, लखपति दीदी योजना से प्राप्त प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता से महिलाओं में आत्मविश्वास भर गया है और उन्होंने यह साबित कर दिया है कि यदि सही दिशा और अवसर मिले तो महिलाएं हर चुनौती का सामना कर सकती हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती हैं। आइए बहनों, अब सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत, जिसे आवाज दी है सुखविंदर सिंह ने।

मैंनो, बारिश का मौसम जितना सुहाना होता है उतना ही अपने साथ लाता है कई मुसीबतें। चारों तरफ पानी ही पानी, खास तौर पर पानी के संपर्क में हमारे पैर आते हैं, बरसात का असर हमारे पैरों पर नजर आता है। बहनों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पैरों को इन्फेक्शन और गलन से बचाने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय। बहनों, बारिश के मौसम में भीगने के बाद पैरों को सादे पानी और साबुन से धोएं। उंगलियों के बीच की जगह और मुलायम होती है तो मुलायम तौलिए से अच्छे से पोंछें। बहनों, दूसरा उपाय है पैरों और उंगलियों के बीच फंगस से बचने के लिए कोई अच्छी एंटी फंगल पाउडर या क्रीम लगाएं, यह नमी को रोकता है। बहनों, तीसरा उपाय है कि बंद जूतों की जगह सैंडल या चप्पल पहने जिसमें हवा आती जाती रहे, इससे पैर गीले नहीं रहते और बदबू नहीं देते। बहनों, चौथा उपाय है हमेशा साफ और सूती मोजे पहने। बहनों, किचन में काम करते समय अक्सर गीला होता रहता है तो कोशिश करें कि किचन को सूखा रखें जिससे हमारे को भी आराम लगे। बहनों, पांचवा उपाय है हफ्ते में 2-3 बार गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पैरों को 10 मिनट तक डुबोए रखें, जिससे थकान भी मिट जाती है और पैरों के बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। बहनों, आप इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर अपने पैरों को करिए सुरक्षित और लीजिए बारिश का आनंद। तो आइए बहनों, सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत जिसे आवाज दी है सोनू निगम ने।

0: बहनों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो बहनों स्वीकार कीजिए अर्चना का नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, योगदान था आकाशवाणी रीवा का। ये
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर।

0: कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। योगदान है आकाशवाणी रीवा का। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं अभिलाषा मिश्रा के गाए लोकगीत, जिसमें सबसे पहले आप सुनिए हिंदुली।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे अभिलाषा मिश्रा के गाए लोकगीत। लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आप

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। योगदान है आकाशवाणी रीवा का। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनाते हैं मुकुल सोनी की गाई गजलें।

मुकुल सोनी की इसी गजल के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। योगदान था आकाशवाणी रीवा का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई।

0: माई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं पहला गीत फिल्म सरफरोश से। स्वर है आमिर खान और अलका याग्निक के। गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीत में बनाया है जतिन ललित ने।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

से देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

कार्यक्रम में अगला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म साजन से। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। इस गीत की रचना की है समीर ने और इसे संगीतमय बनाया है नदीम श्रवण ने।

0: साजन फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले दिए बयान में विश्वास व्यक्त किया कि उनकी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज़्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वह उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वह ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह केंद्र दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जन विश्वास अभियान के अंतर्गत बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के ग्राम कोरका बोंदारी में आयोजित शिविर में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और शासकीय योजनाओं की पहुंच की जानकारी ली। हर शुक्रवार को जन विश्वास अभियान के अंतर्गत विशेष शिविर आयोजित किए जाते हैं। हालांकि इस बार शुक्रवार को रक्षाबंधन होने के कारण शनिवार को जन विश्वास शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के गैरतगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत देवनगर में जन संवाद एवं शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा और SP आशुतोष गुप्ता उपस्थित रहे। जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने रांची में आज करीब 2 घंटे तक विभिन्न शासकीय संस्थानों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के साथ क्षेत्र के नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी जानी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गोवर्धन योजना के अंतर्गत बायोगैस के लिए संशोधित मूल्य निर्धारण ढांचा इसके उत्पादकों को स्थिर और किफायती मूल्य प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

0: मंत्रालय ने कहा कि इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि उपभोक्ताओं को सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतों में कोई खास वृद्धि न वहन करनी पड़े। हाल ही में एक समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख के अनुसार गोबरधन योजना के अंतर्गत बायोगैस की संशोधित कीमत सीएनजी और घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती है। हालांकि मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि यह निष्कर्ष सही तथ्य पेश नहीं करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले चार दिन बारिश का सिलसिला बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज रीवा, सीधी, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल में रिमझिम बारिश के आसार हैं, जबकि इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभाग में तेज बारिश की संभावना कम है। जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी, पांडुर्ना, सतना, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, उमरिया, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में मौसम बदला रहेगा। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने जिले में विगत समय से हो रही अतिवृष्टि के मद्देनजर नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जिले में प्रशासन और आपदा टीम अलर्ट मोड पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में बाघ रक्षा सूत्र अभियान के तहत तीन दिनों में करीब 11,000 ग्रामीणों, स्कूली विद्यार्थियों, इको विकास समितियों के सदस्यों और वन मित्रों को बाघ वाली राखी बांधकर बाघ तथा वन्य जीवों की सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। अभियान का समापन आज हो रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2,000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
2: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
1: सुशील, इस यात्रा के दौरान किन

0: मुख्य विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर।
1: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
0: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88-719 और 011-230-12-113। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@mea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +977-9851-316807 +977-970-910-7500 और +979810326117। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +86185142-8405। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमरीकी

की राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमरीकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था।

0: अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। एक रिपोर्ट।
1: श्री पेजेस्कियन ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर से लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजेस्कियन की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। अमरीका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
3: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहले देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य

0: रशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म है एक दूजे के लिए। स्वर हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के। ये रचना की है गीत की आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहे आप सभी ने गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा ने। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सभी की पसंद पर हम सुनवाते हैं आपको बेहद खूबसूरत गीत।

लीजिए अब सुनिए फिल्म प्रेम रूप का ये बहुत मशहूर गीत, जिसे गाया है सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ने। गीत लिखा है नरेंद्र शर्मा ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। छावड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ने। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और इनका पूरा परिवार। इसी गीत को पसंद किया है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे ने। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये बहुत प्यारा सा गीत।

और ये गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या, करिश्मा कामले ने। इसी गीत को सुनना चाहे नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल का क्या कसूर से। स्वर हैं आशा भोसले और कुमार सानू के। ये गीत रचना है समीर की और इसे संगीत में बनाया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। इसी गीत के लिए हम तक फरमाइश लिख भेजी है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश को समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सरिता को। नमस्कार। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा के पहले विश्वास व्यक्त किया है कि इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। उन्होंने बताया कि वह बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जन विश्वास अभियान के अंतर्गत बालाघाट जिले के बिरसा विकास खंड के ग्राम कोरका बोंदारी पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों से क्षेत्र की समस्याओं एवं आवश्यकताओं पर चर्चा की और योजनाओं से मिल रहे लाभों की जानकारी ली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गोबरधन योजना के अंतर्गत बायोगैस के लिए संशोधित मूल्य निर्धारण ढांचा इसके उत्पादकों को स्थिर और किफायती मूल्य प्रदान करने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के

अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले चार दिन बारिश का सिलसिला बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज रीवा, सीधी, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत अपना पहला मैच कल थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा, जबकि 3 सितंबर को हांगकांग और 5 सितंबर को पाकिस्तान से मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। श्रोताओं, अब हम आपको बता दें आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम, योगदान रहेगा आकाशवाणी रीवा का। फिल्म संगीत आप सुनेगा शाम 5:33 पर, शाम 6:00, 6:45 पर और रात 8:15 पर। 6:30 प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेगा। शाम 7:25 पर बुंदेली समाचार और 7:30 किसानवाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्थल कार्यक्रम में कृषि नवाचार विषय पर युवा किसान एवं स्टार्टअप संचालकों से बातचीत पर आधारित कार्यक्रम। रात 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में, रात 9:30 कार्यक्रम युवा भारती। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर मंडपाका शारदा का कर्नाटक वोकल। ये कार्यक्रम भी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब ये सभा संपन्न होती है। शाम 5:00 इसी मीटर पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। इसी बीच डीटीएच के ऑडियो चैनल पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत, योगदान है आकाशवाणी रीवा का।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में मुकुल सोनी की गाई गजलें। योगदान था आकाशवाणी रीवा का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में सुनिए अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में फिल्म कुर्बान का गीत। समीर के लिखे गीत को संगीतमय बनाया है आनंद बख्शी ने।

महालक्ष्मी की अय्यर में, महालक्ष्मी अय्यर के स्वर में अब हम आपको सुनाते हैं सुर फिल्म का गीत। ये गीत लिखा है निदा फाजली ने और संगीत है MM क्रीम का।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म साथिया से। स्वर है सोनू निगम के, गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत है ए आर रहमान का।

0: साथी फिल्म के गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जन विश्वास अभियान के अंतर्गत बालाघाट जिले के बिरसा विकास खंड के ग्राम कोरका बोंदारी पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों से क्षेत्र की समस्याओं एवं आवश्यकताओं पर चर्चा की और योजनाओं से मिल रहे लाभों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी किसानों से अपनी फार्मर आईडी बनवाने की अपील की है। 20 अगस्त से प्रदेश के किसानों की फार्मर आईडी बनाने का अभियान आरंभ किया है। इसके अंतर्गत शासकीय दल स्वयं किसानों के पास जाकर उनकी फार्मर आईडी बनवा रहे हैं। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले चार दिन बारिश का सिलसिला बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज रीवा, सीधी, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और देशभर में आज महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन भारत की समृद्ध खेल विरासत का उत्सव मनाने का प्रतीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस लोगों को खेलों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है झलकी। लॉटरी खुल गई। इस झलकी के लेखक हैं अशोक बुलानी और प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ठोंडियाल।
2: प्रस्तुत है अशोक बुलानी की लिखी झलकी लॉटरी खुल गई। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ठोंडियाल।

0: बहना, नवयुग का अंधियारा नहीं, नवयुग का उजियारा छाया।
1: पर चिंटू आजकल तो अंधियारा ही छाया हैगा।
0: अरे छाया होगा अंधियारा, पर गीत में तो उजियारा ही हैगा।
2: अरे ओ महारानी, ये गाने बजाने का काम ही रह गया है बस, ढेर सारा काम पड़ा हैगा, वो कौन करेगा? डूड जैसी बड़ी हो गई, पर अकल नाम को नहीं हैगी तेरे में। हाँ
1: पर अम्मा, हम तो भजन गा रहेंगे।
2: अरे तो ससुराल जाकर क्या भजन ही गाएगी? चूल्हा चौका झाड़ू बर्तन तेरे मियाँ करेंगे।
1: हम ही नहीं करनी शादी। हाँ
2: क्या क्या कही?
0: हेलो कल्लो बात सुदिंदी में क्या रही आगे दीदी, क्या हमें नहीं करनी आगे शादी?
2: अरे तू चुप कर रहे हा? बीच में झकर झकर किए जा रहा है।
1: हाँ हाँ सही कह रहेंगे, हम हमें नहीं करनी शादी।
2: तो क्या जिंदगी भर बैठी रहेगी हमारी छाती पे? हमें नहीं करनी शादी, जैसे लड़के वाले लाइन लगा के खड़े हैंगे तुझसे शादी करने को, छे छे लौट गए।
0: अम्मा आए भी तो एक से एक नमूने ही थे।
2: अरे तो कोई राजकुमार आएगा इसे बहाने?
1: ना आए कोई राजकुमार, पर किसी दहेज के लालची से भी शादी नहीं करनी हमें। हाँ
2: अरे वाह रे।
0: अरे वाह की क्या बात है अम्मा, सही तो कह रही है दीदी।
2: अरे पर ऐसे लोग कहाँ है इस दुनिया में।
0: अम्मा ये पिछली बार वाला लड़का तो थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा था, बात भी जमती दिख रही थी।
2: खा पी के पूछताछ करके छोरे के बाप बोले, गाना बजाना जानती हो, कोई भजन सुनाओ।
0: भजन नहीं गा सकती इसलिए वापस चले गए, जे तो बहुत जाती हैगी।
2: लड़के वालों के तो ऐसे ही नखरे होवे रे। अब पूछो उन समझदारों से कि भैया रे भजन सुनने का शौक है तो क्या बार बार बहू को सामने बिठा कर भजन सुनोगे? रेडियो का है नहीं खरीद लेते, फिर सुनो बैठ के भजन जो जी में आए।
0: अच्छा तो इसीलिए हमारी बहना भजन की प्रैक्टिस कर रही है।
2: क्यों बेटा? अच्छा तो ठीक है गा बेटा गा, पता नहीं कौन सिर फिरा फिर भजन की फरमाइश कर बैठे।

0: ये है हमारी जान के दुश्मन, डले हैं आराम से खटिया पर, खर्राटे ले रहे हैं। चिंटू उठा तो अपने बापू को।
1: हम नहीं उठाते हैं अम्मा, डांट लगाएंगे हम ही को। हाँ
0: अरे उठा दे बेटा।
1: नहीं तुम क्यों नहीं उठाती?
0: सुबह सुबह ही हमारा झगड़ा करने का मूड नहीं है।
1: हाँ तो सुबह सुबह हमारा भी पिटने का मूड नहीं है। कहा
0: अरे वाह रे आजकल की औलाद, अरे क्या फायदा ऐसी औलाद का। हाँ
1: ठीक है अब ज्यादा ताव मत दिलाओ अम्मा। हाँ अभी उठाए देते हैंगे।
0: उठते ही दन्न से हुक्म देंगे। चाय कहाँ है? घर कोई ऑफिस समझ रखा है। आवाज दो और चपरासी चाय लेके हाजिर।

0: Bapu. Oh, Bapu. Bapu. Bapu.
1: अबे कौन है कमबख्त?
0: हमें बापू।
1: अबे बापू के बच्चे काहे को आधी रात को उठा रहा है?
2: आधी रात? सुबह के 8 बज गए होंगे और अभी तक तुम्हारी आधी ही रात हो रही है।
1: अरे बच्चों की अम्मा, दरअसल बात ये है कि हम बढ़िया सपना देख रहे थे।
2: हाँ, सपना ही देखते रहना कि सोने चांदी के बर्तनों में मालपुए उड़ा रहे हैं।
1: सच्ची में आज भी यही सपना आ रहा था। पिछले कई दिनों से यही सपना आ रहा है।
0: वही सपना बापू, कि हम बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैंगे, ढेरों नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े हैंगे,
2: कलर टीवी हैगा, फ्रिज हैगी,
0: डीवीडी पर फिल्म देख रहे हैंगे और अम्मा बापू झगड़ रहे हैंगे कि कौन सी फिल्म देखें।
2: चिंटू, अम्मा बापू सपने में भी झगड़ रहेंगे क्या?
1: अबे चुप। ए चिंटू की अम्मा, ए तुम्हें मालूम है सुबह सवेरे वाला सपना बिल्कुल सच होता आएगा?
2: तो ये तुम्हारा सुबह सवेरा है? 8:30 बज रहे हैंगे।
1: अरे पर मेरा सपना तो सुबह 4 बजे ही शुरू हो गया था। हाँ, मंदिर की घंटी बज रही थी उस वक्त और उसी वक्त मेरी नींद खुल गई। अरे देखता क्या हूँ कि सारा कमरा रोशनी से जगमगा रहा हैगा यार। मैंने सोचा बत्ती बंद करना भूल गया हूँगा।
0: फिर क्या हुआ बापू?
1: अरे फिर क्या, देखता क्या हूँ कि जे रोशनी तो साक्षात देवी माँ के चरणों की थी, साक्षात लक्ष्मी मैया दरवाजे पे मुस्कुराती खड़ी हैंगी।
2: अरे जाओ रहन दो, गप्पे हाँक रहे हैंगे सवेरे सवेरे।
1: अरे गप नहीं है बच्चों की अम्मा, सच्ची कह रहे हैं हम। हाँ, 10 लाख का आशीर्वाद दिया है हमें।
0: पर बापू 10 लाख आएंगे कहाँ से?
1: अच्छा ये बताओ आज कौन सी तारीख है?
2: 28 तारीख है जी आज।
1: 28 तारीख? अरे वो मारा।
0: क्या मारा बापू, मच्छर?
1: अबे चल। ए बच्चों की अम्मा, तुमको लॉटरी का टिकट दिया था ना, ये संभाल कर रखने को, वो लेके आओ तो जरा जल्दी लाओ।
2: पर इनाम विनाम कुछ निकलता तो है नहीं।
1: ओहो, जब बोलती हो बेसुरा बोलती हो। ए तुम लाओ तो।
2: हाँ हाँ लाती हूँ।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, कल 27 तारीख को लॉटरी का डिरा खुल गया होएगा। आज 28 तारीख है, आज अखबार में डिरा छपा तो जरूर होएगा। अभी थोड़ी देर में अखबार वाला हमारी किस्मत का दरवाजा खटखटाएगा।
0: अखबार वाला? पर बापू हमारे यहाँ अखबार आता कहाँ है?
2: ये लो जी टिकट।
1: टिकट? अरे 10 लाख का चेक हैगा जे। चिंटू बेटा जा वर्मा जी के जहाँ से अखबार तो ले आ।
0: हम नहीं जाएंगे वर्मा जी के यहाँ।
1: क्यों?
0: रोज रोज मांगने में हमें शर्म आवे। हाँ।
1: अरे जा जा बेटा, आज हो ले यार, ये बस आखिरी दिन, फिर कल से तो आनंद ही आनंद है। अरे दुनिया भर के अखबार मंगाएंगे और क्या कहते हैं वो तेरी खूब सारी मैगजीन।
2: ए जा बेटा जा ले आ।
0: ठीक है जी, ले आता हूँ। हाँ
2: रुक चिंटू, हम भी चलते हैं।
0: हाँ, चल चल चल।
2: अरे दो दो लोग जाओगे, एक अखबार उठा दे।
1: अरे जाने दे जाने दे, लॉटरी वाला अखबार है आखिर।
0: बापू बापू बापू,
1: क्या हुआ?
0: वर्मा जी के अखबार तो नहीं मिला बापू।
1: अखबार नहीं मिला?
0: हाँ बापू, उनका अखबार तो शर्मा जी ले गए होंगे।
1: अरे यार जे शर्मा जी अजीब लीचड़ आदमी है, अपना खुद का अखबार तक नहीं मंगा सकते जे।
2: अरे तो वर्मा जी का अखबार शर्मा जी ले गए हैं तो शर्मा जी के यहाँ से लेते आते रहा ना। तो बुद्धू के बुद्धू।
0: अम्मा अब बुद्धू मत कहियो ना, दीदी गई है शर्मा जी के अखबार लाने।
2: ये लो बापू अखबार।
1: हाँ, ये अखबार नहीं 10 लाख का पिटारा है जे। मुझे दे, कहाँ है दादे?
2: ये लो।
1: हे लक्ष्मी मैया, लगा दे बेड़ा पार। अरे चिंटू, एक कौन से पेज पर आता है वो लॉटरी का रिजल्ट?
0: अंदर के पेज पे आवे बापू, पन्ने पलट कर देखो ना।
1: अरे यार ये तो भविष्य फल है। लिखा है बीबी से खटपट। देखा देखा बच्चों, सही लिखा है ना, आज ही तुम्हारी माँ से खटपट हुई कि नहीं हुई?
2: अरे वो तो रोज ही होती है, कौन सी नई बात है।
1: चुप चुप चुप रहे, आगे लिखा है।

0: अचानक धन की प्राप्ति, अरे आज तो सच्ची में कुछ होने वाला है। ये रहा लाठी का डेरा। अरे चिंटू पढ़ तो बेटा नंबर ले।
1: हाँ, लाओ लाओ।
0: हाँ, देख देख देख।
1: हाँ, पहला इनाम जो निकला है ना, वो है के सीरीज का।
0: वो महाराज यही तो अपनी सीरीज है। और नंबर वो
1: के।
0: अरे कितनी बार के बोलेगा यार, आगे का नंबर क्यों नहीं बोलता।
2: अरे बोल तो रहा है। हाँ बेटा बोल बोल।
0: अबे बोलता है कि तू अगला पाड़ा खींच के।
2: देखो अम्मा बापू को, अभी तो पैसा आया नहीं तब ये हाल हैगा।
0: अरे तू चुप कर। हाँ बोल रहे नंबर। नहीं नहीं तू टिकट ला इधर दे दे
1: के।
0: अरे फिर के।
1: के 54
0: के क्या के 54। अरे वो मारा यार, आगे आगे 53 है क्या रे चिंटू।
1: हाँ बापू आगे 53 ही है।
0: और आखिर के।
1: आखिरी के 521 है बापू।
0: क्या हे लक्ष्मी मैया।
2: अरे क्या हो गया इन्हें बापू। ओ बापू
1: जी तो हो गए बेहोश।
2: क्या
1: अम्मा लगता है आखिरी के नंबर भी मिल गए होंगे। लॉटरी निकल गई है 10 लाख की। हाँ सच्ची में अम्मा, हमारे 10 लाख का पहला इनाम। अब सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे हमारे। 10 लाख की रकम बहुत बड़ी होती है बहना।
2: अरे आग लगे तुम्हारी रकम में। जरा अपने बापू को तो देख, हराम क्या हो गया इनको।
1: अम्मा खुशी के मारे बापू बेहोश हो गए होंगे।
2: बेहोश हो गए।
1: हाँ अम्मा अभी चप्पल सुघाते होंगे, अभी ठीक हो जाएंगे।
0: अबे जे चप्पल गिन गिन के लगाएंगे हम तुम्हें। चप्पल सुघाता है हमें है? हम लखपतिये को
1: बापू 10 लखपतिये कहो।
0: हाँ 10 लखपतिया हो गया हूँ मैं। अब सारे अरमान पूरे करेंगे हम। बंगला होएगा, फ्रिज होएगा।
1: बापू हम बहुत दिनों से कह रहे हैंगे, पहले हमारी फरमाइश पूरी करने हैं।
0: हाँ हाँ हाँ हा, बोल बेटा क्या चाहिए तेरे को।
1: मुकर मत जाना बापू।
0: अरे नहीं नहीं रे तू बोल तो।
1: बापू हमें है ना, हमें है ना एक मोपेड दिलवा देना बस।
0: अरे था तेरे की मोपेड। अबे स्कूटर की बात कर, कार की बात कर। तुम बता बच्चों की अम्मा तुम्हें क्या चाहिए।
2: हिसल्लो के लिए कोई अच्छा सा लड़का देकर इसका ब्याह धूमधाम से कर दो जी।
1: बापू हम ऐसा करते हैं, कॉपी पेन लेकर आते हैं।
0: हाँ, जे सही है यार, जे सही है। एक एक आइटम और उसका खर्चा लिखते जाते हैं।
1: हाँ।
0: जा।
3: मुरारीलाल, अबे ओ मुरारीलाल।
0: वर्मा जी, अबे तुम्हें किससे कर रहे हो।
3: तुम्हें कह रहे हैं, तुम्हें मांगते कहीं के।
0: मांगते कहीं के हैं? क्या मतलब? तुमसे कौन सी चीज मांगी भाई हमने?
3: अखबार लेकर नहीं आया हमारा? लाओ तो हमारा अखबार।
0: खबरदार जो अखबार को हाथ लगाया तो।
3: अरे वाह, हमारा अखबार और हम ही हाथ नहीं लगा सकते।
0: अरे काय का तुम्हारा अखबार। अरे बेटा सल्लो। हाँ। कहाँ से लाई तुम ये अखबार बताओ तो।
2: शर्मा अंकल के यहाँ से लाए थे। हाँ।
0: लो सुन लिया।
3: पर शर्मा जी हमारा अखबार ही तो ले गए थे।
0: तो ये तुम शर्मा से बात करो जाकर। शर्मा जी लेकर गए हैं तो शर्मा जी से ही जाकर लो अपना अखबार। दिमाग खराब हो गया है जो यहाँ चले आए।
3: अबे ए मुरारी मुंह संभाल कर बात करना।
0: अरे क्या मुंह संभाल कर बात करना, लखपतिये हो गए हम।
3: लखपतिये?
0: हाँ
3: लखपतिये हो गए मतलब?
0: अरे 10 लाख की लॉटरी निकली हमारी समझे, 10 लाख की।
3: अबे तो चाहे जैसी बात करेगा क्या है, एक उल्टा हाथ मारूंगा तो थोबड़ा बिगड़ जाएगा तेरा।
0: क्या क्या क्या क्या क्या, क्या कहा? थोबड़ा तो मैं तेरा सही करता हूँ अभी। ये ले।
2: अजी अजी क्या हो गया, क्यों बिस्तर को पीट रहे हो नींद में?
1: बापू बापू ये तकिये लेकर किससे मारामारी कर रहे हो?
2: कोई सपना देख रहे थे क्या बापू?
0: अरे सपना? अरे मेरे 10 लाख कहाँ गए? वो वर्मा का बच्चा कहाँ गया?
2: पर वर्मा जी आए कहाँ? हाँ उनके यहाँ से अखबार जरूर लाया है चिंटू।
0: अरे तो लॉटरी का इनाम निकला?
2: हाँ निकला है, 10 रुपए का इनाम निकला है।
0: क्या 10 रुपए?

0: लॉटरी खुल गई। अभी आप अशोक बुलानी की लिखी ये झलकी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे बालेंद्र सिंह कुशवाह, शिवांगी पवार, राजीव सिंह, कंचन राजानी और राकेश जैमिनी। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: अभी आप सुन रहे थे झलकी, लॉटरी खुल गई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सुनिए कंपनी फिल्म का गीत अल्ताफ रजा की आवाज में। गीत लिखा है ताबिश रोमानी ने और संगीत है संदीप

कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म मैंने दिल तुझको दिया से। स्वर हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के। गीत लिखा है फैज अनबर ने और संगीत है डब्बू मलिक का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जमुनिया का।

0: रहा तुम भी, ए भैया वही रहा तुम भी चुनो मेरे भैया, वही रहा तुम भी चुनो मेरे भैया, जमुनिया की कहनी सुनो मेरे भैया, जमुनिया की करनी गुनो मेरे भैया।
1: अभी तक आपने सुना है कि जमुनिया का पति रतन एक ईमानदार मेहनती आदमी था, उसका भाई करण धूर्त और शराबी था। करण ने गांव के दीवान से अपने भाई रतन को 10,000 रुपए का कर्ज दिलाया, पर कागजों में हेरा फेरी करके दीवान ने उसे 25,000 कर दिया। रतन को इससे बड़ा सदमा लगा और उसने आत्महत्या कर ली। बाद में करण ने जमुनिया और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया और जमुनिया के बेटे गोलू को भी हथिया लिया। पट्टे पर मिली रतन की जमीन भी हथिया ली। जमुनिया पास के गांव में एक सहृदय व्यक्ति झुलन बाबा के साथ रहने लगी। बांस के डलिए पंखे बनाकर गुजारा करने लगी। यहीं पर गुरुजी से शिक्षा प्राप्त कर उसने पढ़ना लिखना सीखा। चुनाव आने वाले थे, साथियों के कहने पर उसने सरपंची का पर्चा भर दिया। यहाँ की सीट महिला सीट घोषित होने के कारण दीवान ने भी अपनी पत्नी का पर्चा भरवा दिया। जमुनिया का पर्चा भरना दीवान को बुरा लगा। उसने जमुनिया पर हमला करवा दिया, पर जमुनिया को मामूली चोट आई। इस बीच गांव के ग्राम सेवक की बेटी मेघा अपने कॉलेज के मित्रों शिल्पी और जयंत के साथ गांव आ गई। वे लोग चुनाव में जमुनिया का साथ देने लगे। चुनाव प्रचार जोरों पर था। अब आगे।
2: अरे अपने गांव में पुलिस, देखो तो बाबा।
3: हाँ?
2: पुलिस ही है ना।
3: अरे हाँ बेटा, पुलिस ही लगती है। अरे लगता है दीवान ने कोई चाल चली है। पुलिस में कुछ उल्टा पुल्टा शिकायत किया होगा वो। किसी तरह तुम्हें चुनाव से दूर रखने की ही चाल होगी। हाँ
2: हाँ पापा, वो तो इधर ही आ रहे हैं।
3: हाँ?
2: चलो आने दो, देखते हैं क्या करते हैं। हम भी हिम्मत नहीं हारने वाले हैं। बुला ले थाना पुलिस।
4: जमुनिया जी कौन हैं?
2: हम ही हैं जमुनिया, कहिए कैसे आना हुआ।
5: हमें थाने से भेजा गया है। वहां शिकायत पहुंची है कि।
2: क्या शिकायत पहुंची है बताइए तो सही।
4: आप सरपंची का चुनाव लड़ रही हैं?
2: हाँ लड़ रहे हैं, पर इसमें कुछ गलत है का? चुनाव लड़ना गैर कानूनी है क्या?
5: अरे नहीं नहीं, हमें पता चला है कि आप सरपंची के चुनाव के लिए दीवान की पत्नी के खिलाफ खड़ी हुई हैं। इससे दीवान नाराज है और उसने आप पर हमला भी करवाया है, इसीलिए सरकार ने आपकी सुरक्षा के लिए हमें भेजा है।
2: ओह, तो आप हमारी सुरक्षा के लिए हैं?
5: जी।
2: अच्छा वो दीवान ने हमला तो करवाया था, पर चोट मामूली सी है।
4: ये सिर पर पट्टी बंधी है, यही है ना?
2: हाँ जी हाँ, थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। पर वहां थाने को कैसे पता लगा?
5: इस चुनाव में आपके साथ कोई जयंत बाबू हैं।
2: हाँ हाँ,
5: उन्होंने ही खबर की थी थाने पर।
2: ओ तभी तो, जयंत भैया ने खबर की है।
5: जी।
2: अच्छा आप लोग कुछ पानी वानी पियेंगे तो लाए, नहीं तो हमें चुनाव प्रचार के काम में निकलना है।
4: नहीं नहीं अभी हमें प्यास नहीं है, आप चलें।
5: हाँ हाँ हम भी आपके साथ ही रहेंगे।
4: हाँ
2: वो मेघा बहन अपने साथियों के साथ आती होंगी, तभी निकलेंगे। अरे ये लो, ये आ भी गए। नमस्ते।
6: नमस्ते जमुनिया जी।
2: नमस्ते जमुनिया जी। नमस्ते,
6: चले।
2: हाँ
7: ये लो, पुलिस।
2: आपका ही किया धरा है। थोड़ी सिर पर चोट लगी, वो लोग तो तुरंत भाग भी गए, पर आपने थाने को खबर की और ये लोग आ भी गए।
7: तो देखा आपने, सरकार सुनती है और काम भी करती है। पर बीच के लोग सारी सुविधाएं खुद हड़प जाते हैं और उन्हें कुछ मिलता ही नहीं जिनको उसकी जरूरत होती है।
2: सही बात।
8: जीतेगी भाई, जीतेगी।
9: और जमुनिया जीतेगी।
8: जीतेगी भीखा, अरे ई ससुरी तो इधर ही आ रही है।
9: अरे हाँ, ई तो जमुनिया ही है।
10: अरे दंदी, तू जब बोलता है बुरी खबर ही देता है यार।
9: मैं क्या करूं, हो ही यही रहा है फंदी भाई। आज तो साथ में पुलिस लेके चल रही है।
10: अरे हाँ,
9: चलिए रास्ता बदल लेते हैं दीवान जी।
8: दीवान
9: जी,
8: रुको सब।
10: मालिक,
8: जरा देखें तो सही माजरा क्या है, हैं? अरे थाना पुलिस गांव में आ गई और हमें कोई खबर ही नहीं, हैं? अरे ये हो क्या रहा है गांव में? और तुम लोग सोए रहे हो क्या, हैं?
10: मालिक, हमें तो थाने पुलिस का कुछ पता ही नहीं चला। क्यों,
9: हवा तक नहीं लगी मालिक?
10: हाँ मालिक,
8: क्या हवा तक नहीं लगी? ससुर खाए खाए के मुटियाए रहे हो तुम लोग।
10: मालिक,
8: क्या? आइए आइए आइए जमुनिया जी, आइए। वाह भी वाह, क्या बात है भाई। अब आपकी तैयारी देखकर तो लग रहा है जैसे आप चुनाव जीत ही गई हैं। साथ में थाना पुलिस चल रही है, बड़ा रौब है भाई। वाह वाह वाह,
2: सब आपकी ही कृपा है दीवान जी। ईश्वर करे आपकी बात सच हो।
8: अरे सच तो ये है जमुनिया कि कच्छो दिन की खुशफहमी है। खुश रह लो। हाँ, अरे जमुनिया, मतदान के बाद जब मतगणना होगी ना तो तुम्हारा दूर दूर तक पत्ता नहीं चलेगा। हाँ, और ये दो कांस्टेबलों के भरोसे चुनाव जीतने से रही तुम।
2: समय बदल रहा है दीवान जी। हाँ, आप भी बदलिए। हाँ, इस युवा शक्ति को समझिए, पहचानिए।
8: अच्छा चलिए समझने की कोशिश करते हैं भाई।
2: कोशिश करेंगे तो जरूर समझेंगे। नमस्कार।
8: नमस्कार। चलिए समझाने दीवान को। अरे जरा सोच समझकर चलना पड़ रहा है हमें, नहीं तो बहुत जल्दी समझाते इसे। हाँ,
2: कुछ कहा दीवान जी?
8: नहीं नहीं, कुछ नहीं, आपसे नमस्ते कर रहे थे और क्या। नमस्ते।
2: नमस्ते दीवान जी।
8: नमस्ते। हाँ,
7: जमुनिया, चुनाव के मतदान को केवल एक हफ्ता रह गया है और हम जितना आकलन कर पा रहे हैं जनमत आपके ही पक्ष में है और इससे दीवान का बौखला जाना स्वाभाविक है
11: और होना भी चाहिए। अभी तक लगभग एक तरफा सत्ता उसी के पास तो रही है।
2: तो आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। जयंत भैया, आप तो सब समझते हो ना।
12: हे, मुझे तो डर लग रहा है, ये दीवान है ना, कुछ उल्टा पुल्टा न कर दे।
2: कैसा उल्टा पुल्टा मेघा बहन?
11: मेघा को लगता है कि अवैध मतदान करवा सकता है। क्यों मेघा?
12: हाँ शिल्पी, जब भी मिलता है उसके इरादे और गंदे नजर आते हैं।
7: हाँ, तो चलो आज कहीं बैठकर इस पर विचार करते हैं।
12: हाँ,
7: कि
12: हाँ,
7: हमें आगे क्या करना चाहिए।
12: हाँ, चलो ठीक है, चलो चलो।
13: अभी भी कई क्षेत्र छूटे हुए हैं जिनसे हम नहीं मिल पाए हैं, उधर चलकर अपनी बात रखना जरूरी है।
2: ठीक है, आज वही चलते हैं। चलो
14: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो

0: जीतेगी, आज जमुनिया जीतेगी। अरे ना, अरे सुन सुन के तो कान पक गए हमारे हैं। और तुम लोग कुछ कर भी रहे हो या फिर चुपचाप रहकर तमाशा देख रहे हो?
1: मालिक,
0: अरे मालिक मालिक किए जा रहे हो, कर रहे। अरे चुनाव है चुनाव, समय नाजुक है, सोच समझ कर कदम उठाओ। हाँ, और यही सब करते रहोगे तो जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, ये जमुनिया जीत कर हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। हाँ
1: मालिक, आप सही कह रहे हैं मालिक, गांव में भीतर ही भीतर जमुनिया के पक्ष में लहर चल रही है।
2: और मालिक, लोग भी क्या बताएं आपको, बहुत ही चालाक हो गए हैं। अरे मुंह पे तो बोलते हैं कि आपको वोट देंगे, मगर उनके इरादे तो कुछ और ही नजर आ रहे हैं।
0: सही कह रहे हो तुम लोग, पर सुनो।
1: हाँ मालिक,
0: आज कंबल और कपड़ा बंटवा दो। हाँ
1: जी ठीक है,
0: पर खाली एक मोहल्ले में, अभी देखो कि क्या असर होता है। और उधर हम शहर में जाकर पता करते हैं कि यहाँ चुनाव की ड्यूटी पर कौन आ रहा
1: है। हाँ,
0: उसी को पटाकर कुछ करना पड़ेगा।
1: तो जीत गए मालिक।
0: अरे चुनाव के एक दिन पहले सबको दारू पिलाओ और उन्हें मतदान केंद्र तक आने ही मत दो। अरे उनके वोट हम डलवाएंगे हम।
3: जी मालिक, इस बार कुछ इसी तरह काम करना पड़ेगा, पर वहाँ भी सजग रहने की जरूरत है।
2: ये जो शेरी छोकरा है ना, जयंत,
1: जयंत
2: है ना, अरे कुछ ज्यादा ही हो रहा है यार। अरे इसी ने तो आग लगवाई है मालिक, कि जमनिया पे आपने हमला करवाया, तभी तो ये पुलिस वाले आ गए। अरे आप कहो तो ऐसे भी ठीक कर दे।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: हुकम करो मालिक।
0: नहीं अभी नहीं, पहले पटाओ से देखो क्या कहता है वो, ताकत तो बाद में आजमा लेंगे अपन लोग।
2: तो मालिक हम अभी जाते हैं, चल के देखें यार उधर का पकड़ा है।
1: हाँ सही सही, चलो।
0: हाँ जाओ और जल्दी लाकर हमें खबर दो।
2: अभी लाकर आप
1: चलो चलो।
4: अरे जमुनिया बहन, आज इधर?
5: हाँ भैया, इधर नहीं आ पाए थे इसलिए सबसे मिलने आ गए। आप लोग सुनाइए।
2: हमें सुनाना तो क्या है, सब ठीक ही ठाक है। देखो भाई, यहाँ के लोग तो दीवान जी के खानदानी लोग हमेशा से उन्हीं के साथ रहे हैं। यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं
1: है। हाँ जी समझ लो समझ लो।
5: ये तो इन्हीं लोगों को पता है कि ये लोग मतदान के दिन क्या करेंगे।
2: क्या करेंगे?
5: मेरा फर्ज है कि जो समझती हूँ वो इन्हें समझा दूँ, बाकी ये लोग जाने। क्यों भैया, है ना?
1: हाँ ठीक है।
5: लगता है आप लोग कुछ बोलना नहीं चाहते, तो भैया मुझे जो कहना था कह दिया, आगे आप लोग जो ठीक समझे। चलिए साथियों।
6: हाँ चलो, हाँ, चलो चलते हैं,
7: आगे बढ़ते हैं।
6: चलते
8: जीतेगी भाई, जीतेगी। हाँ दुनिया जीतेगी।
2: अरे जयंत बाबू, जयंत बाबू।
1: हाँ यार, हाँ
2: सर, एक तरफ इधर। हाँ आपसे जरा कुछ जरूरी बात करनी थी।
1: हाँ जी कहिए, क्या बात है?
2: बात जरा कुछ को भाई, जरा ऐसी है कि
1: हाँ भैया,
2: क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस।
1: हाँ भाई
2: भाई, दो दो मिनट के लिए।
1: हाँ इधर आ जा।
9: हम तीन चार मित्रों के बीच आप ये कह रहे हैं कि मैं अलग से गोपनीय बात करूं, देखिए ये कुछ ठीक नहीं है। इससे हमारे बीच अविश्वास पैदा होगा, हमारा एक दूसरे पर भरोसा कम होगा। इसलिए आप अपनी बात रहने दें, और अगर कहना है तो हम सबके बीच में कहें।
1: अरे चलो यार, चलो यार, हमसे बात करने में घबरा रहे हैं।
2: और क्या
1: है?
2: फिर भी देखो साहब, सोचो कुछ आपके फायदे की, कुछ हमारे फायदे की। जयंत बाबू समझो जरा।
9: आप अपने फायदे की चिंता करिए, अपने फायदे का मैं खुद सोच लूंगा। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
2: अरे

0: कहा ना यार, चलो चलो, बेकार टाइम खराब करने से क्या फायदा।
1: हाँ सही कह रहा है, चल चल चलो
2: आजा। जयंत, इनका मतलब क्या रहा होगा?
3: मतलब क्या होगा? हमें पटाकर चुनाव से अलग करना चाह रहे होंगे।
2: अरे
3: ये दीवान के लोग हैं।
2: हाँ
3: मुझे पता है, अब मुझे पक्का लगने लगा है कि दीवान कुछ फर्जी मतदान करवाने की सोच रहा है।
2: हाँ
3: मुझे शहर जाना ही पड़ेगा। तुम लोग यहाँ का प्रचार संभालो।
2: हाँ हाँ
3: मैं कल शहर जाकर कुछ करता हूँ।
4: ठीक है जयंत, तुम उधर देखो, हम लोग इधर प्रचार का मोर्चा संभालते हैं।
2: बिल्कुल ठीक।
5: ये तो बहुत ही परेशानी वाला काम है चुनाव लड़ना। मैं तो समझी थी परछा भर गया, वोट डलेंगे, जो जीतेगा गांव की तरक्की का काम करेगा, पर यहाँ भी बड़ी धांधली है।
2: जमुनिया, अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है, समझ गई ना आप? चलो आगे बढ़ेंगे।
5: नहीं मेघा जी, पीछे हटने वाली बात नहीं है, मैं तो कहना चाहती हूँ कि सीधा रास्ता नहीं है कुछ भी हासिल करने का, मतलब परस्त लोगों ने हर बात को उलझा रखा है।
2: हाँ वो तो है।
4: चलो आगे चलते
2: हाँ,
4: हैं।
2: चलो आगे चलते हैं।
5: चलिए।
6: अरे क्या हुआ, क्या बोलता है वो जयंत छोकरा?
0: अरे बड़ी चालू चीज है वो मालिक
6: है?
0: अरे हाथ ही नहीं रखने दिया
6: है?
0: साफ टेढ़ा हो गया। क्या कह रहा था कि जो कहना है सबके सामने कहो।
6: अरे
0: अब सबके सामने तो बात करने की थी नहीं,
1: पर इशारा तो कर दिया था अपन ने, फायदे की बात कहकर।
6: गधे हो तुम लोग, गधे।
1: मालिक
6: अब वो और सजग हो जाएगा। अरे तुम्हें उनके अलग अलग होने का इंतजार करना चाहिए था, बात को बिगाड़ के रख दिया कमबख्तों। ओहो क्या करें। अच्छा सुनो
1: जी मालिक,
6: आज रात का कार्यक्रम तय करो, क्या करना है वो सोचो, थोड़ी जासूसी भी करो।
1: आज ये ठीक है,
6: वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और लोगों का क्या मूड है वो भी देखो। हाँ
1: जी मालिक, जी मालिक जी,
0: देखते चलो
6: आज ही रात को बताओ मुझे आकर।
1: हाँ मालिक,
6: कल मुझे उसी हिसाब से प्लान करना पड़ेगा।
1: हाँ मालिक,
6: कल शहर भी जाऊंगा और चुनाव ड्यूटी का पता करने के लिए कि है किसकी ड्यूटी, बहुत ही जरूरी हो गया है सेटिंग करना। हाँ
0: वो तो साहब,
6: चलो जाओ जाओ।
1: चलो चलो
7: इंस्पेक्टर साहब
8: जी,
7: मैं केवल इतने से काम के लिए यहाँ आया हूँ कि उस गांव में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए।
8: जैन जी, ये तो आप भी जानते हैं कि कहाँ कितनी पुलिस रहेगी, चुनाव व्यवस्था क्या होगी, कैसे होगी, सब चुनाव आयुक्त देखते हैं। हमें उनका आदेश मानना होता है और उन्हें लगता है कि तमाम उपायों के बावजूद चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं या कोई गड़बड़ी हुई है, तो दोबारा वोटिंग कराते हैं।
7: सर मैं आपसे चुनाव व्यवस्था करवाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे पता है कि अपने देश में चुनाव बहुत फेयर होते हैं
8: जी,
7: और इस बात को दुनिया भी मानती है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि किसी भी तरह की बदमाशी पर नजर रखी जाए, जनता अपनी मर्जी से मतदान केंद्र पर जाए और मतदान करे, उन्हें किसी भी प्रकार का फोर्स ना किया जाए और ना ही लालच दिया जाए।
8: देखिए मैंने आपके ही कहने पर जमुनिया को सुरक्षा उपलब्ध कराई है, पर एक बात जानना चाहता हूं, आपको इस गांव की पॉलिटिक्स में इतनी रुचि क्यों है? जहां तक मैं जानता हूं आपका इस गांव से कोई संबंध नहीं है।
7: मैं तो वहां केवल घूमने घामने गया था अपने दोस्तों के साथ, पर वहां जाकर गांव में जमुनिया से मिला तो लगा एक नए भारत का उदय होने वाला है और जमुनिया उसका रोल मॉडल हो सकती है। बयार उसके पक्ष में है, उसे केवल धूर्त ही हरा सकता है और हम ये नहीं होने देना चाहते। आप अगर हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे तो एक अच्छे काम में आपकी भी भागीदारी हो सकती है।
8: आप निश्चिंत रहें, मैं जितना भी संभव होगा व्यवस्था करूंगा और समय समय पर मैं भी चक्कर लगाता रहूंगा वहां।
7: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच
8: जी। कोई बात नहीं,
7: हमें आपका आना अच्छा लगेगा
8: जी,
7: और मेरा विश्वास है कि जमुनिया से आप भी प्रभावित होंगे।
8: क्यों नहीं।

0: लगता है थक गई हो, सिर दबा दूं भाई?
1: अरे नहीं रे, सिर में नहीं दुख रहा, पर दबा दे, थोड़ा अच्छा लगेगा।
0: लाओ सिर दबा देती हूँ। अच्छा माई, सिर दर्द नहीं दे रहा तो फिर कुछ सोच रही हो?
1: ये तो सही बोली, पता नहीं क्या रोग पाल बैठी। जो देखो सौ सवाल पूछ रहा है, दीवान से तो कोई कुछ पूछता ही नहीं था ना पूछ रहा है। भी चुनाव हुए नहीं और लोग ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे मैं ही सरपंच बन गई हूं।
0: तब तो अच्छा है ना माई, सोचो 100 बार सोचो, पर आगे की सोचो। अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है, है ना माई?
1: तू कब से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी रे?
0: मेघा दीदी, शिल्पी दीदी, जैन भैया, सभी लोग तो ऐसा ही बोलते हैं ना।
2: अरे बिटिया जमुनिया।
1: जी बाबा।
2: अरे तू अभी सोई नहीं?
1: आओ बाबा आ जाओ, ये चिरैया भी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। दादी बन गई है एकदम से।
0: अच्छा मैं, चलो ठीक है, नहीं बोलते हम।
2: अरे बिटिया।
1: जी बाबा।
2: मैं पुराने टोले में गया था।
1: हाँ,
2: लोगों से बात करने, सोचा उनके मन का पता करूं।
1: अच्छा।
2: पर कुछ पता नहीं चल पाया बिटिया। वहां तो कंबल बट रहे थे, धोतियां बट रही थीं। अरे ये दीवान अपना घिनौना खेल खेल कर ही मानेगा बेटा।
1: मुझे तो लोगों पर भरोसा है बाबा।
2: हाँ।
1: वे कंबल और धोती भले ही ले ले, पर उधर वोट नहीं देंगे।
2: पर बिटिया कहीं वो जबरन वोट डलवा देगा तो?
1: उसकी चिंता तो है, पर जयंत भैया उसका काट निकालेंगे।
2: हाँ।
1: मुझे पक्का भरोसा है। आज शहर गए हैं, देखिए क्या खबर लाते हैं। देखा नहीं था, कुछ लोगों ने मुझ पर हमला किया तो तुरंत पुलिस आ गई हमारी सुरक्षा के लिए।
2: हाँ बिटिया, अरे वो तो है।
1: तो चिंता न मत करो बाबा, सब ठीक होगा।
3: चलो भैया, अरे आ जाओ, आ जाओ। अरे अरे ये बच्चे लोगों को पीछे बिठाओ। हाँ महिला इधर आ जाइए, चलो बस बस। हाँ अरे अरे अरे ये बकरी को उधर करो यार, तमाशा लगा रखा है। ये कुत्ता को भगाओ। भाइयों भाइयों और बहनों, आप सबको संबोधित करने के लिए दीवान जी आने ही वाले हैं। हाँ आज ही बैठे रहना, और जब तक वो आते हैं हम आपको गाना सुनवाते हैं। बोलो सुनोगे गाना?
4: हाँ।
3: चलो भैया।
4: चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाले।
5: दीवान जी के इंतजार में लोग आके चले गए।
6: अरे हाँ यार, अब तो गिने चुने लोग बचे हैं। भैया भाषण किसको सुनवाएंगे?
3: दीवान जी पधार चुके हैं, जरा तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं आदरणीय दीवान जी से निवेदन करता हूँ कि वे आप सबको सीधे संबोधित करें। आदरणीय दीवान जी, ताली बजा भैया।
7: मेरे गांव के मेरे प्रिय साथियों, भाइयों बहनों, मैं आपसे मालकिन के पक्ष में वोट डालने का निवेदन करने आया हूं। आज तक आपने मुझे ही सरपंच चुना है, और बदले में मैंने भी इस गांव का हमेशा भला चाहा है। अरे जितना सरकार ने फंड दिया उससे ज्यादा खर्च किया हमने यहां, क्योंकि ये गांव मेरे परिवार जैसा है, और ईश्वर की कृपा से मुझे भगवान ने दिया भी है ताकि सरकार द्वारा दिए फंड से अधिक खर्च कर सकूं।

0: भाइयों बहनों, आप तो सब समझदार लोग हैं और समझदार को इशारा ही काफी होता है। हाँ, बस इतना याद रखिए कि मतदान के दिन मालकिन को याद रखिए, उन्हें अपना अमूल्य वोट दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद।
1: मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग जो भी हैं, दो चार जो बैठे हैं, मालकिन को वोट देंगे। देखा नहीं कैसी तिरछी हंसी थी उनके चेहरों पर।
2: भैया, इस बार तो सूपड़ा साफ ही होने वाला है, दीवान इस बात को समझता क्यों नहीं है यार?
1: अरे वो खूब समझता है, पर कोशिश करना थोड़े ही छोड़ेगा।
2: भैया एक बात कहूं, हवा का रुख पहचान कर हमें भी पाला बदल लेना चाहिए।
1: तू ठीक कहता है, तो चले जमुनिया से मिलने।
2: सोच के भैया, पक्की
1: पक्की।
2: चल चल चल जमुनिया के पास आ जा।
3: अरे दंदी फंदी भैया, इधर कहाँ चले आ रहे हैं, कैसे रास्ता भूल गए?
4: नमस्ते
5: नमस्ते जमुनिया
4: जी। जी नमस्ते
3: नमस्ते।
4: अरे हम रास्ता भूल कर थोड़े ही आए हैं,
5: बल्कि हमें रास्ता समझ में आ गया
4: और
5: है,
4: क्या
5: इसीलिए इधर आए हैं।
4: नमस्ते
5: भैया।
6: नमस्ते नमस्ते जमुनिया।
3: नमस्ते।
6: ये कौन लोग हैं?
3: ये दंदी फंदी भैया हैं, दीवान जी के सलाहकार हैं।
6: तो फिर इधर कैसे?
3: पता लगाने निकले होंगे कि जमुनिया क्या कर रही है, क्यों?
4: अब भैया हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, अरे जिसके साथ रहते हैं वो ही भरोसा नहीं करता।
5: दीवान के साथ रहते हैं वो भी हमेशा शक की नजर से देखता है, आज तुम्हारे पास आए तो तुम भी ताना मार रही हो।
3: अच्छा चलो बताओ कैसे आना हुआ।
2: जमुनिया जिज्जी, ऐसा है जिज्जी के गांव के लोग तो तुम्हारे साथ ही हैं, क्यों भैया?
5: हाँ भैया
2: है, पर दीवान का कोई ठिकाना नहीं कब क्या कर बैठे। अब देखो ना, वो कल बाहर गया है इलेक्शन कराने वालों से मिलने के लिए। क्यों भैया है ना, अब कहीं कोई गोटी फिट ना कराए, हम तो यही बताने आए थे आपको।
5: हाँ अच्छा, अब हम चलते हैं।
2: हाँ।
5: दीवान को पता लगेगा तो हम बता देंगे कि आपकी जासूसी करने आए थे।
4: और क्या।
3: धन्यवाद भैया लोगों। नमस्कार।
4: नमस्कार जी। नमस्ते जी।
6: ऐसे लोग हर समाज में होते हैं, हमेशा सत्ता के साथ, चाहे सत्ता किसी की भी हो। इन पर भरोसा करना भी खतरनाक होता है और ना करना भी।
7: जमुनिया की कहनी सुनो मेरे भैया, जमुनिया की करनी गुनो मेरे।
8: अभी आप संग्रहालय से इस कार्यक्रम में धारावाहिक जमुनिया की 11वीं कड़ी सुन रहे थे। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।

मीडियम वेव 1593 किलो हर्ट्ज पर, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5

0: 5 बजने को हैं। सभा की शुरुआत हम करते हैं इस घंटे की खास खबरों से।
1: राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल 2 दिन के दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वह एलप्पुज़ा में प्रमुख मलयालम दैनिक केरल कौमुदी के 115वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पथनमथिट्टा में केरलम की प्रसिद्ध अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत सरकार की ओर से चिंता जताने और सहायता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति पौडेल ने विनाशकारी बाढ़ में भारतीय नागरिकों की मौत पर भी शोक व्यक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को स्नेह, सौहार्द और सामाजिक समरसता के लोक पर्व भुजरिया कजरिया की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने एक्स पर कहा कि भुजरिया पर्व हमारी समृद्ध लोक परंपराओं को प्रवाहमान बनाता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। जी, अब सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान है।

दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की। मैं आपकी रेडियो दोस्त इशिका, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक और महत्वाकांक्षी पहल पृथ्वी विज्ञान योजना के बारे में। इसे वर्ष 2021 से 2026 की अवधि के लिए लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी प्रणाली के 5 घटकों वायुमंडल, जलमंडल, हिममंडल और जीव मंडल का गहराई से अध्ययन करना और उन्हें एकीकृत रूप से समझना है। इसके माध्यम से पृथ्वी प्रणाली के बदलावों को रिकॉर्ड करने के लिए वायुमंडल, महासागर और हिमनदों पर निरंतर नजर रखा जाएगा। मौसम, महासागर, जलवायु से जुड़े खतरों जैसे चक्रवात, बाढ़, हीट वेव को समझने और उनकी भविष्यवाणी के लिए मॉडलिंग सिस्टम विकसित करना, नए वैज्ञानिक तथ्यों और संसाधनों के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों और गहरे समुद्रों की खोज करना, समाज की भलाई के लिए समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग और उसके अन्वेषण के लिए तकनीक विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा पृथ्वी विज्ञान से मिलने वाली जानकारियों को ऐसी सेवाओं में बदला जाएगा जिससे पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा पहुंचे। पृथ्वी विज्ञान योजना के अंतर्गत मंत्रालय की 5 पहले से चल रही योजनाओं को आपस में एकीकृत किया गया है, जैसे एक्रॉस योजना, ओएसमार्ट योजना, पेसर, सेज, रीच आउट। दोस्तों, इस योजना के जरिए देश के चक्रवात, सुनामी, बिजली गिरने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की सटीक और समय पर चेतावनी मिल सकेगी। समुद्र और मौसम की सटीक भविष्यवाणियों से खेती किसानी और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों को भारी आर्थिक लाभ होगा। वैश्विक तापमान और बदलते मौसम के चक्र को समझकर बेहतर नीतियां बनाने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत गुरु फिल्म से श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाज में।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

दोस्तों, क्या आप ग्रीन प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं? तो चलिए अब बात करते हैं ग्रीन प्रोजेक्ट प्रोग्राम के विषय में। ग्रीन प्रोजेक्ट यानी हरित परियोजना का मतलब ऐसे प्रोजेक्ट से होता है जिनका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण करना, प्रदूषण को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। भारत और वैश्विक स्तर पर इसके अंतर्गत कई योजनाएं और मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसे मुख्य रूप से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और विभिन्न पर्यावरण योजनाओं से जोड़कर देखा जाता है। भारत में इसके तहत कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और सक्रिय योजनाएं हैं। पहली ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये भारत सरकार की एक अनोखी योजना है। इसके तहत

अगर कोई आम नागरिक, संस्था या कंपनी पर्यावरण के अनुकूल काम करती हैं, जैसे पेड़ लगाना, वाटर हार्वेस्टिंग, तो उसे सरकार की तरफ से ग्रीन क्रेडिट मिलते हैं। इन क्रेडिट को बाद में बेचा भी जा सकता है। दूसरी है ग्रीन बिजनेस स्कीम। इसके तहत सरकार उन लोगों या छोटे व्यवसायों को कम ब्याज दर पर लोन देती है जो पर्यावरण को फायदा पहुंचाने वाले काम करते हैं, जैसे ई रिक्शा खरीदना, सोलर पैनल लगाना या पॉली हाउस खेती करना। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट को ग्रीन प्रोजेक्ट तब माना जाता है जब वो इन क्षेत्रों में काम करता है, जैसे वृक्षारोपण, जल प्रबंधन, टिकाऊ कृषि, कचरा प्रबंधन और वायु प्रदूषण में कमी। जब कंपनियां किसी प्रोजेक्ट को शुरू करती हैं, तो वो कम बजट और समय नहीं देखती, बल्कि ये भी देखती हैं कि उस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। इसे ही ग्रीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। दोस्तों, ग्रीन प्रोजेक्ट प्रोग्राम के कई फायदे हैं। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है, बिजली और पानी का सही और सीमित उपयोग होता है, बिजनेस को फायदा होगा और आजकल निवेशक और ग्राहक उन्हीं कंपनियों को पसंद करते हैं जो पर्यावरण का ध्यान रखती हैं। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से।

0: दोस्तों, योग और व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। ये हमें स्वस्थ रहने, बॉडी फिटनेस और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आदर्श पांडे से जानेंगे योग के विषय में, जो जिला रीवा से हैं और योगा टीचर हैं।
1: नमस्कार, मेरा नाम योगी आदर्श पांडे है। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले का रहने वाला हूँ और मुझे लोग रीवा का रावर बॉय के नाम से भी जानते हैं। योग के क्षेत्र में मैंने 6 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं और मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, इंडिया ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड ऑफ बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है और 20 वर्षों से जो एशिया बुक की किताब आ रही है उसमें भी नाम दर्ज हुआ है और लिम्का के बुकों में भी मेरा नाम दर्ज। मैं एक सामान्य किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी दूध का छोटा सा व्यवसाय करते हैं। मेरी माताजी गृहिणी है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल अपने लिए सफल होना नहीं बल्कि योग के माध्यम से युवाओं को जागरूक करना और उन्हें स्वास्थ्य, अनुशासित एवं सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है। मेरा मानना है कि आज का युवा अगर योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो वह तनाव, नशे और नकारात्मक सोच से दूर रहकर अपने लक्ष्य की ओर बेहतर तरीके से बढ़ सकता है। मेरे जीवन की शुरुआत खेल से हुई है। मैं क्रिकेट खेलता था, अंडर 14, अंडर 16 तथा डिस्ट्रिक्ट डिवीजन तक खेला, लेकिन क्रिकेट में मुझे लगातार असफलताएं मिली। कभी 5 रन पर आउट होता था तो कभी खाता भी नहीं खोला पाता था। एक समय मुझे लगने लगा कि शायद मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा और क्रिकेट में मेरा करियर नहीं बन पाएगा। इसी कठिन दौर में मेरे बड़े भाई लकी पांडे मेरा प्रेरणा स्रोत बने। उन्होंने रीवा में योग की शुरुआत की थी। कॉलेज और टीम के माध्यम से खेलते हुए स्टेट, नेशनल स्तर तक पहुँचे और पदक भी हासिल किए। उन्हीं से को देखकर मेरे मन में योग के प्रति रुचि पैदा हुई। मेरे योग गुरु, मार्गदर्शक राजेश दंडोतिया डिजिटल SP जो अभी इंदौर में है और मुझे एक दिन समझाया कि अगर क्रिकेट में करियर नहीं बन पा रहा है तो योग को अपना जीवन बनाओ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी MPPSC की तैयारी में भी मदद करूँगा, लेकिन मैंने तय किया कि मुझे योग के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है। वहीं से मैंने क्रिकेट छोड़कर योग को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इसके बाद उज्जैन के शुभम शर्मा जी, जो मलखम के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे, उनके मार्गदर्शन में मैंने कठिन और उन्नत योगासन सीखने में शुरुआत किया। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता गया और योग मेरी पहचान बनता गया। योग के क्षेत्र में मुझे 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक भी प्राप्त हुए। मेरे जीवन में मेरे परम पूज्य स्वामी जगतगुरु विद्या भास्कर जी महाराज का आशीर्वाद भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें उनके आशीर्वाद, ऊर्जा और मार्गदर्शन का बहुत ही बड़ा योगदान है। मेरी कोशिश रहती है कि योग को केवल व्यायाम के रूप में नहीं बल्कि शरीर, मन

0: और आत्मा को जोड़ने वाली जीवन शैली के रूप में लोगों तक पहुंचाऊं। इसी उद्देश्य से मैंने सेवा को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाया। महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ के बीच मैंने निःशुल्क योग शिविर चलाकर लंबे समय तक लोगों को योग कराया। माघ मेले में भी निःशुल्क सेवा की। आज भी गांव-गांव जाकर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क योग सिखाने का प्रयास करता हूं। इसके साथ ही पुलिस विभाग, सामाजिक संस्थाओं, विभिन्न एनजीओ के माध्यम से निःशुल्क योग सेवा करता हूं। मेरा उद्देश्य है कि योग केवल बड़े शहरों, बड़े संस्थानों तक सीमित ना रहे, बल्कि गाँव के अंतिम व्यक्ति और हर युवा तक पहुँचे। मैं युवाओं को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, असफलता आपकी कहानी का अंत नहीं है। कभी कभी असफलता ही आपको उस रास्ते पर ले जाती है जहां आपकी असली पहचान आपका इंतजार कर रही होती है। मैंने क्रिकेट में असफलता देखी, लेकिन उसी असफलता ने मुझे योग की राह दिखाई। आज मेरी सुबह योग से शुरुआत होती है और मेरा सपना है कि हर युवा स्वस्थ हो, नशे से दूर हो, अनुशासित हो और अपने जीवन में योग को अपनाकर देश समाज के लिए कुछ अच्छा करे। योग मेरे लिए केवल आसन नहीं है, मेरा जीवन, मेरी साधना और मेरी सेवा। योग के क्षेत्र में मैंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। मैंने 3 नेशनल प्रतियोगिताओं में मैं खेल चुका हूँ। योगासन भारत के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मैंने 5वीं रैंक प्राप्त की। इसके साथ ही मुझे राज्य स्तर पर भी 2 स्वर्ण पदक, रजत पदक प्राप्त हुए। इन उपलब्धियों ने मुझे अधिक मेहनत करने तथा युवाओं को योग के प्रति करने के लिए ताकत दी।
1: दोस्तों, आप सुनते हैं ये गीत विशाल डडलानी की आवाज में मैरी कॉम फिल्म से।

दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे आज के विशेष स्तंभ जिसमें आज हम बात करेंगे एक प्रसिद्ध लोक गायन कलगीतुर्रा के बारे में। कलगीतुर्रा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के निमाड़ और मालवा क्षेत्रों साथ ही राजस्थान और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों का एक बेहद लोकप्रिय और प्रतिस्पर्धी लोक गायन शैली है। इसमें दो गायक दलों के बीच काव्य और संगीत के माध्यम से सवाल जवाब का सीधा मुकाबला होता है। ये गायन दो अलग अलग दार्शनिक पक्षों में बटा होता है। एक है कलगी दल, ये पक्ष माता पार्वती, और दूसरा तुर्रा दल, ये पक्ष भगवान शिव और ब्रह्मा को सर्वोच्च दर्शाने का प्रयास करता है। इसे ही दंगल या मुकाबले के रूप में आयोजित किया जाता है। मंच पर दोनों दलों के पास अपने गीतकार, गायक और चंग डफ जैसे पारंपरिक साजबाज होते हैं। एक दल संगीत के जरिए कविता में कोई दार्शनिक सवाल पूछता है और दूसरे दल को मौके पर ही उसका काव्यात्मक जवाब तैयार करके गाना होता है। शुरुआत में ये केवल शिव शक्ति के आध्यात्मिक संवाद तक सीमित था, लेकिन आज के समय में कलाकार इसके दायरे को बड़ा कर चुके हैं। इसमें महाभारत और रामायण के प्रसंग, पुराण और स्थानीय पौराणिक कथाएं, समसामयिक मुद्दे, सामाजिक बुराइयों और राजनीति को दर्शाया जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि चंदेरी के राजा के दरबार में संत तुकनगिरी तुर्रा पक्ष और फकीर शाह अली कलगी पक्ष के बीच एक जबरदस्त मुकाबला हुआ था। राजा ने खुश होकर एक को तुर्रा और दूसरे को कलगी यानी पगड़ी पर सजने वाले रत्न पंख भेंट किए, जिसके बाद से इस कला का नाम कलगी तुर्रा पड़ा। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvadiriva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपनी रेडियो दोस्त इशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना, इतनी भी क्या जल्दी थी।
4: अरे
3: और छोटी, ये तुम्हारे ना,
4: और ये
5: मेरी गुड़िया की ना।
3: पर दादी,
5: हाँ,
3: आपके नाम।

0: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो
2: क्या आरबीआई कहता है।
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
7: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा।

वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ थी मोहित चौहान की, गीतकार थे शाद कामिल और संगीत था प्रीतम का।

आई हेट लव स्टोरी सुम का गीत अभी आपने सुना, शफाकत अमानत अली सुनिधि चौहान के स्वर में। गीतकार थे विशाल ददलानी और संगीत था विशाल शेखर का।

रॉकस्टार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मोहित चौहान सुजैन टिमेलो के स्वर में। गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीत था ए आर रहमान का।

ये गीत था फिल्म बॉडीगार्ड से, जिसके लिए आवाज़ थी एश किंग क्लिंटन, और गीतकार थे शब्बीर अहमद, संगीत था हिमेश रेशमिया का।

0: ये गीत था फिल्म कॉकटेल से, जिसके लिए आवाज़ थी नीरज श्रीधर, कविता सेठ की, गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत था प्रीतम का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700-001-4242।
3: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
5: कृपया ध्यान दें, 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज पात्र लाभार्थियों और 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए। आज ही आयुष्मान ऐप से अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं या डायल करें 14555।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 137वां एपिसोड कल 30 अगस्त को प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम में श्री मोदी राष्ट्र निर्माण, युवा शक्ति, नवाचार, खेल और पर्यावरण जैसे विषयों पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज बालाघाट जिले के पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे ग्राम बोंदारी पहुंचकर ग्रामवासियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 100 गांवों के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए की घोषणा की। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत सरकार की ओर से चिंता जताने और सहायता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति पौडेल ने विनाशकारी बाढ़ में भारतीय नागरिकों की मौत पर भी शोक व्यक्त किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गोबरधन योजना के अंतर्गत बायोगैस के लिए

0: संशोधित मूल्य निर्धारण ढांचा इसके उत्पादकों को स्थिर और किफायती मूल्य प्रदान करने के लिए बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को स्नेह सौहार्द और सामाजिक समरसता के लोक पर्व भुजरिया की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर कहा कि यह पर्व हमारी समृद्ध लोक परंपराओं को प्रवाहमान बनाता है। और दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत अपना पहला मैच कल थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा, जबकि 3 सितंबर को हांगकांग और 5 सितंबर को पाकिस्तान से मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

0: श्रेया घोषाल मोहित चौहान के स्वर में अभी आपने जब तक है जहां इस फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे गुलजार, संगीत था AR रहमान का।
1: हलचल हुई, जरा शोर हुआ।

आजा नचले इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोनू निगम श्रेया घोषाल के स्वर में। गीतकार थे जयदीप सहनी, संगीत था सलीम सुलेमान का।

रमैया वस्तावैया इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अतीफ असलम श्रेया घोषाल के स्वर में। गीतकार थे प्रिया पांचाल और संगीत था सचिन जिगर का।

चेन्नई एक्सप्रेस, उस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, चिन्मयी श्री प्रदा गोपी सुंदर के स्वर में, और गीतकार थे अभिलाष अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत दिया था विशाल शेखर ने।

लुटेरा फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोनाली ठाकुर के स्वर में। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत था अमित त्रिवेदी का।

दिल वाले फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह अंतरा मित्रा के स्वर में। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत था प्रीतम का। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं एना कर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें, क्या पता कार्यक्रम सुनने के बाद आप हमसे अपने अनुभवों को या अपने प्रश्नों को साझा करना चाहें। तो श्रोताओं, हमारा नंबर है 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
2: एक बहन अपने भाई के लिए होती है कीमती उपहार, कभी कभी बच्चों की सी शरारत, कभी कभी माँ का जैसा प्यार। हमारी कामयाबी पर होती है हमसे ज्यादा खुश, पर नाकामयाबी के वक्त समेट

लेती है हमारे सारे दुख। उम्र भर की दोस्ती का बहनों से मिलता है वरदान, उम्र भर की दोस्ती का बहनों से मिलता है वरदान, बरसाती है अपने भाई पर प्यार, करती है गुमान। हर दिन करते हैं शुक्रिया अपनी बहनों को हम, हर दिन करते हैं शुक्रिया अपनी बहनों को हम, पास न होकर भी जिनका प्यार कभी नहीं होता कम। खुशकिस्मत हैं वो जिनकी बहनें करती हैं उन्हें हर पल याद, खुशकिस्मत हैं वो जिनकी बहनें करती हैं उन्हें हर पल याद। जिंदगी रहे खुशनुमा बस यही है हम भाइयों की फरियाद। जी हाँ दोस्तों, एक ही माता पिता से पैदा होने वाले भाई बहन का रिश्ता एकदम अनोखा होता है, बहुत ही खास होता है, अटूट होता है। बचपन में साथ साथ खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत सारी अच्छी बुरी घटनाओं के गवाह होते हैं भाई बहन। देखते ही देखते बहन की शादी का वक्त आ जाता है और बहन शादी करके नए घर चली जाती है। उसका नया घर बस जाता है, पर फिर भी उसका लगाव अपने मायके के लिए कभी भी कम नहीं होता। जी हाँ, उसकी खुशी ही उसके चेहरे पर दिखी जाती है और वापस मायके आना उसके लिए बड़ा आनंद का विषय होता है। मायके आकर वो सबके साथ आनंद करती है, पर भाई और बहन का मिलना, एक और बार फिर से साथ में होना एक अनोखा पल बन जाता है। भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना गया है। जी हाँ, भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना गया है। सही मायने में देखें तो भाई बहन से अच्छे दोस्त कोई और होते ही नहीं है। बचपन में एक बहन के लिए उसका भाई सबसे प्रिय होता है, उसके साथ ही बहन लड़ती भी है और झगड़ती भी है, खेलती भी है, गुस्सा भी होती है। जी हाँ, आज हम इसी रिश्ते के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि भाई बहन का रिश्ता सबसे प्यारा होता है और नोकझोंक वाला भी होता है, और थोड़ी बहुत नोकझोंक तो सारे रिश्तों में होती है, सारे भाई बहनों में होती है। क्योंकि भाई बहनों के लिए ये कहावत काफी प्रसिद्ध है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से नफरत भी करते हैं, एक दूसरे का मजाक भी बनाते हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल भी बैठा लेते हैं। जी हाँ, यही तो भाई बहन है। भाई बहनों की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को नकारा नहीं जा सकता, ये सब कुछ ये प्यार में करते हैं। पर दोस्तों, आज मैं इसी रिश्ते की गहराई के विषय में आपसे बात करना चाहती हूँ। आज अगर किसी से भी ये पूछा जाए कि उनके जीवन का सबसे प्यारा समय कौन सा था, कौन सा समय उन्हें हमेशा याद रहेगा, या कौन सा समय ऐसा था जो हमेशा उनके हृदय में रहेगा, तो ज्यादातर लोग यही जवाब देते हैं कि उनका बचपन। और अगर सबसे प्यारे रिश्ते के बारे में बात किया जाए तो सब लोगों का जवाब होता है भाई बहन का रिश्ता। जी हाँ, बचपन और बचपन में भाई बहन का रिश्ता हर किसी के लिए बहुत ही खास होता है। जहाँ एक तरफ भाई बहन का सुपर हीरो होता है और बहन भाई की जान होती है। पर दोस्तों, थोड़ा सा दुख होता है कि आज इस बदलते हुए वक्त में वो प्यार, वो भाई बहन का एक दूसरे से लगाव कहीं खोता जा रहा है। जी हाँ, आज इंसान स्वार्थी होता जा रहा है, रिश्तों से दूर होता जा रहा है, हम अपने अपने रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अपने अपने रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, अब इसी भाई बहन के रिश्ते को देख लीजिए। आज के समय में हमने भाई बहन के रिश्ते की परिभाषा ही बदल डाली है। जी हाँ, आज एक बार सोच के देखिए कि हमारा रिश्ता आज हमारी बहन से या हमारे भाई से कैसा है। क्या वो प्यार जो बचपन में था आज वो है, या वो हो गया है, या वो खोया हुआ प्यार फिर से वापस आ सकता है? जी हाँ, जो भाई बचपन में हमारे लिए पिता के समान था, जो बहन बचपन में हमारे लिए माँ के समान थी, आज भी वो हमारे लिए ऐसे ही है या नहीं, सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों, सोचिएगा जरूर।
कहते हैं कि कभी माँ बाप की याद आए

तो भाई बहन मिलकर बैठ जाना। कहते हैं कभी माँ बाप की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठ जाना, किसी के चेहरे में मुस्कुराती हुई माँ दिख जाएगी तो किसी के लहजे में पिता नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, पर अफसोस है कि बड़े होकर भाई बहन बहुत दूर हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, और इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक दूसरे से मिलने तक को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, एक 7 साल का बच्चा था जिसका नाम सीनू था। उसकी एक छोटी बहन थी, उसका नाम मीनू था, वो 4 साल की थी। दोनों भाई बहन घर से थोड़ा सा दूर कंचों के साथ खेल रहे थे। सीनू ने मीनू को थोड़ी देर के बाद कहा कि घर चलते हैं। बड़ा भाई होने की वजह से उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और घर की ओर चल दिए। और हुआ क्या कि मीनू जो कि सिर्फ 4 साल की थी, एक दुकान के पास आकर रुक गई और उसकी नजर एक गुड़िया पे पड़ी। मीनू ने बड़े प्यार से उस गुड़िया की तरफ देखा और वो लगातार उस गुड़िया की तरफ देख रही थी। तभी मीनू का भाई सीनू, उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ी और सीनू सीधे दुकानदार के पास चला गया और काउंटर पर जाकर दुकानदार से बोला कि ये गुड़िया कितने की है। दुकानदार ने कहा, पैसे हैं बेटा? और जैसे ही दुकानदार ने इतना कहा, सीनू ने अपनी जेब से सारे कंचे निकाल दिए और पैसों की नाई उस काउंटर पे उन कंचों को एक एक करके रखने लगा और देने लगा और बोला, अंकल ये लीजिए। और ऐसा कहकर सारे कंचे उस दुकानदार को दे दिए। तब दुकानदार उन कंचों को और उन दोनों भाई बहन को बड़े गौर से देख रहा था। तब दुकानदार सीनू का अपनी बहन के लिए प्रेम देखकर बोला, नहीं बेटा। तब दुकानदार उन कंचों को फिर से गौर से देखने लगा। तब सीनू ने दुकानदार से पूछा, अंकल पैसे कम है क्या? उन दोनों के प्यार को देखकर दुकानदार ने जवाब दिया, नहीं बेटा, उल्टा ये पैसे ज्यादा हैं। और ये बोलकर 3-4 कंचे रख लिए और बाकी सारे सीनू को लौटा दिए और वो गुड़िया उनको दे दी। और सीनू ने वो गुड़िया अपनी बहन को दे दी। तभी उसकी बहन खुशी से खिल उठी और सीनू अपनी बहन को लेकर घर की ओर चल पड़ा। तभी दुकानदार के यहाँ काम करने वाले एक लड़के ने दुकानदार से पूछा, मालिक आपने ऐसा क्यों किया? आपने इतनी महंगी गुड़िया ऐसे ही क्यों दे दी? तब दुकानदार ने ये जवाब दिया, ये गुड़िया मैंने एक भाई और बहन के प्यार को दी है। अभी उस बच्चे को नहीं पता कि पैसा क्या होता है और ये कंचे उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती हैं। उससे कीमती उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उन कंचों से भी ज्यादा कीमती उस बच्चे के लिए उसकी बहन का प्यार था। इस प्यार की वजह से उसने अपनी कीमती चीज कंचे मुझे दे दिए। तब दुकानदार बोला, रुपये पैसे सब कुछ नहीं होते, इन सब के ऊपर एक और चीज है, वो है प्यार और रिश्ते। और तुमने देखा ना कि उस गुड़िया को जब उसने अपनी बहन को दिया, उसकी बहन के चेहरे की खुशी और उस भाई के आंखों की चमक देखने लायक थी। कहते हैं ना, खुशकिस्मत होती हैं वो बहनें जिनके सर पर भाई का हाथ होता है। खुशकिस्मत होती हैं वो बहनें जिनके सर पर भाई का हाथ होता है। जिंदगी की हर परेशानी में भाई का साथ होता है। लड़ना झगड़ना और फिर मना लेना, तभी तो रिश्ते में प्यार होता है।

जी हाँ दोस्तों, शायद आपको भी आज अपने भाई की, अपनी बहन की याद आ रही होगी। शायद आप जब इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपको भी अपने भाई का या अपनी बहन का चेहरा आपकी आंखों पे आ रहा होगा। तो देर किस बात की, आज फिर से वापस ले आइए वो प्यार, वो दोस्ती अपने रिश्ते में। पर दोस्तों, आज एक और जरूरी बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर सिर्फ हम अपनी बहन को ही अपनी बहन समझें तो भी गलत है। जी हाँ, अगर हम सिर्फ अपनी बहन को ही बहन समझें तो गलत है। आज के समय में जैसे हम चाहते हैं कि हमारी बहन सुरक्षित रहे, खुश रहे, तो हमें

0: सारी बहनों के लिए ऐसा ही सोचना चाहिए। और वो कैसे होगा? अपने देश की हर बेटी को सम्मान देकर, प्यार देकर, इज्जत देकर। जी हाँ, जैसे हम अपनी बहन की इज्जत करते हैं, उसे प्यार करते हैं, ठीक वैसे ही देश की हर बेटी को अपनी बहन की तरह हमें प्यार करना, इज्जत देनी है। दोस्तों, किसी ने इस प्रकार कहा है कि जिस दिन हमारे सामने दूसरे की बहन खुद को महफूज महसूस करेगी, जी हाँ, गौर से सुनिएगा कि जिस दिन हमारे सामने दूसरे की बहन खुद को महफूज महसूस करेगी, उस दिन सोच लेना कि हमारी खुद की बहन भी सुरक्षित हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आप सबके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भाई बहन का रिश्ता बहुत निराला होता है, बाकी सारे रिश्तों से बहुत प्यारा होता है। भाई खुद को मुसीबत में फंसाता है, बहन उसको हर मुसीबत से बचाती है। भाई बहन को खूब रुलाता है और बहन भाई को हर बार याद दिलाती है। भाई अगर झूठ बोलता है तो बहन उसका साथ देती है और बदले में कुछ ना कुछ उससे ले लेती है। बहन के चेहरे की उदासी देख भाई उसे हंसाता है, उसकी हर परेशानी का भाई हल ढूंढ ले ही आता है। बहन की आंखों में आंसू देखकर भाई भी चुप हो जाता है। ये भाई बहन का ही प्यार है दोस्तों, जो उनको एक दूसरे के पास खींच ही लाता है। दोस्तों, इस रक्षाबंधन में मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे भाई बहन एक दूसरे के साथ फिर से उस बचपन को बांटेंगे। जी हाँ, वो प्यार, वो दोस्ती फिर से बांटेंगे। तो सारे भाइयों को उनकी बहनों का प्यार मुबारक हो और सारी बहनों को उनके भाई का प्यार मुबारक हो।
1: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और श्रोताओं, अब ये समय है कि आप अपने प्रश्नों को या फिर आज की कहानी से संबंधित अनुभवों को हमसे साझा करें। तो वक्त जाया ना करें, अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 8860088827। जी हाँ, 8860088827। और हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति, आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

सोनू निगम अनुराधा पौडवाल के स्वर में अभी आपने हम तुम्हारे हैं सनम इस फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे प्रवीण भारद्वाज और संगीत था डब्बू मलिक का।

अलका याग्निक, उदित नारायण के स्वर में अभी आपने दिल है तुम्हारा इस फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे समीर, संगीत था नदीम श्रवण का। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़े ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो वही गीत है जाके हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजा था थे, और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में सुनवाऊ थी।
1: हाँ खूब ही सही चीज ना तुमने, जो वही लोक गीत है। और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
0: काय ऐसो का होगा जिज्जी?
1: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सब ही सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
0: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
1: अरे चिट्ठी विट्ठी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
0: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर का है?
1: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9425702768। तो याद भाओ कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
0: 9425702768।
1: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
0: तो सुनना न भूलें हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768।
3: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी
4: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
5: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर ताशकंद पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायेव ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यता का जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री मिर्जियायेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापरोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ा

0: बढ़ाने और SCO के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक है। नेपाल में आए भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। मंत्रालय ने कहा कि शवों की पहचान के लिए DNA नमूनों के विश्लेषण में सहायता हेतु भारत से 6 फॉरेंसिक विशेषज्ञ दल आज काठमांडू पहुंचने वाला है। सुरंग बचाव के लिए एक विशेष तकनीकी दल कल काठमांडू पहुंचा। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत के तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
1: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक से सुधार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेल स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और अब समय है कार्यक्रम विवरण का। तो पहले आपको बता दें इस सभा के शेष कार्यक्रम। रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। रात 9:30 पर सुनिए युवा भारती, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे सुनिए संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में डॉक्टर मंडपाका शारदा से कर्नाटक वोकल गायन, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे 7:30 पर। और अब आपको बता दें कल सुबह की सभा के कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 7:20 पर होगा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, 8:30 पर होगा कार्यक्रम सुरमई सवेरा, 9:15 पर होगा लोक संगीत का कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे बघेली गीत शीला त्रिपाठी से, 9:30 पर होगा सिंधिया जीत सुरहा। दस बजे सुनिए जिले की चिट्ठी, 10:05 पर होगा सामुदायिक गान शिक्षण पांच, 10:30 पर होगा फिल्म संगीत। और दिन में आप 11 बजे से सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और इसी समय आप सुनेंगे हमारा महत्वपूर्ण प्रसारण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे दिन में 11 बजे से। बारह बजे सुनिए कल दोपहर कार्यक्रम आपकी फरमाइश, 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से, इस कार्यक्रम में धारावाहिक जमुनिया की 12वीं कड़ी। दोपहर 1 बजे सुनिए महिला कार्यक्रम, 1:30 पर होगा लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान होगा।

दो बजे सुनिए फिल्म संगीत, 2:30 पर होगा बच्चों का कार्यक्रम, जिसे हम ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान होगा। हमारी सांध्यकालीन सभा में 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी, ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान होगा।

और कल शाम की सभा में आप सुनेंगे 7:30 पर महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला?

0: मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मिराना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, नक्सल प्रभावित रहे गांवों में विकास सर्वोच्च प्राथमिकता। अगले महीने की 8 तारीख से विदिशा में कैंसर मरीजों के लिए चिकित्सा महाविद्यालय में शुरू होगा डे केयर सेंटर। और प्रदेश के सभी जिलों में जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आज आयोजित किए गए विशेष शिविर, मौके पर सुलझाई गई समस्याएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 137वां एपिसोड कल 30 अगस्त को प्रसारित होगा। यह कार्यक्रम हमेशा की तरह सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आमतौर पर राष्ट्र निर्माण, युवा शक्ति, नवाचार, खेल और पर्यावरण जैसे विषयों पर बात करते हैं। वह देश के कोने कोने में समाज सेवा कर रहे गुमनाम नायकों के प्रेरणादायक विचारों को भी देश के सामने रखते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बालाघाट जिले के पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे ग्राम बोंदारी पहुंचकर ग्रामवासियों से संवाद किया और क्षेत्र के विकास तथा ग्रामीणों की आवश्यकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से चर्चा के दौरान पशुपालन को बढ़ावा देने, आवास सुविधा, पोषण आहार के उपयोग की आदत विकसित करने के लिए जन जागरूकता अभियान, वन विभाग के सहयोग, चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन सभी सुविधाओं को क्षेत्र में बेहतर ढंग से स्थापित करने और शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बालाघाट जिले के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से 225 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। इन कार्यों के माध्यम से क्षेत्र में सामाजिक एवं मूलभूत अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा।
1: हमारा सबका संकल्प है, खासकर की सरकार के नाते से मैं बता सकता हूँ, हमारी सरकार का कि नक्सल मुक्त बालाघाट हमारी उपलब्धि है, लेकिन अब अपनी अगली उपलब्धि समृद्ध और आत्मनिर्भर बालाघाट बने। हमारा संकल्प है हर गांव में विकास, हर युवाओं को अवसर, हर परिवार की आय में वृद्धि, हर समाज को सम्मान। इसलिए सुरक्षित बालाघाट से समृद्ध बालाघाट और नक्सल से विकास की अवरुद्ध हुई धारा को नई दिशा देकर के समृद्धि की तरफ ले जाएंगे।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नए भारत में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि देश अब केवल वैश्विक नियमों का अनुसरण नहीं कर रहा है, बल्कि नियम बनाने में भी योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भाषा, संस्कृति और सभ्यता में राष्ट्रीय गौरव किसी राष्ट्र की आत्मनिर्भरता और प्रगति को बढ़ाता है।
2: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का यह परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गोबरधन योजना के अंतर्गत बायोगैस के लिए संशोधित मूल्य निर्धारण ढांचा इसके उत्पादकों को स्थिर और किफायती मूल्य प्रदान करने के लिए बनाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि उपभोक्ताओं को सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतों में कोई खास वृद्धि न वहन करनी पड़े। हाल ही में एक समाचार पत्र में प्रकाशित

0: आलेख के अनुसार गोबरधन योजना के अंतर्गत बायोगैस संशोधित कीमत सीएनजी और घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती है। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह निष्कर्ष सही तथ्य पेश नहीं करता। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगले महीने की 8 तारीख से विदिशा में कैंसर मरीजों की सुविधा के लिए डे केयर सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री और स्थानीय सांसद शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा में कहा कि 8 सितंबर का दिन विदिशा के लोगों के लिए बहुत विशेष दिन रहेगा। इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों के लिए डे केयर सेंटर का शुभारंभ होगा। श्री चौहान ने आज इसी की तैयारियों की समीक्षा की।
2: 8 सितंबर का दिन कैंसर के पेशेंट्स के लिए डे केयर सेंटर का शुभारंभ यहां होगा और हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी 8 सितंबर को यहां स्वयं पधारेंगे। उनके साथ श्री राजेंद्र शुक्ला जी जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो भी यहां आएंगे कि मेडिकल कॉलेज विदिशा और एम्स भोपाल के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU सम्पन्न होगा, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे।
0: प्रदेश में जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले विशेष शिविर आज आयोजित किए गए। जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया है कि अभियान के तहत आज लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कैंट विधानसभा क्षेत्र के रांची में करीब 2 घंटे तक विभिन्न शासकीय संस्थानों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी जानी। रायसेन के गैरतगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत देवनगर में जनसंवाद एवं शिविर का आयोजन किया गया। बैतूल के आठनेर में क्लस्टर स्तरीय जन विश्वास शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े ने ग्रामीणों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निराकरण कराया। मुरैना के बानमौर में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। देवास जिले में भी सुशासन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उधर खंडवा में भी कलेक्टर शणव गुप्ता की अगुवाई में शिविर आयोजित किए गए। आगरमालवा में जन विश्वास अभियान के तहत निरीक्षण के दौरान एक निजी क्लिनिक सील किया गया। शिवपुरी दमोह झाबुआ सीहोर में भी जन विश्वास शिविर आयोजित किए गए। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिन बारिश का सिलसिला बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज रीवा, सीधी, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल में रिमझिम बारिश के आसार हैं, जबकि इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभाग में तेज बारिश की संभावना कम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को स्नेह सौहार्द और सामाजिक समरसता के लोक पर्व भुजरिया की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर कहा कि भुजरिया पर्व हमारी समृद्ध लोक परंपराओं को प्रवाहमान बनाता है। उधर नर्मदापुरम जिले की पिपरिया में आज रक्षाबंधन और भुजरिया पर्व आयोजित किया गया। इसमें 1500 से अधिक महिलाएं पहुंची और सांसद दर्शन सिंह चौधरी को राखी बांधी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डीजे मोहंती ने जन समुदाय से बरसात के मौसम में संक्रामक एवं जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। एम्स भोपाल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उपचार, जांच, डिजिटल सेवाओं और मरीजों की सुविधा से जुड़ी कई नई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा।

0: करो।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420-2233 पर कॉल करें।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420-2233 पर कॉल करें।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: बुंदेली समाचार।
1: लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी सुनवे बारे हमारे सभी श्रोता भैया बहनों को पहुंच जावे अंशु तिलेठे की नेह और इस नेह भरी राम राम। भैया हरो, किसान वाणी कार्यक्रम में आपुरन को खूब ही खूब स्वागत है। आज हम एक 9 अंक आपुरन के लाने लेके आए हैं किसान वाणी को। भैया हरो, जब बात आपुरे हम सभी अच्छे से जानत है कि हमारी भारत सरकार नित नई योजनाएं देशवासियों के समृद्धि के लाने उनके हितन के लाने लात है, चाहे वह खेती किसानी की हो चाहे वह हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कायना होए। सो उन्हीं में से आज हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। जहाँ PMJAY योजना जी आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, जहाँ भारत सरकार की एक बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ई योजना के तहत पात्र गरीब परिवार को हर साल अस्पताल में इलाज के लाने 5 लाख रुपया को मुफ्त या कैशलेस खर्चा मिलत है। ई योजना की कछु मुख्य बातें हम आपरन के संगे साझा करन चाहते हैं। भैया प्रति परिवार हर साल 5 लाख रुपया तक की कवर राशि माने 5 लाख रुपया तक को इलाज आप ई योजना के माध्यम से फ्री करा सकते हैं एक साल में। कोनो भी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालन में पैसा नहीं देने पड़त है ई योजना के माध्यम से। और परिवार कितो ही बड़ो काय ना होए, परिवार के सदस्यन की संख्या चाहे कितना ही काय ना होए, सभी को ई योजना को फायदा मिलत है। अस्पताल में भर्ती होवे को खर्चा, जांचें और दवाइयां सभी ई योजना के अंतर्गत शामिल हैं। जा योजना देश के गरीब और कमजोर परिवार के लाने हैं। ई योजना को लाभ पावे के लाने आपको नाम, सामाजिक, आर्थिक, जाति, जनगणना SECC सूची में होबो जरूरी है। आप अपनो नाम ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी जन सेवा केंद्र CSC पे जाके जांच कर सकते हैं। जा तो भैया हमने बात करी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, इको लाभ लो और स्वयं को स्वस्थ बनाओ। कार्यक्रम में आगे बढ़त है और आप सभी के मनोरंजन के लाने हम लेके आए हैं जा कजरी जी गांव है बलराम रायकवार ने।

0: भैया हरो, अबे आपने जब मधुर सी कजरी सुनी कार्यक्रम में आगे बढ़त हैं। और जैसे कि आप औरन जानत हो कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप औरन तक नित नई जानकारियां पहुंचाऊत हैं, सो ओई सिलसिला को आगे बढ़ात भय। आज हम आपके लाने स्थल रिकॉर्डिंग लेके आए हैं कृषि में नवाचार विषय पे युवा किसानों और स्टार्टअप संचालकों से स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित जब बातचीत। इमे हमें रिकॉर्डिंग सहयोग करो है पूनम सरावगी बहन ने।
1: खेती में नवाचार आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। बदलते मौसम, बढ़ती लागत और घटते जल स्तर के बीच पारंपरिक तरीकों से गुजारा करना मुश्किल हो गया है। नवाचार से किसान कम संसाधनों में अधिक उत्पादन ले सकता है। यही नवाचार किसान को घाटे की खेती से निकालकर लाभ की खेती की ओर ले जाता है। विगत दिनों हमने बात की भोपाल में जमा हुए स्टार्टअप से मुनाफा कमा रहे किसानों और एक्सपर्ट्स के साथ। प्रस्तुत हैं इसी बातचीत के कुछ संपादित अंश। नवाचार अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ाकर दूसरों को भी ट्रेनिंग दे रहे अशोकनगर से आए किसान राजपाल सिंह नरवरिया ने हमें बताया कि किस तरह से इन्होंने हार्वेस्टर में इनोवेशन के साथ ही मशीनरी में भी कई तरह के नवाचार किए हैं।
2: मैं किसान और इनोवेटर हूँ। मैंने कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए कुछ मशीनरी ईजाद की है, जिसमें मुख्य रूप से कंबाइन हार्वेस्टर है जो फसल कटाई के साथ साथ भूसा भी बनाता है, और उसको 5-in-1 किया। उससे कृषि से संबंधित हम अन्य काम भी कर सकते हैं, जैसे फसल कटाई, थ्रेसिंग, भूसा बनाना, सिंगल थ्रेसर, पशुओं के लिए कुट्टी, अनाज की सफाई। और इसके साथ एक हाईटेक्री पर बनाया है जो फसल कटाई के साथ साथ उसका ढेरी भी बनाता है, और जो 10-15% दाने झड़ते हैं उसको भी कलेक्ट करता है, जिससे किसान को अतिरिक्त लाभ होता है
3: जी।
2: और इसके साथ हमने एक गोबर के पॉट बनाने के लिए, इको फ्रेंडली पॉट बनाने के लिए एक मशीन ईजाद की है। तो उस गोबर के हम पॉट बनाते हैं, उससे पॉलीथिन मुक्त नर्सरी तैयार करते हैं, और जब पौधा बड़ा हो जाता है तो हम पॉट साइज जमीन में रोप देते हैं
3: जी।
2: तो एक पौधा बचता है, माने पौधे के लिए खाद मिलता है और पॉलीथिन बचती है, पर्यावरण के लिए भी लाभ होता है, और इसके साथ साथ गौ संरक्षण का भी इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है। उसके बाद मेरे और भी कृषि नवाचार है। एक मैंने ग्रेडर बनाया है, अनाज सफाई के लिए ग्रेडर है
3: जी।
2: वो 2-in-1 है। अभी तक जो एक तो महंगे होते थे ग्रेडर, इसके साथ उसका सिर्फ एक ही यूज होता है, अनाज की सफाई। जब हमारा ऑफ सीजन होता है तो हम पशुओं के लिए 2 से 5 सेकंड में अलग करके और उसके कूलर के रूम में पशुओं के लिए डेयरी फैन के रूम में यूज कर सकते हैं। तो ये है किसानों के लिए इससे काफी फायदा होते, पशुपालकों के लिए भी फायदा है, और अनाज साफ होने से मंडियों में अच्छा दाम मिलता है किसान को। इसके साथ मेरे कचड़ा पिकर है, जो महिलाएं आजकल गांव में कोई हाथ से गोबर और गंदगी उठाना नहीं चाहता, तो उसमें एक लीवर दिया है, जैसे हमारा वो होता है कचरा गोबर जो भी गंदगी, उसको हम हाथ से नहीं छूना पड़ता और उठा के हम अलग कर सकते
3: जी।
2: तो इसको हम पंचायतों में या जो महिलाओं के लिए हम उसको उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ मेरा एक वो है धान की खेत तैयार करने के लिए, धान बोने से पहले खेत को मचाना पड़ता है, गीला करना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा यंत्र है, और उससे क्या होता है खेत तैयार करने में 40% समय और डीजल की बचत होती है, वो ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ता, किसान को परेशान नहीं होना पड़ता, वो काफी कारगर साबित हो रहा है किसानों के लिए। रिस्पॉन्स अच्छा, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है। इसके लिए मुझे अभी तक मेरे नाम से 4 पेटेंट हैं भारत सरकार द्वारा 20-20 वर्ष के लिए, और जो मेरा कंबाइन हार्वेस्टर है उसे भारत के 25 ग्रामीण प्रभावशाली आविष्कारों की सूची में स्थान मिला है, और इसके लिए कृषि मंत्रालय ने एक किताब भी लिखी है, 10-12 जो नेशनल लेवल की मैगजीन, उसमें सफलता की कहानी प्रकाशित हुई है। और इसके साथ ही मुझे अभी तक पूरे देश भर से 100 से अधिक पुरस्कार अवार्ड मिले, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति भवन से नवाचारी इनोवेटर का वो अवार्ड मिला, और इसके साथ साथ जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड मिला, इनोवेटिव फार्मर अवार्ड ICR का। ऐसे करके मुझे फार्मर फेलो, बहुत सारी जो कृषि यूनिवर्सिटी उन्हें भी सम्मानित किया
3: जी।
2: थोड़ा समझाने पड़ता है, नई चीज है तो पहले पता नहीं होता, जब उसका तारीफ देखते ना तो किसानों को स्वतः समझ में आता है।
1: हरदा से आए युवा किसान अमन अग्रवाल चिया मुरिंगा की खेती करने का प्रयास कर डाइवर्सिफाइड खेती कर भारी मुनाफा कमा रहे हैं।
4: मैं किसान का ही बेटा हूँ, मेरी 11वीं-12वीं की पढ़ाई भी एग्रीकल्चर में ही रही, उसके बाद BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, और अभी MBA भी मेरा एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन में है। तो मेरे पूरे 17 राज्यों की मैंने ट्रेवल किया और खेती किसानी सीखी। इसके अलावा मैं स्विट्जरलैंड, इटली भी रहा कुछ समय अलग अलग संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों के माध्यम से। तो अभी हम लोग चिया की खेती, मोरिंगा की खेती, थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड खेती करने का प्रयास हमने किया है अपने, जैसे कि हमें कहीं ना कहीं खेती में नुकसान दिखता लगता था कि एकदम से बारिश आ गई या कई सारी ऐसी चीजें हो गई तो नुकसान होता था। तो हमने सोचा कि एक डाइवर्सिफाइड खेती, जो भी मैंने इतने सारा ट्रैवल किया और किसानों से, साइंटिस्ट से, प्रोफेसरों से सीखा, तो हमें चिया की खेती, जैसे गेहूं में हमें 40 से 50 हजार रुपए एकड़ की आमदनी हो रही थी, चिया से हमें 80 से 90 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक की। अभी हमने 17 हजार रुपए क्विंटल में अपना चिया बेचा है 5 एकड़ का। तो इस तरह से जब हम डाइवर्सिफाइड खेती करते हैं, उस साल भी ओलावृष्टि हुई थी, हमारी 6 फसलें थी हमारे पूरे खेत पे, तो उसमें से 4 फसलों ने अच्छा परफॉर्म किया, 2 फसलों पर नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं हम लोग नुकसान में नहीं गए उस कारण। जैसे कि पहले हमें नीमच बेचना पड़ता था, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जो औषधि फसलों और इस तरह में, अभी खातेगांव भी नोटिफाई हुआ, तो अभी मेरा निवेदन भी माननीय मंत्री जी से यही था कि अगर इस तरह की और मंडियां होंगी और डाइवर्सिफाइड खेती होगी तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें डाइवर्सिफाइड खेती से और आमदनी कमा पाएंगे, फूड प्रोसेसिंग से कमा पाएंगे। तो चिया ही नहीं, और भी जैसे मोरिंगा है, अश्वगंधा है, अकरकरा है, या फिर फ्रूट क्रॉप से हॉर्टिकल्चर है, तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं अपने खेत पर, छोटे छोटे प्लॉट्स पर, और ये डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। इससे हमें कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट करने को मिलता है। हम युवा किसानों को यही संदेश है कि अभी हमें एनर्जी है, आप ट्रैवल कीजिए, बहुत सारी जगहों पे जाइए, अलग अलग किसानों से सीखिए। जैसे अभी मैं सीमैप लखनऊ गया था, इस तरह से कई सारे रिसर्च सेंटर है वहाँ पे युवा किसान नहीं जा रहे हैं, तो आप अलग अलग रिसर्च स्टेशन, अच्छे किसानों से मिलिए और खेती सीखिए और करिए।
1: भोपाल के हर्षित गोदा ने इंडो इजराइल एवोकाडो की व्यवसायिक खेती शुरू की। पिंगटन ओलम्बस जैसी गर्मी सहन करने वाली किस्मों की सफलता पूर्वक खेती करते हैं।
3: नमस्कार सभी को, मैं भोपाल में इसराइल की तकनीक से एवोकाडो की खेती कर रहा हूँ। मैंने इसका काम 2017 में इसराइल से सीखा था, इसका काम मैंने फिर 2021 में भोपाल में शुरू किया था। 5 साल अभी एवोकाडो इंडस्ट्री में काम करते हुए हो गया है। हाल ही में मैंने अभी एक इसराइल की सबसे बड़ी एवोकाडो एक्सपोर्टिंग कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर साइन किया है और मैं अब उस कंपनी का CEO हूँ। और हम लोग जॉइंट में, मेरे जितने भी नेटवर्क के किसान हैं जिनको मैंने एवोकाडो के पौधे प्रोवाइड किए हैं, उनसे हम फ्रूट बायबैक करके इंडिया में अंडर कॉमन ब्रांड उसको सेल करेंगे। मैं पिछले 5 साल से 4 साल से करीबन 1 करोड़ रुपए टर्नओवर सालाना कर रहा हूँ। मेरे फार्म पे यूजुअली कस्टमर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। मैंने एक कोर्सेज की अपनी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें एवोकाडो से रिलेटेड आप कोर्सेज पढ़ सकते हैं, मेरे स्टडी कर सकते हैं, फील्ड पे एवोकाडो लगा सकते हैं। मैंने करीबन 18 राज्यों में 17-18 हजार प्लांट सप्लाई कर चुका हूँ अभी तक के। एवोकाडो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में एप्पल जो फ्रूट है वैसी इंडस्ट्री बन जाएगा अगले 20 सालों में। एवोकाडो लगाइए, हमसे प्लांट्स लीजिए, हमारी नर्सरी विजिट कीजिए।
1: प्रदेश के गुना में गुलाब की खेती का नवाचार कर रहे किसान यशवर्धन भार्गव ने भी हमसे अपने विचार साझा किए।
5: मैं गुलाब की खेती और ऑर्गेनिक खेती पे काम कर रहा हूँ। गुलाब की खेती एक अभी नया नवाचार है। अभी जो हमारे इधर ट्रेडिशनल खेती होती थी उससे हटके जो किसान सोचता था कि 1 बीघा या 1 एकड़ में जो उत्पादन उसको नहीं मिल पाता था, लेकिन अगर वो अपनी खेती को शिफ्ट करेगा और इन नवाचारों की तरफ जाएगा तो ऐसी गुलाब की खेती हो गई और विभिन्न प्रकार के जो एक्सोटिक फ्रूट्स हैं उनकी खेती में उसको ज्यादा लाभ हो रहा है। तो जो उत्पादन 1 बीघा जमीन में अन्य किसी फसल से हो सकता है उससे कई गुना ज्यादा उत्पादन और मुनाफा गुलाब जैसी खेती से किसान को हो सकता है। इसमें मार्जिन जो है वो 60 से 70% तक मार्जिन इसके अंदर है। इसमें डच रोज हम लोग उगा रहे हैं, ब्लैक रोज की खेती हम लोग कर रहे हैं, ये 2 रोज और एक जरवेरा की भी अभी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ये 3 तरह के फूलों की खेती हम अभी कर रहे हैं। हमने गुलाब की खेती 2022 में शुरू कर दी थी। गुना जिले को अभी केंद्र सरकार द्वारा गुलाब की खेती के लिए स्कॉच अवार्ड भी दिया गया है। गुलाब की मांग भारत से ज्यादा दूसरे देशों में है। अभी जो हमारे गुना से गुलाब एक्सपोर्ट होता है वो हम यहाँ से जयपुर भेज रहे हैं और जयपुर से लॉजिस्टिक्स के थ्रू वो पूरे UAE, दुबई और कुवैत एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ, नई नई वैरायटीज अब इसमें काम चल रहा है। हम तो एक टिश्यू कल्चर लैब से हमारी चर्चा हुई है, तो वहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं कि और नई नई जो प्रजातियां गुलाब की हैं उसको हम मार्केट में लाएं। तो जैसा जैसा डिमांड रहता है उस हिसाब से फिर हम चीजों को ग्रो करते हैं। जैसे अभी जो हम किस्म गुलाब की कर रहे हैं वो 15 से 20 दिन तक अगर उसको आप ठंडे टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो खराब नहीं होता है, और एवरेज नॉर्मली 7 से 8 दिन तक वो खराब नहीं होता है। तो हम जैसे यहाँ से अगर उसको जयपुर भेज रहे हैं सपोज कीजिए, तो 1 दिन में वो जयपुर पहुंच जाता है और अगले दिन जयपुर से वो कुवैत, दुबई, अन्य मिडिल ईस्ट के देशों में वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। हम पॉली हाउस में बेड्स बना के और ड्रिप इरिगेशन के थ्रू उसमें हम गुलाब कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा एक हमारी वहाँ पे गौशाला है, तो वहाँ से जो हमारा गोबर का खाद वहाँ पे मिलता है वो मैन्योर के द्वारा हम वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती और सस्टेनेबल खेती हम वहाँ पे कर रहे हैं। मैं गुलाब किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा युवा आज की तारीख में नौकरियों की तरफ दौड़ रहा है, कॉरपोरेट जगत की तरफ दौड़ रहा है और अपनी घर की खेती छोड़ के यह सोच के कि इसमें कोई लाभ नहीं है, तो हमारा जो कल्चर है वो एक्चुअल में एग्रीकल्चर है और हम उसको अगर छोड़ देंगे और हमारी नींव अगर टूट जाएगी तो हमारे देश में जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं वो कर नहीं पाएंगे। और जो युवा को लाभ नौकरी रह के कॉरपोरेट लेबर बनने में, उससे ज्यादा लाभ मालिक बन के आप खुद की खेती करें और उसमें आप नए नए नवाचार लाएं तो आपको में बहुत ज्यादा लाभ यहाँ पे मिलेगा।
1: एग्री स्टूडेंट एंड एग्रीप्रोन्योर अभी हरनी और मशरूम का उत्पादन करते हैं और इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं।
6: जो मॉडर्न एग्रीकल्चर जो चल रहा

0: है हाइड्रोपोनिक वर्टिकल फार्मिंग, उसको एक प्लेटफॉर्म पे उतारने की कोशिश करी है जिससे नए जो बच्चे हैं, नए जो युवा हैं जो कृषि के आधारित पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, या जो किसान हैं जो सीमित जानकारी के अभाव में बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं, जैसे गेंदे की जो रोपाई है या मधुमक्खी पालन में जो आने वाले चैलेंजेस हैं जो मैंने फेस करे हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा फेस नहीं करे। इसके लिए मैंने एक ट्रेनिंग सेंटर कृषि स्किल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से इंदौर में ओपन किया है, जिसका मेन विज़न जो टेक्नोलॉजी है उसको आसान भाषा में किसानों और युवाओं को समझा सकूं और उनसे उस माध्यम से जो आधुनिक कृषि हो रही है वो खेती करवा सकूं, ये मेरा विजन है। मैंने अपनी बीएससी एग्रीकल्चर की जर्नी के साथ साथ मधुमक्खी पालन का व्यवसाय चालू करा, जिसमें स्टार्टिंग से ही मैंने पॉलिनेशंस में अभी 18 वैरायटी का हनी हार्वेस्ट करता हूँ जो राजस्थान, गुजरात और एमपी के जिलों से निकाला जाता है। एमपी में प्रतापगढ़ जो अजवाइन का बेल्ट रहा है वहाँ से मैं अजवाइन की खेती का शहद लेता हूँ। तुलसी का शहद मैं जो सावरिया सेठ हमारे यहाँ पे है राजस्थान में वहाँ से लेता हूँ, भदेसर से। तो वहाँ से डाइवर्सिटी का फ्लोरा है जब मैंने देखा तो एक अपॉर्चुनिटी मिली जिससे मैंने बीकीपिंग की शुरुआत करी। साथ में मैंने ऑब्जर्व किया कि मशरूम फार्मिंग आज एक इंडोर प्लेटफॉर्म बन सकता है कुछ ऐसे लोगों के लिए जो कुछ साइड बिजनेस करना चाह रहे हैं आज की तारीख। मैंने मेरी शुरुआत में 5 बक्सों से मधुमक्खी पालन की शुरुआत करी थी। शुरुआत में तो बहुत सारे फेजेस मैंने फॉलो करे जिसमें मेरे को नुकसान भी बहुत हुआ, और मैंने जो पहला जो मेरा है हनी से इनकम नहीं किया, मेरा पहला इनकम मेरा पोलन से था, पोलन और प्लस मैं पोलिनेशन के लिए बॉक्सेस देता था। जैसे बागवानी फसलों में मधुमक्खी का एक अलग ही इंपॉर्टेंस, अगर उसमें पोलिनेशन प्रॉपर नहीं होता है तो उससे लॉसेस होते हैं। तो मैंने फार्मर्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी जिसमें बी कीपिंग के जो बॉक्सेस थे वो मैंने उनको रेंटल पे दिए, और मैंने पहली इनकम मेरी हनी से हार्वेस्ट नहीं करी, मैंने पॉलिनेशन से 70% इनकम हार्वेस्ट करी और 70,000 रुपए की नेट इनकम पहले राउंड में कमाई। आज मेरा मधुमक्खी पालन जो 5 बक्सों से चालू होकर 300 बक्सेस पे चले गया और 3 राज्यों में मैं अभी मधुमक्खी पालन ही कर रहा हूँ, जिससे 18 वैरायटी के हनी हार्वेस्ट हो रहे हैं। अभी मेरे को ओनली ऑन हनी से कम 20 लाख के समथिंग का प्रॉफिट हुआ है, जिसको मैंने यूटिलाइज करा और मैंने मशरूम फार्मिंग में मेरी खुद की लैब डाली है। जो मेरा एक ड्रीम था कि मैं मशरूम का एक सीड बनाऊं, जिसके लिए मैं शिमला सोलन में जो DIMR रिसर्च सेंटर है वहाँ पे तक गया और वहाँ से चीजें सीखने के बाद इम्प्लीमेंट की, और आज मैं मशरूम की सक्सेसफुल खेती कर रहा हूँ, साथ में उनका माल भी खरीद रहा हूँ और ट्रेड भी कर रहा हूँ। तो आप भी मेरे जैसे युवा हैं तो आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आके सीख सकते हैं मेरे साथ सीख के, क्योंकि मैंने भी जो शुरुआत करी थी बहुत छोटे से करी थी।
1: IITN अरविंद पाटीदार ने भी हमसे प्याज के भंडारण से जुड़ी समस्याओं के समाधान साझा किए।
2: मैंने अपने स्टार्टअप की बुनियादी जो नींव है वो रखी थी, जिसमें मैंने ऑनियन स्टोरेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है फार्मर को उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया था, जिसमें आर्टिफिशियल नोच अपनी नोच की तरह काम करती, जो फार्मर को 15 से 20 दिन पहले अपना जो स्पॉयलेज होता है उसका स्टोर में उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता। इसका मेनली है कि फार्मर जो छोटे फार्मर है और जो लार्ज स्केल पे अपना ऑनियन प्रोड्यूस करते हैं, ट्रेडर जो स्टोर में रखते हैं, इन सभी को जो ऑनियन की फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, जो प्याज की फार्मिंग से जुड़े हुए फार्मर है उनको और जो ट्रेडर है उनको फायदा होगा, क्योंकि वो अपने स्टोर में जो हार्वेस्टिंग के बाद से प्याज को रखते हैं, कुछ जो ड्राई पीरियड होता है बारिश का सीजन इसमें कुछ समय के लिए स्टोर करते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि हमारा स्टोर में ऑनियन जो प्याज है वो खराब हो रहा है या सही हो रहा है, उसमें क्या कंडीशन है अंदर की। तो उसी कंडीशन को हमारा जो डिवाइस है फार्म IoT का वो एनालिसिस करता है, उसके बाद वो फार्मर को और ट्रेडर्स को जो भी स्टोर करता है उनको इन्फॉर्म करता है कि आपके प्याज की कंडीशन क्या है, और इसी के तहत वो मार्केट का अच्छे से अच्छा प्राइस ले सके और ये सुविधा प्रोवाइड करता है। इसमें खर्चा की बात किया जाए तो फार्मर को 20 से लेकर 25 हजार का खर्च होता है 100 क्विंटल के लिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 kg को स्टोर करने के लिए 1 रुपये का खर्च होता है। और यदि इस बार की 2026 की बात किया जाए तो जब फार्मर ने अपने स्टोर में इसको लगाया था तो उसके बाद 10 रुपये प्राइस था और आज उसका 40 रुपीस प्राइस आ रहा है पर केजी के हिसाब से, तो वो एक प्रॉफिट का सौदा हुआ फार्मर के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी क्रॉप है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है।
1: काशी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर के फाउंडर कार्तिकेय मंडलोई पर्ल की खेती करते हैं और ट्रेनिंग देकर अन्य लोगों को भी एग्रीप्रेन्योर बनाना चाहते हैं।
3: मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एग्रीप्रेन्योर लोगों को बनाएं, हम जैसे युवा और जो लोग मिलके कुछ करना चाहते हैं उनके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर खोला है इंदौर में, जिसमें मोती की खेती, मशरूम की खेती और ऐसे बहुत तरीके की अलग अलग खेती हम लोगों ने एक ही रूप के नीचे रखी है इंदौर में, और हम इस चीज़ को और आगे बढ़ा के और

0: नए नए युवा लोगों को इस चीज से रोजगार देने की प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग आए उस चीज को सीखें और अपना नया खुद का बिजनेस चालू करें। और हम ये भी चाहते हैं कि एक इंसान जब खुद आगे आता है तो दूसरे और 5 लोगों को लेके भी आगे बढ़ सकता है। मैम, मोती की खेती के ये फायदे हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे पास बहुत बड़ा पौंड होना चाहिए, बहुत बड़ी चीजें होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग टंकी में भी चालू कर देते हैं। एक नॉर्मल वाटर टैंक की बात करूं तो मैक्सिमम 2000 स्क्वायर फीट, हम लोग ने जब लोगों को ट्रेनिंग करवाई थी तब लोगों ने इससे चालू करते हुए 200 स्क्वायर फीट 300 स्क्वायर फीट से भी कम जगह में मोती की खेती करी है। लोग बोलते हैं कि मोती की खेती में कितने पैसे लगते हैं, क्या लगते हैं, वो भी आपको स्टार्टिंग में बता दिया जाएगा। हम लोग अभी मोती की खेती को ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसमें आधे से ज्यादा लोग उसकी खेती भी कर रहे हैं, जिनसे हम लोग बायबैक कर लेते हैं। मैम, कुछ चीजें तो ऐसी है जो कभी बंद नहीं होती है। जैसे कि देखी जाए तो मोती आज हर किसी की डिमांड है, तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और बहुत आगे तक प्लानिंग बहुत अच्छी है।
1: देसी माटी एग्रीटेक एंड टेक्नोलॉजीज के दीप्ति मान ने भी हमसे अपने विचार साझा किए।
2: हमारी शुरुआत 2016 में खेती से हुई। हम कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम की काफी लार्ज स्केल पे खेती करते हैं और हमारा खुद का सप्लाई चेन है जो कि अक्रॉस इंडिया है, जिसमें हम बेसिकली जितने भी मॉडर्न ट्रेड है, ई कॉमर्स है, लाइक ब्लिंकिट है, रिलायंस फ्रेश है, उनकी पूरी सप्लाईज हम काफी सिटीज में, 4-5 सिटीज में मैनेज करते हैं। प्लस हमारा खुद का D2C प्लेटफॉर्म है और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हम डायरेक्ट फार्मर से वो उगवाते हैं। हम फार्मर को खेती करना भी सिखाते हैं कि किस तरह से उगाया जाए, किस सीजन में क्या उगाया जाए और उसको क्या बेस्ट प्राइस में बेचा जा सकता है, उसमें भी हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा मेजर इन्फ्लक्स पॉइंट है। अब हम लोग जो है D2C में ही हमारा मेजर फोकस है, जिसको हम लोग स्केल करना चाहते हैं और हम लोग डायरेक्ट बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। जो भी पब्लिक डिमांड है उसको फार्मर से हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इसके अंदर हमने बहुत सारा टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन किया हुआ है ताकि एक्चुअली जो पिलफरेज होते हैं, क्योंकि ये सब कच्चा माल होता है हमारा, मेनली हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में डील करते हैं, तो उसकी पिलफरेज को कैसे कम किया जाए, कैसे उसको और ऑप्टिमाइज किया जाए, सप्लाई चेन को, वेस्टेजेस को मिनिमाइज किया जाए, उसके ऊपर हमारा फोकस है। तो हमारी खुद की इनहाउस टेक टीम्स है जो रिलेंटलेसली इस पे काफी काम कर रही है। इनफैक्ट उसके अलावा हमने फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया फार्मवेयर के नाम से, जो टिपिकली फार्मर को प्रॉपर गाइडेंस देगी कि कब किस सीजन में क्या उगाना है, क्यों उगाना है, क्या स्पेसिफिक यील्ड आ सकते हैं। और हमारा जो मेजर फोकस है वो है रेसिड्यू फ्री, क्योंकि देखिए एक ऑर्गेनिक की लोगों के अंदर बहुत वो है कि उन्हें ऑर्गेनिक फूड चाहिए है, बट अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनिक फूड कमर्शियल स्केल पे करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जो मेजर हमारा फोकस एरिया होना चाहिए कि फ्रूट का या वेजिटेबल का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए एंड वो रेसिड्यू फ्री होना चाहिए, कि उसमें कोई हार्मफुल केमिकल ना हो जो कि ह्यूमन बॉडी को डैमेज कर सके। सो ये हमारा मेजर इंफ्लक्स। तो किसानों को हम ये बताते हैं कि लेट्स अज्यूम जैसे आज हम अगस्त के महीने में खड़े हैं, अब कोई किसान कोई फसल लगाना चाहता इस समय तो क्या ऑप्शन है उसके पास, अगर वो मोटी फसलें करना चाहता है, वो सब्जी करना चाहता है, वो फल करना चाहता है, तो कौन कौन से वायबल ऑप्शन है, कितने समय में वो होगा, उसमें क्या लागत आने वाली है, उसमें समय टू समय कौन से उसको स्प्रे क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, वो सारी चीजें हम उनको टेक्निकली गाइड करते हैं और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इसलिए है क्योंकि देखिए यही वो किसान है जो हमारे सप्लाई चेन से जुड़ेंगे और आपके घर तक वो अच्छी चीजें पहुंच सकती है, जिसकी हम हर कोई एक्सपेक्टेशन रखता है कि भाई हमें बेस्ट ऑफ द फूड मिले। किसानों को संदेश मैं यही देना चाहता हूं कि नई तकनीकों को अपनाएं, उससे आपके यील्ड बढ़ेंगे। आपको और एक्सप्लोर करना है, आपके पास इतना सारा आज की डेट में डेटा है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, छोटे ट्रायल करें। क्या होता है लोग घबराते हैं एकदम से बड़े रकबे में जाने से, 50 डेसिमल कीजिए, 20 डेसिमल कीजिए, लेकिन उसको करिए, अच्छे से सीखिए।
1: किसानों की ट्रैक्टर खरीदने से लेकर उसे बेचने तक की हर समस्या का समाधान दे रहे हैं ट्रैक्टर ज्ञान के शिवांकुर गुप्ता।
3: पूनम जी, मेरा जो काम है, मेरा स्टार्टअप है tractorgyan.com, हमारा वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम किसानों को जो है वो ट्रैक्टर्स और फार्म इक्विपमेंट की जानकारी देते हैं। मान लीजिए कोई किसान है जिसको नया ट्रैक्टर लेना है, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अलग अलग ट्रैक्टरों की पूरे स्पेसिफिकेशन क्या है, फीचर्स क्या है, वो सब चेक कर सकता है। अगर उसको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे ये ट्रैक्टर लेना चाहिए, ये ट्रैक्टर लेना चाहिए, तो उसमें कंपैरिजन का भी फैसिलिटी है। इसके अलावा किसान जो है अपना पुराना ट्रैक्टर हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो दूसरी जगह के किसान होते हैं वो आपस में जो है वो आपस में बात कर सकते हैं, इसका हम कोई भी किसान से कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। तो पुराना ट्रैक्टर खरीद और बेचने की भी सुविधा हमारे प्लेटफॉर्म पे है। इसके अलावा जो है वो जो औजार आते हैं जो ट्रैक्टर के पीछे, जैसे कल्टीवेटर लगता है, रोटावेटर लगता है, हार्वेस्टर अलग मशीन होती है, इन सभी मशीन्स की भी हमारे प्लेटफॉर्म पे पूरी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। रिस्पॉन्स हमें बहुत जबरदस्त मिलता है। पिछले 10 सालों से ये ट्रैक्टर ज्ञान मैं चला रहा हूँ। अगर पिछले साल की बात करें तो हमारा टोटल 78 करोड़ से ज्यादा इंप्रेशन था और लगभग 4,30,000 से ज्यादा किसानों ने हमारे प्लेटफॉर्म पे लीड जनरेट किया था। मतलब उनको कुछ ना कुछ तरीके से जानकारी चाहिए थी, किसी को ट्रैक्टर के बारे में, किसी को टायर के बारे में, किसी को कृषि यंत्रों के बारे में। तो बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स है। टोटल हमारे अगर सोशल मीडिया की बात करें तो 13 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स

0: जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग है। हमारे प्लेटफॉर्म पे हर कुछ दिनों में हम लोग नई नई चीजें लेके आते रहते हैं। आने वाले दिनों में हम बहुत सारी नई भाषाओं में, अभी हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध है, भी और लैंग्वेजेस में भी आने वाले हैं।
1: नवाचार के बिना खेती में तरक्की संभव नहीं है।
2: भैया अब अपने स्थल रिकॉर्डिंग सुनी, जी में हमें रिकॉर्डिंग सहयोग मिलो तो पूनम सरावगी को। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कछु मौसम आधारित सलाह आपके लाने लेके आए हैं। सुबह हम आप और उनको बता देते हैं। भैया हरो, हल्दी, अदरक और अरबी के लाने खेतन की तैयारी पूर्ण कर ले में, संगे संगे भैया हरो खरीफ फसलन की सब्जियन के लाने और कद्दू वर्गीय फसलन के लाने जा सलाह दी जाते कि समय पे निराई गुड़ाई एवं अन्य अंतरवर्ती कृषि कार्य संपन्न कर ले और कद्दू वर्गीय फसलन की बेलन को सहारा दें। लौकी, कद्दू, खीरा, करेला एवं तुरई जैसी फसलन की बुवाई के लाने उठी भई क्यारियां तैयार कर ले और बुवाई से पूर्व गोबर की सड़ी खाद एवं उर्वरकन की अनुशंसित मात्रा खेत में जरूर मिलाए। तो भैया हरो अब आज्ञा दो अपनी अंशु बहन को और स्वीकारो हमारी नेह और स्नेह भरी राम राम।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की महत्वपूर्ण यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर पहुंचे हैं और यात्रा के दूसरे चरण में 31 अगस्त और 1 सितंबर को वे किर्गिज गणराज्य जाएंगे और बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO में भाग लेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। क्या है इस यात्रा के विभिन्न पहलू, क्या है उनका महत्व भारत के लिए, किस तरह से ये हमें लाभान्वित करेगा, इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, पूर्व एम्बेसडर अशोक सज्जनहार और ताशकंद से आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। आप दोनों का, एम्बेसडर सज्जनहार और सुशील जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
4: बहुत धन्यवाद सोनू जी, मुझे आमंत्रित करने।
3: सुशील जी, आप ताशकंद में अभी हैं, हमें बताएं कि किस तरह का वहाँ माहौल है, किस तरह का उत्साह है और वहाँ पर किस तरह की उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा जो वो उज़्बेकिस्तान में कर रहे हैं।
5: जी देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह तो जबरदस्त है, क्योंकि उज़्बेकिस्तान में बड़ी संख्या में भारतीय लोग

0: रहते हैं और उनमें भी लगभग एक मेजॉरिटी आप कहें कि मोस्टली जो है वो छात्र हैं, बड़ी संख्या में युवा हैं, जेंजी हैं, वो बहुत उत्साहित हैं। दो दिनों से हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग बहुत उत्साहित है, छात्र, डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, फार्मा कंपनियों में काम करने वाले लोग, तो भारतीय समुदाय बहुत उत्साहित है। लेकिन साथ के साथ उज्बेकी समुदाय भी काफी उत्साहित है। यहाँ के लोग भारतीयों से एक तरीके से कहें तो बेहद ही दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, भारतीयों से एक अपना रिश्ता महसूस करते हैं जो कि सदियों पुराना है। सिल्क रूट की वजह से भी पहले के जमाने में लोगों का आना जाना बहुत होता था, और बॉलीवुड फिल्मों, बॉलीवुड के गानों, बॉलीवुड के सीरियल्स, यहाँ तक कि रामायण और महाभारत के सीरियल की भी बहुत ज्यादा यहाँ पर लोकप्रियता रही है। हमने बहुत से लोगों से हिंदी गाने गुनगुनाते हुए सुने और लोगों से बातचीत की। तो यहाँ पर चारों तरफ होर्डिंग्स लगे हुए हैं प्रधानमंत्री जी के, और बैनर्स लगे हुए हैं, तिरंगा लहरा रहा है, तो बहुत ही अच्छा माहौल है।
1: तो आपने तो हमें भी उत्साहित कर दिया एम्बेसडर सज्जन धार। अगर मैं आपसे थोड़ा सा और ब्रॉडली पूछूं, मध्य एशिया का भारत के लिए क्या महत्व है, अगर आप संक्षेप में हमें बता सके।
2: जी बहुत धन्यवाद सुनो जी मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी
2: आपने देखिए बिल्कुल ठीक कहा है, ये चौथी यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान में, और वो पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं जो पांचों देशों की यात्रा कर चुके। 2015 में अगर देखा जाए, एक साल के बिल्कुल बाद जब वो सत्ता उन्होंने संभाली थी, तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहला देश जो वो गए थे वो 2015 जुलाई में उज्बेकिस्तान था, उसके बाद कजाकिस्तान और फिर तीनों और देशों में भी। तो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि सुशील जी ने अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया, जो वहां पर हमारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। अगर देखा जाए सम्राट अशोक के समय से ये पूरा जो मध्य एशिया का, सेंट्रल एशिया का जो क्षेत्र है, ये सम्राट अशोक के राज्य में ये मिलता था। और अगर देखें तो यहाँ से सिल्क रोड का न केवल जिसे कहा जाए गुड्स, बट आइडियाज, फिलोसफी, थॉट और बुद्धिज्म भी यहाँ से ही निकलकर चीन के पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचा। परंतु जब से आजादी मिली है इनको सोवियत संघ से 1991 में, तब से हमारे जो संबंध हैं इतनी तेजी से आगे नहीं उभर पाए हैं, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है जिसे हम कहा जाए कनेक्टिविटी, जिसे हम कहें जो हमारे इनसे लैंड बॉर्डर्स नहीं मिलते हैं।
1: जी
2: जो ये सब देश जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तब से इन देशों की जो है, इससे पहले भी इन देशों की शक्ति बढ़ती जा रही है, और इन्होंने, ये पांचों देशों ने पहली बार 2018 से कहा जाए अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना शुरू किया है। और हालांकि इससे पहले बहुत ही ये निर्भर थे चीन पर और रूस पर, अब वो चाहते हैं जो और देशों के साथ भी इनके जो संबंध हैं और भी सुदृढ़, और इसमें भारत चाहे अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे अपने आर्थिक व्यवस्था के लिए, यहाँ पर इन देशों के पास तेल, गैस, यूरेनियम और जो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थों का बहुत ही बड़ा भंडार है। तो वो हम इनको इनसे कैसे ले सकते हैं, और हमारी जो शक्ति है, चाहे ट्रेड हो, निवेश हो, फिनटेक हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्रीन एनर्जी हो, इन सब क्षेत्रों में हम इनमें कैसे, इनके साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं, तो ये विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि ये देश भी चाहते हैं जो अपने दायरे से बाहर निकलकर और देशों के साथ सहयोग को आगे ले जाए।
1: एम्बेसडर सज्जनहार, प्रधानमंत्री ने जब वो जा रहे थे उससे पहले कहा कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ वे व्यापार और निवेश, जैसे आपने कहा डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। तो किस तरह के आपको लगता है कि आउटकम्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, किस तरह के विषयों या कहें कि क्षेत्रों में समझौते जमीनी तौर पर की उम्मीद है आपको?
2: देखिए सुनो जी, इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो जो है बायलैटरल रिश्ते, द्विपक्षीय सहयोग जो है भारत का और उज्बेकिस्तान का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, वहां पर तीन बड़े बड़े भारतीय विश्वविद्यालय उज्बेकिस्तान में हमने एस्टैब्लिश की है। एक तो एमिटी यूनिवर्सिटी की है, एक शारदा यूनिवर्सिटी की है जो है, और वहां पर हॉस्पिटल भी उन्होंने बनाया है, इसमें फरगना वैली अंदिजान के क्षेत्र में, जहां से आपके सुनने वालों को याद होगा, जहां से बाबर यहां पर भारत में आया था 1526 में, उसी क्षेत्र में हमने शारदा यूनिवर्सिटी का एक एस्टेब्लिशमेंट किया है। उसके बाद एमिटी यूनिवर्सिटी

0: एस्टैब्लिश हुई है ताशकंद में, और एक और यूनिवर्सिटी संभ्राम यूनिवर्सिटी वो भी वहां पर एस्टैब्लिश की गई है। तो एक तो जो द्विपक्षीय संबंध है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, ये सब क्षेत्र हैं जिनमें हम उज़्बेकिस्तान के साथ सहयोग कर सकते हैं। दूसरा परिपेक्ष सोनू जी है भारत का और मध्य एशिया के देशों का, और इसमें मैं बताना चाहूंगा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल ली गई थी 2022 में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार जिसे कहा जाता है इंडिया सेंट्रल एशिया समिट लेवल पर, मतलब वहां के पांचों देशों के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने वर्चुअली एक समिट ऑर्गेनाइज किया था, उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, और उसमें ये बात तय की गई थी जो इस समिट का आयोजन किया जाएगा हर साल दो साल के बाद, और 2022 के बाद अभी तक बहुत कारणों की वजह से ये अभी तक दूसरा समिट, दूसरा शिखर सम्मेलन हम नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं जो अगर अपने संबंधों को हमने और आगे गति देनी है, तेजी लानी है
1: जी,
0: इस शिखर सम्मेलन को हमें आयोजित आगे जल्दी करना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी शौकत मिर्जायेव से ताशकंद में और नेताओं से बिश्केक में, जिसका आपने जिक्र किया वहां पर 26वां एससीओ का शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो हमको ये द्वितीय शिखर सम्मेलन को भारत में आयोजित करने में इसको और गति मिलेगी और ऊर्जा मिलेगी, और वो हमारे रिश्तों को एक नए सतह पर, एक नए लिमिट की तरफ और लेकर जा सकते।
1: बिल्कुल सुशील जी, अगर आपके पास आए इससे पहले कि हम बिश्केक में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो होने वाला है समिट उस पे बात करें, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें समझौते हो सकते हैं जो भारत को भी लाभान्वित करेंगे और उज्बेकिस्तान को भी लाभान्वित करेंगे।
2: देखिए कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, हमारी यहाँ की जो एम्बेसडर हैं स्मिता पंत जी से भी बात हुई और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो उज्बेकिस्तान है वो मिनरल रिच कंट्री है, तो रेयर अर्थ जो कि आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खनिज है और जिसकी बहुत दुनिया में मांग है, वो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है, और उसको लेकर के कोई समझौते की गुंजाइश हो सकता है कि बन भी सकती है, उस पर बातचीत होगी, ऐसा एम्बेसडर महोदया ने भी कहा। और दूसरी चीज है रक्षा में बहुत सहयोग है दोनों देशों के बीच में
1: जी।
2: डस्ट लीक करके उनका आपस में एक साझा संयुक्त सैनिक अभ्यास भी होता है, भारत के पूर्व रक्षा प्रमुख मनोज पांडे भी जो थलसेना प्रमुख थे वो भी यहाँ आ चुके, तो दोनों देशों के बीच रक्षा है। एक महत्वपूर्ण निवेश का क्षेत्र और व्यापार का क्षेत्र जो है वो एग्रीकल्चर है। इसके अलावा कनेक्टिविटी को लेकर के भी जो है वो कुछ कॉन्क्रीट चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ईरान से पहले सामान यहाँ पर लोग मंगाते थे और अब वो रास्ता लगभग बंद हो चुका है ईरान युद्ध के बाद से, तो चीन के रास्ते माल आता है तो वो महंगा पड़ता है, हमारी स्थानीय व्यापारिक समुदाय के लोगों से ही बात हुई। दूसरा महत्वपूर्ण सेक्टर है मेडिकल का, फार्मा का, यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी, कई भारतीय छात्र ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की, यहीं पर अपने हॉस्पिटल्स और फार्मा सेक्टर के जो फैक्ट्रियां हैं वो स्थापित की, तो वो भी एक बड़ा सेक्टर है। पर्सन टू पर्सन जो बड़ी संख्या में लड़के आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, एक बड़ी आबादी जो यहाँ रहने वाले भारतीयों की है उसमें लगभग 80-90% तो सिर्फ छात्र है जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, हमारी बहुत से छात्रों से बातचीत हुई, तो उन्हें भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो उनके आने जाने को लेकर के, उनके प्रोफेशन को लेकर के हो सकता है कि कुछ अच्छी पॉजिटिव चीजें निकल करके आए।
1: और इसके बाद का जो सेकंड लेग है इस यात्रा का प्रधानमंत्री जी का, जिसमें वो किर्गिज गणराज्य जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लेने, उसके समिट में, आप हमें बताएं एम्बेसडर सज्जन हार की जो उन्होंने विजन दिया है भारत का, उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी SCO सिक्योरिटी कनेक्टिविटी अपॉर्चुनिटी, इसको आप कितना कहें कि एक सटीक एक उम्मीद की किरण मानते हैं, हर एक पहलू पे आप किस तरह से आपसी सहयोग आगते हैं, आगे के क्या पोटेंशियल है?
0: जी देखिए मेरे विचार से संभावनाएं तो बहुत हैं इसमें, परंतु इसको ये भी देखा जाए जो इसमें लिमिटेशंस भी हैं। भारत ने इसके दो सबसे महत्वपूर्ण उच्च श्रेणी के ये शिखर सम्मेलन होते हैं एक प्राइम मिनिस्टर लेवल पर, क्योंकि ये सब जो देश हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत और पाकिस्तान को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो सबके प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहां पर प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट अलग होते हैं। तो हमने, भारत ने शिखर सम्मेलन किया था प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर 2020 में, और

0: सबसे उच्च स्तर पर उच्च श्रेणी का जो शिखर सम्मेलन होता है वो हेड ऑफ स्टेट का होता है, जो कि 2023 में हमने उसकी अध्यक्षता की थी और उसमें हमने बहुत से वो लिए थे, नए इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे कि बुद्धिज्म के ऊपर, जैसे पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, जैसे मिलेट्स को, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा हम कहें एग्रीकल्चर में फूड स्केयरसिटी, फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, तो बहुत हमने अच्छे इसमें इनिशिएटिव्स लिए। तो मैं समझता हूँ संभावना इसमें बहुत है। सिक्योरिटी अच्छी बात है क्योंकि इसको एस्टैब्लिश ही इसीलिए किया गया था, जो ये वाला सभी जो क्षेत्र है इसको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए, जो कैसे ये देश मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा के लिए सहायता कर सकते हैं। दूसरी बात है कनेक्टिविटी, और उसमें हम कहते रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया जो पाकिस्तान के थ्रू तो हम नहीं आ सकते, तो हमने चाबहार के ऊपर बहुत अधिक जोर देना शुरू किया था और उसके बाद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। परंतु जब से ईरान के ऊपर इतनी अंकुश लगे हैं, इतने सैंक्शंस आए हैं, तो उसको हम आगे ठीक तरीके से नहीं ले जा पा रहे हैं। परंतु कजाकिस्तान का जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है सोनू जी, और उज्बेकिस्तान, ये दोनों देश इनमें बहुत रुचि रखते हैं, जो INSTC और चाबहार को आगे हम और ज्यादा प्रगति की ओर ले जा सके। तो काफी अगर नॉमिनल टर्म में देखा जाए तो हमारी करीब 30% से ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था है, तो ये अगर एक साथ मिलकर काम करें तो ये बहुत ही अच्छा इनमें सहयोग की संभावनाएं हैं। और मैं समझता हूं जो बातचीत होगी उसमें इन सभी सहयोग के पहलुओं को हम आगे ले जाने में सक्षम होंगे।
1: एम्बेसडर सज्जनहार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील चंद्र तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए।
0: बहुत धन्यवाद सोनू जी, मुझे आमंत्रित करने, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की महत्वपूर्ण यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: ये था कार्यक्रम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए आप सुनते हैं फिल्म संगीत।

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण के स्वर में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था जतिन ललित का।

यारा दिलदारा इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीत था जतिन ललित का।

0: ऐ मेरी हमरा मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

0: ये गीत था फिल्म यलगार से, जिसके लिए आवाज़ थी उदित नारायण, सपना मुखर्जी की, गीतकार थे सुदर्शन फाकिर और संगीत था चिन्नी सिंह का। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आकाशवाणी भोपाल से हर शाम

0: रोजाना 5:02 पर सुनिए युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दो दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी

0: में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जाँच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
3: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
5: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की।

0: है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
2: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में दो गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने बीआर अंबेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
4: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
5: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट

0: Education are strengthening the sporting ecosystem and helping athletes prepare for competition at the highest level. With Saklain Akhtar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: Hockey India has announced a cash award of 50 lakh rupees for the Indian women's hockey team for their historic fifth place finish at the FIH Hockey Women's World Cup 2026 in Belgium and the Netherlands. India defeated world number 5 Germany 3-1 in Amstelveen on Thursday. It is India's best World Cup finish since the team secured fourth place in the inaugural edition in 1974. Captain Salima Tete's team lost only one match in the tournament. India held higher-ranked China, England and Australia to draws. The team also recorded a 6-1 win over South Africa. The India Meteorological Department has issued a red alert for rainfall conditions over Odisha for the next 2 days. The Weather Department also forecast heavy rainfall tomorrow in places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal. Moderate to heavy rainfall is also expected tomorrow in places over Bihar, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim, Uttarakhand and Vidarbha. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Tashkent on a two-day visit to boost bilateral ties between India and Uzbekistan. Death toll in Nepal flash floods rises to 669, over 2,000 people, including 287 Indian nationals, still missing. Nepal praises India's relief efforts following devastating floods. Finance Minister Nirmala Sitharaman highlights India's vast market size and long-term investment potential at Chicago Business Roundtable. Over 115 lakh hectares brought under per drop more crop micro-irrigation scheme till July this year. 37 people killed following Russian attack on Bucha district of Ukraine and red alert issued for very heavy rainfall in Odisha till Monday. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की खातिर दो रोजा दौरे पर ताशकंद पहुंच गए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 669 हो गई है। 287 भारतीय शहरियों समेत 2000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल ने तबाहकुन सैलाब के पेश नजर भारत की राहती कोशिशों की सताइश की है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने शिकागो कारोबारी गोलमेज में भारत के वसी बाजार और तवील मुद्दती सरमायाकारी सलाहियत को उजागर किया। इस साल जुलाई तक बहुत छोटे पैमाने पर आपाशी की स्कीम फी बूंद ज्यादा फसल के तहत 115 लाख हेक्टेयर अराजी का इहाता किया गया है। यूक्रेन के बूचा डिस्ट्रिक्ट पर रूस के हमले में 37 अफराद हलाक हो गए हैं और पीर तक उड़ीसा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड और शिमाल मशरकी रियासतों के इलाकों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वस्ती एशियाई मुल्क उज़्बेकिस्तान के दो रोजा दौरे पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। हवाई अड्डे पर उज़्बेकिस्तान के सर शौकत मिर्ज़ायोव ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सर शौकत मिर्ज़ायोव की मौजूदगी में यंगी उज़्बेकिस्तान पार्क में यादगार पर गुलहाय अकीदत पेश किए। दोनों रहनुमा बाहमी फायदे के तमाम मामलों पर तबादला ख्याल करेंगे। हमारे नामानिगार के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मोदी का इस्तकबाल करने के लिए राजधानी ताशकंद को खुसूसी तौर पर सजाया गया है। तफसील हमारे नामानिगार से।
3: पूरा शहर भारत के परचम और इस्तकबालिया बैनरों से सजा हुआ है क्योंकि उज़्बेकिस्तान को वज़ीर आज़म मोदी के चौथे दौरे का बेसब्री से इंतजार था। ताशकंद में मुकीम भारतीय बिरादरी भी वज़ीर आज़म मोदी के खुसूसी इस्तकबाल के लिए जमा हुई। कल सदारती महल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। ये ताल्लुकात सदियों पुराने तहजीबी रिश्तों पर कायम हैं और मजबूत अवामी रवाबित से मजीद मुस्तहकम हुए हैं। दोनों रहनुमा तजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल राबते, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम के राबतों के शोबों में बाहमी तआवुन का जायजा लेंगे। वो विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के मुश्तरका

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। युवा होना केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं है, ये अपने शरीर को स्वस्थ रखने, अपने समय की भाषा समझने, स्वयं को पहचानने और अपने सपनों के लिए निरंतर साधना करने का समय है। आज की युवा भारती में हम चलेंगे युवा जीवन की ऐसी ही चार दिशाओं में, जहां सही पोषण है, बदलती अभिव्यक्ति है, स्वयं की तलाश है और सपनों के साथ कला की साधना भी है। सही पोषण सशक्त युवा विकास की पहली शर्त। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और सजग मन का निवास होता है, और जब बात युवाओं की हो तो ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सत्य है। हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है लोगों को संतुलित आहार, स्वस्थ खान पान और पोषण के महत्व के प्रति जागरूक करना। साल 1982 में शुरू हुई ये पहल आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद पहले से कहीं अधिक, क्योंकि आज हमारी थालियां भले भरी हुई हों, लेकिन क्या वो पोषण से भरपूर है? तेज रफ्तार जिंदगी, अनियमित दिनचर्या और सुविधा के नाम पर बढ़ता जंक फूड खासकर युवाओं की खान पान संबंधी आदतों को प्रभावित कर रहे हैं। भोजन अब कई बार भूख से अधिक स्वाद और सुविधा का विषय बन गया है। लेकिन पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है, ये शरीर को शक्ति देता है, मन को सजग रखता है और हमारे सपनों को पूरा करने की क्षमता भी। युवावस्था जीवन का वो दौर है जब शरीर संभावनाओं से भर रहा होता है और मन भविष्य के सपनों को आकार दे रहा होता है। ऐसे में सही पोषण केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय विकास की भी पहली शर्त है। हमें अपनी पारंपरिक भोजन पद्धति की ओर भी देखना होगा। दालें, अनाज, मोटे अनाज, हरी सब्जियां, फल और स्थानीय खाद्य पदार्थ हमारी थाली को केवल स्वादिष्ट ही नहीं संतुलित और समृद्ध भी बनाते हैं। और श्री अन्न यानी मिलेट्स को हम कैसे भूल सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें यही याद दिलाता है

0: स्वस्थ भविष्य किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा में नहीं होता, उसकी शुरुआत रोज हमारी अपनी थाली से होती है। आइए पोषण को अभियान भर ना रहने दें, बल्कि अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सही पोषण से ही बनेगा सशक्त युवा, और सशक्त युवा ही रचेंगे स्वस्थ, समर्थ और विकसित भारत का भविष्य। एक स्वस्थ शरीर ही एक सजग मन और सक्रिय जीवन की बुनियाद बनता है। लेकिन युवा होने का अर्थ केवल स्वस्थ और सक्षम होना ही नहीं, अपने समय के साथ संवाद करना भी है। हर पीढ़ी अपनी भाषा गढ़ती है, कभी शब्दों से, कभी संकेतों से, और कभी ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से जिनमें एक पूरी दुनिया छुपी होती है। तो आज की युवा भाषा का एक दिलचस्प कोट समझने का ही एक प्रयास है हमारी अगली प्रस्तुति, कह तो दिया नो कैप। आलेख और प्रस्तुति ओमवेश उपाध्याय की है, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीतिक संचार विशेषज्ञ हैं।
1: हाय फ्रेंड्स, पिछले साल एक इंटरनेशनल डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया। यह वर्ड था 6-7, बस दो अंक, ना कोई डेफिनेशन ना कोई मीनिंग। डिक्शनरी ने खुद माना कि इसका मतलब बताना मुश्किल है। कई स्कूलों ने इसे क्लास में बोलने पर रोक लगाई और बच्चों ने इसे और ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। सुनने में यह मजाक लगता है, लेकिन इसी साल हमारी संसद के भीतर एक विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सांसद इसी किस्म की वोकैब में एक दूसरे को जवाब दे रहे थे। ये जेंजी लिंगो है, सड़क से सांसद तक ऑमनी प्रेजेंट। और यंगस्टर्स की अपनी अलग वोकैब कोई नई बात नहीं है। लिंग्विस्ट दशकों से यह कहते आए हैं कि हर पीढ़ी अपनी एक इंटरनल लैंग्वेज गढ़ती है, एक ऐसी वोकैब जो यह तय करती है कि कौन इस समूह के अंदर है और कौन बाहर। अब आप भारत का अपना उदाहरण समझिए। इंग्लिश शब्द पहली बार 1967 में दर्ज हुआ था, यानी 60 साल से हम हिंदी और अंग्रेजी को एक ही वाक्य में मिला रहे हैं। झकास शब्द 1985 की एक फिल्म से निकलकर पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। मुंबईया बोली से बिंदास आया, टाइम पास आया, जुगाड़, दादागिरी, फंडा आया, और आज ये सारे शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दर्ज हैं। एक समय जिन शब्दों को गली मोहल्ले की भाषा कहकर नाक भौं सिकोड़ी जाती थी, वे आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित डिक्शनरी में इंडियन इंग्लिश की 900 से ज्यादा एंट्रीज का हिस्सा हैं। अब असली सवाल, ये जेंजी ऐसा बोलते क्यों हैं? दो वजहें हैं। पहली, यह दौर। पहले एक शब्द कॉलेज की कैंटीन से मोहल्ले तक, फिर किसी फिल्म तक, और तब देश भर में पहुंचता था। इसमें सालों लग जाते थे। अब बीच में न फिल्म है न अखबार, बस एल्गोरिदम है, और एल्गोरिदम बाजार की तरह काम करता है। जो दिखता है वही बिकता है। जेंजी लिंगो तेज बिकता है, इसलिए आपके सामने है। दूसरी, ब्रेविटी, यानी गागर में सागर भरना। एक पिक्चर, एक लाइन और पूरी तरह बात कही जा सकती है। जिस बात को कहने में मिलेनियंस को पूरा पैराग्राफ लग जाता है, वे एक मीम में कह देते हैं।
2: मेरा नाम अमृता सिन्हा है, मैं सूरत में रहती हूँ और मैं एक आईटी कंपनी के साथ एज अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल काम करती हूँ। जेंजी लैंग्वेज कॉन्शियसली बनाई हुई कोई भाषा नहीं है, बल्कि ये हमारे रेगुलर इंटरनेट यूसेज और मीम स्क्रोलिंग से आई है और अब हमारे जनरेशन के हर दिन के कॉन्वर्सेशन का एक नेचुरल पार्ट बन चुकी है। और मुझे लगता है जब मैं ऐसा कोई शब्द यूज करती हूँ अपने एल्डर जेनरेशन के सामने और उनका बहुत ही ब्लैंक एक्सप्रेशन आता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनके जेनरेशन का कोई स्लैंग या रेफरेंस यूज करके उन्हें समझा पाऊँ। जैसे मैंने जब अपनी दादी को बताया कि डिलीवरी आपके ख्याली पुलाव पकाने का छोटा वर्जन है, तो अब उन्हें बहुत मजा आता है डिलीवरी वर्ड यूज करने में।
1: भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या अब लगभग 1 अरब है, यानी 100 करोड़। वहीं जेंजी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी जनरेशन आबादी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी पीढ़ी है, लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास। और ये अपने आप में एक बड़ा कारण है कि अब आप जेंजी को सीरियसली लें। तो आइए समझते हैं कि जेंजी की भाषा किस तरह की है। पिछले साल दुनिया के बड़े शब्दकोशों ने जो शब्द चुने उन पर गौर कीजिए। ऑक्सफोर्ड ने चुना रेज बेट, यानी ऐसी सामग्री जो जानबूझकर गुस्सा भड़काने के लिए बनाई जाती है ताकि ज्यादा क्लिक मिले। कैम्ब्रिज ने चुना पैरा सोशल, यानी किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव महसूस करना जो आपको जानता तक नहीं। मरियम वेबस्टर ने चुना स्लॉप, यानी मशीन से थोक में बनाया गया घटिया कंटेंट। और उससे पिछले साल ऑक्सफोर्ड का शब्द था ब्रेन रॉट। ये मजाकिया शब्द नहीं, ये इस जनरेशन का डिक्शन है। अब एक दिलचस्प एनालॉजी। 20वीं सदी में रेवोल्यूशन का सबसे पहचाना निशान क्या था? हवा में उठी हुई एक बंद मुट्ठी, एक फिस्ट। ये फिस्ट हर महाद्वीप पर दिखी।

0: बस पिक्चर ही काफी थी। अब इस आइकॉनिक फिस्ट की जगह एक और पिक्चर लेती जा रही है, और यह पिक्चर किसी विचारधारा से नहीं, एक जापानी कॉमिक से आई है। 1997 में जापानी चित्रकार इचिरो ओडा ने एक सीरीज शुरू की, वन पीस। उसका नायक है मंकी डी लूफी, सर पर स्ट्रॉ हैट पहने एक नौजवान समुद्री यात्री जो अपने साथियों के साथ एक भ्रष्ट विश्व व्यवस्था से टकराता है। उसके ग्रुप का निशान है एक कार्टून स्कल, और उस स्कल पर वही स्ट्रॉ हैट है। भारतीय जेंजी के बीच बेहद पॉपुलर लेखक और पॉडकास्टर जेंजी के इस व्यवहार का बेहद अच्छे तरीके से आकलन करते हैं। उनका कहना है कि आज की सटायर से भरी दुनिया में बात तेज फैलती है, और इसीलिए आज के दौर में ये जेंजी का मुख्य औजार भी बन जाता है। जयपुर साहित्य उत्सव में उन्होंने इस जनरेशन को कल्चरल लेबर तक भी कहा। उनका कहना है कि जेंजी एल्गोरिदम, ब्रांड और ट्रेंड के लगातार दबाव में जी रहे हैं। मतलब प्रेशर तो है, पर उन्होंने एक जरूरी चेतावनी भी दी जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आप जेंजी को कैटेगराइज नहीं कर सकते। दिल्ली का नौजवान किसी इंटरनेशनल पॉप कॉन्सर्ट के लिए उत्साहित हो सकता है, राजस्थान का नौजवान किसी लोक कलाकार के लिए। जेंजी एक सुविधाजनक लेबल है, कोई एक यूनिफॉर्म वॉइस नहीं, और ऐसी ही उसकी भाषा है, किसी भी लेबल से मुक्त। तो जब हम कहते हैं कि आजकल के बच्चों की भाषा समझ में नहीं आती, तो असल में हम भाषा की नहीं, हमारे जनरेशनल गैप की बात कर रहे होते हैं, जो आज से ज्यादा कभी नहीं था। आज ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए एक चैलेंज भी है और स्कोप भी। इन सब के बीच हमारे लिए सबसे उम्दा उदाहरण है हमारे प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे चर्चित चेहरे, मोस्ट फॉलोड पॉलिटिकल लीडर ऑन द प्लैनेट और मास्टर कम्युनिकेटर। बीते कुछ हफ्तों में उनके इंस्टाग्राम की भाषा बदली है। लंबे औपचारिक भाषणों की जगह छोटे डायरेक्ट मोबाइल से बने वीडियोस ने ली है, वर्टिकल फ्रेम में, सामान्य बोलचाल में। जुलाई के आखिर में एक वीडियो की शुरुआत ही इस तरह हुई, हाय फ्रेंड्स। किसी वीडियो में एक प्रधानमंत्री का हाय फ्रेंड्स कहना कोई छोटी बात नहीं है, या कम्युनिकेशन अप्रोच के बदलने का संकेत है, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्टेंस छिपा है कि जेंजी तक पहुंचना है तो जेंजी की भाषा में पहुंचना होगा। प्लेटफॉर्म वही चलेगा जहां जेंजी पहले से मौजूद है, और लिंगो वही चलेगा जो जेंजी का अपना है, नो कैप। दोस्तों, ध्यान रहे, कम्युनिकेशन का सबसे पुराना नियम भी यही है। हालांकि हमें ये भी ध्यान देना होगा, जो ब्रेविटी इस भाषा को ताकत देती है, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जो वो कैब हर 3 हफ्ते में बदल जाए, बेहद छोटी हो, वह याद कम रहती है। जो सटायर हर बात पर लागू हो, वह धीरे धीरे विषय की गंभीरता छीन लेता है। और जिस मंच पर गुस्सा सबसे तेज बिकता हो, वहां गुस्सा भड़काना एक कारोबार बन जाता है। रेज बेट इसी शब्द की सच्चाई है। वायरल हो जाना और बदलाव ले आना दोनों एक चीज नहीं। तो डियर जेंजी, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। हाँ, भाषा बदलती रहती है, बदलती रहेगी। टाइम पास और जुगाड़ कभी सड़क की भाषा थे, आज वो कैब का हिस्सा है। जो आज डेलुलू है, वह किसी दिन संसदीय बहस का सामान्य शब्द होगा, बल्कि हो भी चुका है। तो इस पूरे शोर के बीच एक बात याद रखने लायक है, शब्द और अंदाज बदल सकते हैं, लेकिन संवाद की जरूरत नहीं बदलती। भाषा चाहे कोई भी हो, बात तभी आगे बढ़ती है जब हम एक दूसरे को सुनने की कोशिश करें। तो कह तो दिया, नो कैप।
1: अभी आपने सुना, कह तो दिया, नो कैप। आज की युवा भाषा के दिलचस्प कोड को समझने का प्रयास था ये लघु प्रस्तुति। आलेख और प्रस्तुति थी ओमवेश उपाध्याय की, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीतिक संचार विशेषज्ञ हैं। भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, संवाद के तरीके बदलते हैं, लेकिन एक सवाल शायद हर पीढ़ी के अंदर बना रहता है, मैं कौन हूं और मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूं? दुनिया को जानने और उसके साथ कदम मिलाने की दौड़ में क्या कभी हम अपने भीतर झांकने के लिए भी ठहरते हैं? इसी तलाश की एक अनोखी यात्रा हमें ले चलती है ऋषिकेश, जहां देश के 14 राज्यों से आए 50 युवाओं ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से स्वयं को समझने और स्व की खोज का प्रयास किया। हमारी अगली प्रस्तुति है ये लघु वृत्त चित्र, दुनिया से आगे खुद तक। सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक भी हैं।
2: गंगा की अविरल धारा, हिमालय की शांत और विराट उपस्थिति, आश्रम का अनुशासित जीवन, गुरु का सानिध्य और आचार्य शंकर की ज्ञान परंपरा से संवाद, इन सबके

0: बीच 10 दिन ऐसे बीते जिन्होंने मुझे भारतीय दर्शन को समझने का ही अवसर नहीं दिया, स्वयं को देखने और समझने की एक नई दृष्टि भी दी। ये अवसर था अद्वैत वेदांत जागरण शिविर 2026 का। मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय द्वारा युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा और अद्वैत वेदांत से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित यह 10 दिवसीय शिविर उत्तराखंड के ऋषिकेश में संपन्न हुआ। इस शिविर की एक विशेष बात थी, देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवाओं का एक साथ होना। 14 राज्यों के युवा इस शिविर में सहभागी बने। देश से 1200 युवाओं की प्रविष्टियां प्राप्त हुई, उनमें से 300 युवाओं का साक्षात्कार हुआ और अंततः 50 युवाओं का चयन इस शिविर के लिए किया गया। एक साझा जिज्ञासा भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की, और शायद उससे भी बड़ा प्रश्न, मैं कौन हूँ? यही प्रश्न अद्वैत वेदांत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। 10 दिनों तक शिविर में आदि गुरु आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित ज्ञान परंपरा से जुड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ तत्वबोध का अध्ययन कराया गया। तत्वबोध अर्थात तत्व का बोध, अपने अस्तित्व के मूल को समझने का प्रयास। इस अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता थी गुरु का सानिध्य। स्वामी परमात्मानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में तत्वबोध का अध्ययन हुआ। इस पूरे अनुभव को मैं केवल एक कार्यक्रम की तरह या शिविर के रूप में ही नहीं देखता हूँ, स्वयं इस अद्वैत वेदांत जागरण शिविर का एक सहभागी भी रहा हूँ। तत्वबोध के अध्ययन ने मुझे अपने बारे में, अपने मन और अपनी पहचान के बारे में नए ढंग से सोचने का भी अवसर दिया। कई साथियों के साथ रहने, उन्हें जानने और समझने का भी अवसर मिला। असल में इन साथियों और सहपाठियों के लिए भी यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही। ऐसी ही हमारी एक साथी बेंगलोर से जुड़ी हैं, दीक्षा ओम। आइए जानते हैं उनके अनुभव शिविर के बारे में।
1: इस शिविर की जानकारी मुझे अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से हुई, जहां पर मैं योग दर्शन की पढ़ाई कर रही हूं। इस शिविर में जाने का अवसर मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात रही, क्योंकि मैंने वहां पर जाकर बेहद ही खूबसूरत बातें जानी। उन सभी बातों में से सबसे पहली जो बात है वो ये है कि मैंने जीवन को सही प्रकार से देखने के नई दृष्टिकोण को जाना। 90% से भी ज़्यादा हमारी समस्याएँ एक गलत मेंटेलिटी, गलत थॉट प्रोसेस और एक डिस्टॉर्टेड परसेप्शन के कारण हैं। स्वामी जी ने हमें सिखाया कि किस तरीके से हम चीज़ों को एक सही ढंग से देख सकते हैं और जीवन में कर्तव्य क्या है अपने प्रति, समाज के प्रति और विश्व के प्रति। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने जानी वो ये है, एक गुरु की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होती है। जब हम कोई भी ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सीखते हैं तो किस प्रकार से वो हमारे भीतर और गहरा उतरता है। तीसरी चीज़ जो मैंने जानी वो ये है कि किस प्रकार शास्त्र आपके शस्त्र का काम कर सकते हैं। जब हमें सही ज्ञान होता है तो हम उस वीर योद्धा के भांति हैं जो एक युद्ध भूमि में सशक्त खड़ा होता है। उसके सामने चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए वो डरता नहीं है, उसे अपने ज्ञान पर और स्वयं पर आत्मविश्वास होता है। इसलिए मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत रहा यह अनुभव।
0: हम अक्सर स्वयं को अपनी उपलब्धियों से पहचानने लगते हैं। मैं क्या करता हूँ, मेरी नौकरी क्या है, मैं कितना सफल हूँ, मेरे पास क्या है, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत एक क्षण के लिए इन सब प्रश्नों से आगे ले जाकर पूछता है, इन सब के पीछे तुम कौन हो? शायद यही प्रश्न हमें भीतर से स्वतंत्र करता है और यही अद्वैत वेदांत की प्रासंगिकता है। यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं, यह केवल किसी विशेष आयु के लोगों के लिए नहीं, यह जीवन को समझने की एक दृष्टि है। एक ऐसी दृष्टि जो हमें बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ भीतर की समृद्धि की ओर भी देखना सिखाती है। इस शिविर में मेरे साथ प्रतिभाग कर रहे मेरे एक और सहपाठी जो कैथल हरियाणा में योग के शिक्षक हैं, अमन वर्मा,

0: जानते हैं शिविर में उनका अनुभव।
1: स्वामी जी के प्रवचन दार्शनिक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टियों और अनुभवों से भरपूर थे। उस चीज के कारण हम लगातार अपने बारे में भी मनन करते और ग्रंथ के बारे में भी। इतने सारे युवाओं के बीच में एक साथ आकर के पढ़ना, इतने सारे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए प्रतिभागियों के बीच में उस ग्रंथ को जानना, पढ़ना, साथ में संवाद करना, वार्ताएं करना, उस चीज के अनुभव ने मुझे इस ग्रंथ के साथ साथ, इस दर्शन के साथ साथ जीवन की जो ऊर्जा है, जीवंतता है, उसका जो यौवन है, उसको भी अनुभव करने का मौका मिला।
0: 10 दिन सुनने में बहुत कम, लेकिन कभी कभी 10 दिन भी जीवन में एक लंबे अध्याय की तरह उतर जाते हैं। ऋषिकेश से लौटते समय हमारे साथ ढेर सारी तस्वीरें और स्मृतियां थीं, और इसके साथ ही हमारे साथ था तत्वबोध का अध्ययन। अद्वैत वेदांत जागरण शिविर 10 दिनों का आयोजन मात्र नहीं, निरंतर चलने वाली एक यात्रा का हिस्सा भी है। यदि आपके भीतर भी भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की जिज्ञासा है, यदि आप आचार्य शंकर के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं, यदि आप गुरुजनों के सानिध्य में रहकर इस परंपरा को निकट से अनुभव करना चाहते हैं, तो आप मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय की एकात्म धाम पहल से संबंधित जानकारी उनकी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में हम बहुत कुछ खोजते हैं, सफलता खोजते हैं, सुख खोजते हैं, सम्मान खोजते हैं, अपनी पहचान खोजते हैं, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा हमें एक और खोज की ओर ले जाती है, स्वयं की खोज। और शायद यही खोज सबसे कठिन भी है और सबसे सुंदर भी।
2: दुनिया से आगे खुद तक। अभी आपने सुना ये लघु वृत्त चित्र। सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक भी हैं। खुद को जानने की यात्रा भीतर से शुरू होती है, लेकिन उसके अर्थ जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। अपने सपनों को पहचानना, अपनी राह चुनना और चुनौतियों के बीच उस राह पर बने रहना, यही तो युवा होने की असली परीक्षा भी है। किताबें हैं, करियर की तैयारी है, भविष्य की चिंताएं हैं, और इनके बीच एक कला है जिसे केवल समय नहीं, समर्पण भी चाहिए। जब मंच पर मोहिनीअट्टम की मुद्राएं आकार लेती हैं और मन में भविष्य की मंजिलें भी साथ साथ चलती हैं, तो जीवन एक खूबसूरत कदम ताल बन जाता है। प्रस्तुत है लघु रूपक मंच पर मोहिनी, मन में मंजिल।
3: किताबों के खुले पन्ने, असाइनमेंट की समय सीमा, आने वाली परीक्षाओं का तनाव, ऐसे में जरा सोचिए जब कोई स्टूडेंट कॉलेज के भाग दौड़ के तुरंत बाद अपनी किताबें समेत शाम होते ही सीधे एक शास्त्रीय नृत्य के रियाज में जाकर शामिल हो जाए।
4: आज की जनरेशन सिर्फ डिग्री हासिल करने की रेस में नहीं दौड़ रही। एक तरफ करियर बनाने का प्रेशर है, तो दूसरी तरफ अपने अंदर के उस कलाकार को जिंदा रखने की जिद, जो शॉर्टकट नहीं बल्कि घंटों का सब्र और कड़ा रियाज मांगता है। केरल के तटीय क्षेत्रों से विकसित हुई मोहिनीअट्टम 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है।
3: आंदोलन यानी लहरों जैसी सुगम शारीरिक गतियां, सोपानम संगीत की धीमी लय, और नयन अभिनय यानी आंखों का बारीक संचालन इसकी मुख्य तकनीकी पहचान है।
4: कथकली की नाटकीयता या भरतनाट्यम की तेज पदचाप के विपरीत मोहिनीअट्टम का मुख्य आधार अति सूक्ष्म ठहराव और शारीरिक संतुलन है।
3: इसीलिए

आज के फास्ट पेस्ट दौर में इस विधा की पारंपरिक संरचना को बिना बदले नई पीढ़ी को सौंपना एक बेहद बारीक काम है।

0: एक गुरु के तौर पर आज की व्यवहारिक चुनौतियों के बीच इस क्लासिकल तकनीक को युवा कलाकारों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, आइए सुनते हैं गुरु जयप्रभा मेनन जी से।
1: क्लासिकल में ये मोहिनीअट्टम अकेले एक नृत्य रूप है जो सोलो में और सिंगल परफॉर्मेंस में आता है, एकहारिया में आता है। हमारे शास्त्रीय नृत्य रूप के दो तरह के, तांडव और लास्य। तो मोहिनीअट्टम लास्य कैटेगरी में आता है। लास्य मतलब क्या है? लास्य इज जेंटल, सॉफ्ट, ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल, यानी और एकदम सरलता में बोले कर ये स्त्रैण नृत्य रूप है। फेमिनाइन ब्यूटी इसमें ज्यादा है। मोहिनीअट्टम में बॉडी डिसिप्लिन एंड माइंड डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है।
2: आज की डिजिटल दुनिया शॉर्टकट और इंस्टेंट रिस्पॉन्स पर चलती है, लेकिन मोहिनीअट्टम जैसी विधा महीनों और सालों का सब्र मांगती है। ऐसे में पढ़ाई के तनाव और रियाज के अनुशासन के बीच टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? क्या ये कला उनकी पढ़ाई में रुकावट बनती है या उल्टा उनका फोकस और बेहतर करती है?
3: मेरा नाम अनस्सा राय एंड अभी मैं 12th क्लास में हूँ। 12 साल से भरतनाट्यम सीख रही हूँ, पिछले 5 साल से मोहिनीअट्टम। एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज मैं लाइक ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाती, एंड डांस क्लास प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल। और इसमें नॉट ओनली माय कल्चर बट मैं बाकी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस कर पाती हूँ, तो उसका एक्सपोजर मिलता है एंड तुम्हें पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एंड मैंने सोचा भी है कि अगर आगे जाके मैं जस्ट इन केस अपने डांस को प्रमोट करना चाहूँ, आई कैन स्टार्ट टेकिंग डांस क्लासेस एंड ऑल।

0: मंच का आत्मविश्वास सिर्फ उस परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके व्यक्तित्व और सोच में भी झलकने लगता है।
1: My name is Rajshree R. I am pursuing biochemistry honors. It's my second year of college. Classical dance के tours बहुत attracted रही। Dancing is my passion, but कहीं ना कहीं मुझे future को लेके भी थोड़ा बहुत concern है कि if I'm pursuing this field, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। Even though I know कि मैं कर लूंगी, but just to be on a safe side, I am pursuing biochemistry. But अगर मुझे एक मौका मिलता है कि मैं इसको फुल टाइम पे लेके जाऊँ, ट्रेडिशनल मोहिनीअट्टम एंड भरतनाट्यम, आई विल डेफिनेटली लुक फॉर इट।
0: दिन भर की किताबी पढ़ाई और करियर की आपाधापी के बीच मोहिनीअट्टम के इन कठिन तट्टाडवू और रामायणम इलाकी अट्टम का कड़ा अभ्यास ये साबित करता है कि युवाओं में कला के प्रति समर्पण कितना गहरा है।
2: शास्त्रीयता की मर्यादा को बिना बदले आधुनिक जीवन शैली के साथ इस विधा को साधते इन युवा कलाकारों की ये यात्रा वाकई दिलचस्प है। मंच पर थिरकते ये कदम और मन में अपनी मंजिल को पाने का ये जज्बा यूं ही बना रहे, हमारी शुभकामनाएं।
3: मंच पर मोहिनी, मन में मंजिल। अभी आपने सुना ये लघु रूपक। आलेख प्रांजल, वाचन स्वर प्रांजल और नेत्रा, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए आइए एक नजर डालें उन युवा कदमों पर जो आज भारतीय खेलों को नई रफ्तार दे रहे हैं। हाल के दिनों में भारतीय युवाओं ने दुनिया के अलग अलग खेल मैदानों पर अपनी चमक बिखेरी। 18 वर्षीय अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप

में महिला एकल का खिताब जीतकर एक इतिहास रचा। एथलेटिक्स में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने ऊंची कूद में रजत और शहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर भारतीय उम्मीदों को नई ऊंचाई दी। कुश्ती के विश्व अंडर 20 मंच पर भी भारतीय बेटियों ने दम दिखाया। मानसी लाठर ने रजत जबकि तन्वी और कोमल ने कांस्य पदक अपने नाम किए और शतरंज के बिसात पर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर जीतकर भारतीय प्रतिभा का एक और ऐतिहासिक अध्याय लिखा है। मेजर ध्यानचंद की विरासत हमें याद दिलाती है कि खेल केवल जीत का नाम नहीं, अनुशासन, समर्पण और निरंतर साधना का नाम है। आज का युवा भारत उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। मैदान बदल रहे हैं, खेल बदल रहे हैं, लेकिन तिरंगे को ऊंचा उठाने का जज्बा वही है। इसी के साथ संपन्न होता है युवा भारती का आज का अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर मंडपा कशारदा का कर्नाटक शैली में गायन।
1: गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वोकल रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर मंडपा कशारदा।
0: श्रीमती विमला और श्री कृष्णमूर्ति की बेटी डॉक्टर मंडपा कशारदा ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा गुरु श्री आईवीएल शास्त्री के पास प्राप्त की। तत्पश्चात श्री कोमंडोरी कृष्णमाचार्युलु के पास आपने संगीत की बारीकियां सीखी। 8 वर्ष के अल्प आयु से ही डॉक्टर शारदा अपने कला का प्रदर्शन करती आ रही हैं। पट्टनम सुब्रमण्यम अय्यर की रचनाओं पर आपके शोध कार्य हेतु आपको PhD प्रदान किया गया है। आप आंध्र विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त रही हैं। पिछले 60 वर्षों से डॉक्टर मंडपा कशारदा कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करती आ रही हैं। आपको कई संस्थाओं द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मंडपा कशारदा को आकाशवाणी द्वारा शास्त्रीय संगीत गायन में A ग्रेड और सुगम संगीत में B हाई ग्रेड प्राप्त है और आप Grade 1 कंपोजर भी हैं।
1: बोर्न इन विजयनगरम टू श्रीमती विमला एंड श्री कृष्णमूर्ति, डॉक्टर मंडपा कशारदा was initiated into music at an early age. She received her initial training in music under Sri IVL Shastri and later honed her skills under the guidance of Sri Komanduri Krishnamacharyulu. Dr. Mandapa Kasharada received her PhD degree for her thesis on the compositions of Pattanam Subramaniam Iyer. She served for several years in the Department of Music of Andhra University. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan in Carnatic music and B-high in light music, she is also a grade 1 music composer. Dr. Sharada has performed more than 3,000 concerts in classical, devotional and light music in several platforms all over the country. She is also the author of 2 books, Swaratarangini and Kriti Manjari. Dr. Mandapa Kasharada is the recipient of a number of awards and felicitations.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर मंडपा कशारदा की संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सरस्वतुला हनुमंत राव।
1: In tonight's concert, Dr. Mandapa Kasharada is accompanied by श्री महादासु नीलाद्री राव on the violin, श्री सुसरापु सुब्रमण्यम on the मृदंगम and Sri Saraswatula Hanumant Rao on the ghatam.
0: Dr. Mandapa Kasharada aaj ke karyakram ka aarambh karti hain Begad raag mein Sant Tyagaraj ki rachna Bhaktuni Charitramu se jo ki Adi Taal mein nibadh hai.
1: Dr. Mandapa Kasharada begins her presentation with Bhaktuni Charitramu, a composition of Tyagaraja in Begad raagam Adi Taalam.

0: डॉक्टर मंडपा का शारदा की अगली प्रस्तुति है माया माला वगोल राग में श्याम शास्त्री की रचना नीलायताक्षी जो कि मिश्र चापुताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Shyama Shastri in Maya Malava Gola Ragam Misra Chaputalam.

0: सुनिए, शुद्ध धन्यासी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना श्री पार्थ सारथी, जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
1: वी विल नाउ लिसन टू श्री पार्थ सारथी। इट इज इन शुद्ध धन्यासी रागम रूपक तालम एंड इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार।

0: आज आप डॉक्टर मंडपा का शारदा का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादा सुनीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सरस्वतुला हनुमंत राव। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर मंडपा का शारदा प्रस्तुत कर रही है कल्याणी राग में पल्लवी गोपाल अय्यर की रचना नीद चरण पंकज मुले, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: In tonight's national program of music, you have been listening to a classical vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapaka Sharada. She is accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatula Hanumant Rao on the ghatam. Continuing her performance, Dr. Mandapaka Sharada will now present a composition of Pallavi Gopalayar in Kalyani Ragam Aditalam.

0: था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री ससुरापु सुब्रमण्यम ने और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव ने। डॉक्टर मंडपा का शारदा आज के कार्यक्रम का समापन वृंदावनी राग में डॉक्टर मंगलम पल्ली बालमुरल कृष्णा द्वारा रचित तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: दैट वाज तन्यावर्तनम ऑन द मृदंगम बाय श्री ससुरापु सुब्रमण्यम एंड ऑन द घटम बाय श्री सारस्वतुला हनुमंत राव। Dr. Mandapaka Sharada concludes her this evening's presentation with the Tillana of Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Vrindavani Ragam Aditalam.

के अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत अभी तक आप डॉक्टर मंडपा कशारदा द्वारा कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे वायोलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सरस्वतुला हनुमंत राव। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र 2 के अंतर्गत एक बड़े अंतर्राज्यीय औषधि तस्करी मामले में 66 लाख से अधिक मनोरोगी गोलियां जब्त की हैं। ये खेप मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त की गई है। इस अभियान में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और एक ट्रक भी जब्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि CBN ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश गलियारे के साथ मनोरोगी दवाओं की